0: टाइम चेक सुबह के 5 बज रहे हैं।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती
1: नॉर्थ साउथ
2: 103.5
1: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4
1: सेंटर
2: 99.4
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Rise and shine. Start

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: Good morning, namaste. बज गए हैं सुबह के 5 और शुरू हो गया है आपका फेवरेट शो राइज एंड शाइन. मैं हूँ आपके साथ पूनम RM2 रेडियो मस्ती पर. फुल एनर्जी के साथ चलिए इस मॉर्निंग को बनाते हैं सुपर कूल सुपर फ्रेश. सुबह के बज चुके हैं 5:04 और थर्सडे का प्यारा सा दिन 2 जुलाई. यही है हमारा टाइम और यही है जिंदगी. चलिए इंजॉय करते हैं हमारे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल ओल्ड हिट्स.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:14 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़ गए हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ। कहते हैं लता जी की आवाज़ हो, किशोर दा की आवाज़ हो, मोहम्मद रफ़ी साहब की हो, आशा भोसले जी की हो, उषा मंगेशकर जी की हो, ये आवाज़ें एक अनोखी आवाज़ें हैं क्योंकि इनकी आवाज़ों में शायद वो प्यार है जो हमें खींच के ले आता है आपके पास। तो चलिए भाई इंजॉय करेंगे हम सारे मिलके इनके गानों को। साथ में हम यही कहेंगे भाई अलार्म को बजना बंद कीजिए क्योंकि सब जने अब उठने वाले हैं और थोड़ी देर के अंदर कहते हैं ना कि अगर साथ में मिल जाए गरम गरम कप चाय की या कॉफ़ी की तो मज़ा आ जाएगा। तो स्ट्रेचिंग कीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम दीजिए, सिर्फ 5 मिनट।

0: चाहे मेडिटेशन में दीजिए, चाहे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करके इधर उधर हिलाइए डुलाइए, या हमारे गाने के साथ में इंजॉय कीजिए, जो भी है। पर सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है, आज का दिन आपका है।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:24 हो चुके हैं दोस्तों. जो लोग अभी रोड पर निकल चुके हैं, आधे नींद में हैं और आधे अपने गानों के साथ जुड़ चुके हैं, और वो जो ममाज जो अपने बच्चों के लिए उठ चुकी हैं, तैयारी कर रही हैं, किचन में लग गई हैं, छोटी सी कढ़ाई निकाल के या गरम गरम चाय बनाने के लिए, और उनके लिए कहते हैं ना कि बच्चों के छोटे छोटे से कपड़े होते हैं, यूनिफॉर्म होती है, उन सब चीज़ों के लिए तैयारी करनी पड़ती है, हस्बैंड्स को देखना पड़ता है. तो ये सारी ममाज को तो हम यही बोलेंगे, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ यहाँ पर, आपके साथ पूनम, और कर लीजिए अपने गाने. पर साथ में हम आपको बताते चलते हैं कि भाई आज सुबह से इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं. इस समय ललित जी जुड़ चुके हैं यूएसए से और इन्जॉय कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं हमारा. उसके साथ में ही हमारे कुमार देवी चरण जी जुड़ चुके हैं, साथ में अंजानी जी जुड़ चुके हैं और एक प्रोग्राम को इन्जॉय कर रहे हैं. साथ में टोनी जी हैं और कहते हैं कि बहुत ही प्यारी सी हमारी साधना लाल माटी से हैं और वो भी इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को. साथ में एक हमारे बहुत ही प्यारे से दोस्त हैं सूरज शर्मा साजदा जी, और वो कह रहे हैं कि भाई इसे इंजॉय कर रहे हैं और कहते हैं मॉर्निंग को फ्रेश बना रहे हैं. साथ में नेक्स्ट गाना जाएगा अब्दुल और सायरा बानो के नाम. और हमारी प्यारी सी दोस्त हैं एक और, जो कि अपने बेटे कहते हैं

0: विक्की एंड बहु कृति की वेडिंग एनिवर्सरी है और उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं पापा लाल देव मामा सुया एंड उन्हें कह रहे हैं कि हमेशा खुश रहो, एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को, हम हैं आपके साथ, क्योंकि डरना नहीं, ज़िंदगी वो अप एंड डाउन जितनी मर्जी होती रहे कोई बात नहीं, हम मामा पापा हैं। सो स्वीट ब्यूटीफुल मैसेज मॉर्निंग मॉर्निंग में, ऐसे ही आप सब जुड़े रहेंगे हमारे साथ रेडियो मस्ती के साथ।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:34 हो चुके हैं दोस्तों, अब जुड़ चुके हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ। और मुझे पता है इस टाइम सारे जने अपने अपने बिजी शेड्यूल में जुड़ चुके होंगे, क्योंकि कईयों को ऑफिस जाना है और कई लोग ना चुपके से बैठे होंगे। जैसे हस्बैंड्स होते हैं ना, वो एक तरफ बैठे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे, आज ऑफिस में जाके ये करना है, ये लेकर आना है, वो करना है। ये जो प्लानिंग होती ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट लेडीज़ की प्लानिंग क्या होती है भाई? सुबह सुबह बच्चों को खाना देना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, कपड़े धोते हुए साइड में से चले जाना है, कपड़े डाल भी दो और या कपड़े उतार के ले आओ, वहाँ पर कहीं बाहर भीग ना जाए। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में लेडीज़ के चलती रहती है। उसके बाद ऑफिस जाती हैं, फिर आके काम करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए, थोड़ी सी मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, थोड़ी सी अपने लिए गानों के साथ जुड़िए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, हस्बैंड से 2 मिनट प्यार से बैठ के बात कर लीजिए, बच्चों से बस गले लगा लीजिए। कहते हैं ना, बच्चों को देखते ही थोड़ा सा अगर दिल अप एंड डाउन हो रहा होता है ना, तो बच्चों को गले लगाने से ऐसा लगता है कि अरे वही टेंशन फ्री हो गई। और जो हमारे ओल्ड पेरेंट्स हैं या दादा दादी नाना नानी हैं, इनके साथ भी थोड़ा सा देर बात करने से बहुत सा मूड रिफ्रेश सा हो जाता है, अच्छा सा लगता है। तो चलिए भाई, हमारे साथ भी ऐसे हमारे दो कपल जुड़ चुके हैं, प्रमिला जी हैं जो कि अपने हस्बैंड के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। तो बिल्कुल हम चलाने जा रहे हैं आप

आपके लिए ममता जी साथ दे रही हैं, और पति सुनील के लिए, बेटे अश्विन, अनीश एंड केविना अली एंड सिस्टर सलून के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। और दोनों जने यही कह रही हैं कि हम अपने हस्बैंड्स को प्यार बहुत करते हैं। क्या बात है भाई, ऐसे सुबह सुबह अगर हस्बैंड को मैसेज पता चल जाए ना तो पूरा दिन उनका मूड खिला खिला सा रहता है। तो चलो इंजॉय करते हैं यही गाने और उसके साथ साथ चलते हैं, उसके बाद जुड़ेंगे आपके हॉरोस्कोप के साथ।

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.
2: Your daily horoscope.
0: RM2 Radio Musty.
3: चलिए देखते हैं आज सितारे आपकी ज़िंदगी में कौन सा पॉजिटिव वाइब्स लेकर आए हैं। 5:46 हो चुके हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं।
1: एरीज मेष राशि,
3: आज आपका कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाएगा। जो सोच रहे हैं उस पर काम शुरू कीजिए, अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 9।
1: टॉरस वृषभ राशि,
3: आज मन शांत रहेगा और काम आसानी से बनेंगे, अपनों का साथ खुशी देगा। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 6।
1: जेमिनी मिथुन राशि,
3: आज आपकी बातों का असर लोगों पर दिखेगा, नए मौके आपके पास आ सकते हैं। आपको सिर्फ अपने परिवार का या अपने दोस्तों का साथ चाहिए, बस इसीलिए आपको सिर्फ थोड़ा सा उनके ऊपर काम करना है, उनको मैसेज करना है, कॉल करना है और अपनी बात बतानी है। और लकी कलर बनेगा येलो, लकी नंबर है 5।
1: कैंसर कर्क राशि,
3: आज दिल खुश रहेगा और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, परिवार से अच्छी खबर मिल सकती है। लकी कलर है वाइट, लकी नंबर है 2।
1: लियो सिंह राशि,
3: आज आपका चार्म सबको इम्प्रेस करेगा, खुद पर भरोसा रखिए, दिन अच्छा रहेगा। ओवरऑल आपको अपने परिवार से जो सपोर्ट मिल रहा है उसको बस इम्प्रेस नहीं करने की ज़रूरत है, बट आपको सिर्फ उनसे पूछते रहना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं। तो अगर आपको वो बता रहे हैं, कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं, तो उस पर ज़रूर फोकस कीजिए, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट परिवार से ही मिल रहा है। लकी कलर है गोल्डन, लकी नंबर है 1।
1: वर्गो कन्या राशि,
3: आज प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो सफलता मिलेगी, छोटी खुशियों को एंजॉय कीजिए, ऑफिस में थोड़ा सा फोकस कीजिए, अपने काम पर पूरा ध्यान दीजिए। लकी कलर है स्काई ब्लू, लकी नंबर है 7।
1: लीब्रा तुला राशि,
3: आज रिश्तों में प्यार और वार्म्थ महसूस होगी, दिन बैलेंस्ड और पीसफुल रहने वाला है। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 4।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
3: क्या बात है, आज आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहने वाला है। आपको जो भी आज पूरे दिन में घटने वाला है, मतलब आपके साथ ऑफिस में कुछ होने वाला है, आपको थोड़ी थोड़ी सी बातें आपके दिल में अपने आप आ जाएंगी, तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है, तो उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। थोड़ी सी मेडिटेशन कर लो, थोड़ा सा अपने साथ जुड़ो, थोड़ा सा अच्छा लाइट खाना खाइएगा आज पूरे दिन। लकी कलर है मैरून, लकी नंबर है 8।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
3: आज नई सोच और नई शुरुआत के लिए अच्छा दिन है, एनर्जी हाई रहने वाली है आज आपकी। लकी कलर है पर्पल, लकी नंबर है 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
3: आज मेहनत रंग ला सकती है, जिस काम पे आप बहुत टाइम से जुड़े हुए थे लगता है आज वो पूरा होने वाला है। धैर्य और फोकस आपको साथ ले चलना है, बस आपको थोड़े से ये नहीं कहना कि अरे ये क्यों नहीं काम हो रहा, बस होने वाला है, आपको बस अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। लकी कलर है ग्रे, लकी नंबर है 10।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
3: क्या बात है, आज क्रिएटिव आइडियाज आपके दिन को बनाने वाले हैं, और कहते हैं कि जो नेक्स्ट वीक या मंथ आने वाला है उस पे भी आपका पूरा ध्यान रहेगा, बस ओनली क्रिएटिव आइडियाज से। तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो लेटेस्ट हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ जुड़े हैं, उनके लिए तो आज बहुत ही अच्छा दिन जाने वाला है। आपको कुछ अलग पहचान मिलने वाली है, मन खुश और दिल हल्का रहने वाला है, बस शायद आज आपकी क्रिएटिविटी से इम्प्रेस होने वाला है। लकी कलर बनेगा आपका ब्लू, लकी नंबर है 11। आज पॉजिटिविटी आपके आसपास रहेगी, अपने दिल की बात जरूर सुनेगा, अच्छा सा महसूस होने वाला है, आपको पूरे परिवार का और अपने दोस्तों का साथ मिलने वाला है। लकी कलर है सी ग्रीन, लकी नंबर है 12। तो दोस्तों दिन की शुरुआत सोच अच्छे से कीजिएगा और बस ऐसे मुस्कुराते रहिए, इंजॉय कीजिए अपने गाने और अपने दिन को भी।
2: योर डेली हॉरोस्कोप
0: RM2 रेडियो मस्ती। Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.

0: देखभाल सेवाएं बेहतर करने के वास्ते देश के विभिन्न इलाकों में विशेष केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। जीतू अस्पताल फ्लक के सर अनिरुद्ध जगन्नाथ अस्पताल और पोम्पलोमोसिस के सर शिवसागर राम गुलाम अस्पताल तथा थ्रियोले और फ्लोरियाल के मेडिक्लिनिक्स के बाद अब जल्द ही न्यू कोव के एरिया हेल्थ सेंटर में एक छठा डायबिटीज एंड वास्कुलर सेंटर खुलेगा। मकसद है जनता को बेहतर इलाज प्रदान करना। सरकार देश की बायो सिक्योरिटी के लिए संभावित खतरे को लेकर सख्त रुख अपना रही है। कृषि उद्योग मंत्रालय की तरफ से कल 1 जुलाई को जारी कम्युनिके के मुताबिक मोजाम्बिक से पशुओं को लेकर निकला जहाज अपेक्स LSS सक्सेस कथित तौर पर अपने तय रास्ते से भटक गया है और वो मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर सकता है। मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी, मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी और नेशनल कोस्ट गार्ड की टीमें तैनात की गई हैं इस बात का ध्यान रखने के लिए कि इस जहाज से अवैध तरीके से कोई भी माल या पशु न उतारा जाए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में एक हफ्ता हुआ है जब से न्यू वेनेजुएला में दो विनाशकारी सिलसिलेवार भूकंप पेश आए थे। मरने वालों की संख्या 2300 पार कर गई है। जहां मलबे हटाने का काम जारी है वहीं इनमें से जिंदा लोगों को निकालने की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। अब वहां के लोग खाद्य सामानों और दवाइयों की कमी के एक नए संकट का सामना कर रहे हैं। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश में 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके पर हल्की और सामान्य हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह खासकर पूर्व दक्षिण और ऊंचाइयों पर हल्की बारिश हो सकती है और दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। रात के दौरान भी आसमान साफ रहेगा। हवा दक्षिण दक्षिण पूर्व की तरफ से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिणी समंदर में 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 14 से 17, अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:46 पर सूर्योदय, शाम को 5:41 पर सूर्यास्त होगा। ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:30 मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से। अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। मॉरिशस में डायबिटीज सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में पाई जाने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। इस दिशा में देख

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:15 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ। अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। वही हम देखिए, जो आजकल के ज़माने के गाने होते हैं वो तो थोड़े से तड़क भड़क वाले होते हैं न्यू जनरेशन के बच्चों के लिए, बट कहते हैं ना ये गाने जो हैं बस दिल को छू जाते हैं। बट फिर भी उस ज़माने में भी बहुत प्यारे प्यारे से ऐसे गाने होते थे जिसके ऊपर हम हल्का हल्का सा मुस्कुरा भी देते थे और साथ में डांस भी करते थे। बहुत सारे गाने हैं, बट ये जो टाइम है ना, इस टाइम है बस उठने का, मस्ती करने का और हंसते हुए स्माइल करके, चाहे ऑफिस, चाहे स्कूल, चाहे कॉलेज जाने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों, बच्चों के आज एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, तो परिवार भी

0: जो है थोड़ा सा उनके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है तो अच्छी बात है, बट हम भी ये बोलेंगे जिनके एनिवर्सरीज हैं और जो बर्थडेज हैं वो कहाँ जाएंगे। भैया इस समय है आज हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त सृष्टि का बर्थडे और उसको सारा परिवार विश कर रहा है और बस यही कह रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय भी करना ज़िंदगी को, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई मत करना क्योंकि वो पूरे दिन पढ़ाई करती है। सो स्वीट, ऐसे पेरेंट्स भी होने चाहिए जो अपने बच्चों को बोले भाई थोड़ी सी ज़िंदगी को भी देखो, सिर्फ पढ़ाई नहीं। ये भी एक तरह की भी पेरेंट्स की मोटिवेशन है जो बच्चों को देते रहते हैं। तो हम भी आपको यही बोलेंगे हैप्पी बर्थडे डियर, बट जैसे पेरेंट्स बोल रहे हैं पर मैं तो आपको बोलूँगी पढ़ाई करो पढ़ाई करो। चलिए जी, सरोज जी, राजन, मोनिका, पूनम, श्रिया, उमेश, आशिका तो बून से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं। आज है हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी वैसन एंड राजेंद्री का, आज चुकवारवन उनका पूरा नाम है, शायद मैं स्पेल नहीं ढंग से कर पाऊंगी, फ्रॉम आरुल, वरुण एंड पोविलेन जो कि उन्हें विश कर रहे हैं और कह रहे हैं हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, हमेशा खुश रहो, ऐसे एक प्यारे से ब्यूटीफुल कपल बन के रहो, हमें भी तुमसे बहुत ही प्यार मिलता है, हम लोगों को एहसास होता है कि एक हस्बैंड वाइफ अच्छे होते हैं और आप जैसे हों तो बहुत ही अच्छी बात है। सो नाइस, ललिता जीतन भी जीव ही जुड़ी हुई हैं साथ में और इन्जॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को। साथ में एक और वेडिंग एनिवर्सरी है आज प्रिस्ला एंड रोविन की, जिनको गासिन एंड रूबा सिकिन केशवाना फ्लक्स जो कि विश कर रहे हैं और उन्हें भी यही कह रहे हैं कि आपका साथ होना बहुत बड़ी बात है, इंजॉय कीजिए अपनी ज़िंदगी को, हम आप लोगों के साथ हैं, बट आपसे एक ही सिर्फ बात कहनी है, शाम को जो पार्टी दे रहे हो उसमें हमें भूलना मत, बुलाना ज़रूर, हम सारे जने आने वाले हैं। तो ये भी वही अच्छी बात है, इंजॉय कीजिए पार्टी शार्टी, इंजॉय कीजिए मॉर्निंग को, इंजॉय कीजिए काम को, इंजॉय कीजिए, और साथ में आपको यही कहते हैं ये है गाना आप सबके लिए।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

के ठीक 6:30 बज रहे हैं। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। इलाकाई अस्पतालों और कुछ मेडिक्लिनिक्स के बाद जल्द ही न्यू गोव एरिया हेल्थ सेंटर में एक डायबिटीज एंड वास्कुलर सेंटर की स्थापना की जाएगी। मकसद है जनता को बेहतर इलाज और सेवाएं प्रदान करना। मोजाम्बिक से पशुओं को लेकर निकला एक जहाज कथित तौर पर अपने तय रास्ते से भटक गया है और वो मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है। एमपीए, एमआरए और नेशनल कोस्ट गार्ड की टीमें तैनात की गई हैं इस बात का ध्यान रखने के लिए कि इस जहाज से अवैध तरीके से कोई भी माल या पशु न उतारा जाए। आज 2 जुलाई से वाकुआ के जॉन केनेडी एवेन्यू पर स्थित तकामा का पुल नए सिरे से खुल रहा है। इस बात की घोषणा सार्वजनिक मूल ढांचा

0: मंत्री अजय गणेश ने कल क्यूपिक में काजियन पुल के दूसरे चरण के उद्घाटन के दौरान की। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में एक हफ्ता हुआ है जब से वेनेजुएला में दो विनाशकारी सिलसिलेवार भूकंप पेश आए। मरने वालों की संख्या अभी तक 2300 पार कर गई। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मॉरिशस में डायबिटीज सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में पाई जाने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। इस दिशा में देखभाल सेवाएं बेहतर करने के वास्ते देश के विभिन्न इलाकों में विशेष केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। जीतू अस्पताल, फ्लैक के सर अनिरुद्ध जगन्नाथ अस्पताल और पोम्पलेमोसिस के शिवसागर राम गुलाम अस्पताल तथा थ्रियोले और फ्लोरियाल के मेडिक्लिनिक्स के बाद जल्द ही अब न्यू गोव के एरिया हेल्थ सेंटर में एक छठा डायबिटीज एंड वास्कुलर सेंटर खुलेगा। मकसद है जनता को बेहतर इलाज प्रदान करना। पिछले कुछ समय से ये नोट किया गया है कि सेंट जॉन नाइट शेल्टर में अब सबसे ज़्यादा 19 से 45 साल की उम्र के बीच के लोग रहते हैं। बेघर होने की समस्या पहले ज़्यादातर बुजुर्गों से जुड़ी मानी जाती थी, लेकिन अब ये सामाजिक समस्या कम उम्र के लोगों के बीच भी देखी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार ये एक चिंताजनक प्रवृत्ति है जो मॉरिशस में मुश्किल हालातों में रहने की तेजी से बढ़ती स्थिति दर्शाती है। इस वास्तविकता के बीच सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है। उन्हें लगातार बढ़ती मांगों और मदद की ज्यादा जटिल आवश्यकताओं से निपटना पड़ रहा है। छवि बाचू, अहिता रघु।
1: Le plus jeune SDF qui est là dans l'abri de Saint-Jean, c'est il a 19 ans.
2: ये एक ऐसी स्थिति है जो समाज से गंभीर चिंता और जागरूकता की मांग करती है, क्योंकि आज बड़ी संख्या में लोग अत्यंत कठिन परिस्थितियों और असुरक्षा का सामना कर रही हैं। सेंट-जॉन नाइट शेल्टर की जिम्मेदार जॉन मेसांडियों के अनुसार यहाँ रहने वाले लोगों की प्रोफाइल में उल्लेखनीय बदलाव आया है। पहले अधिकांश निवासी 55 वर्ष या उससे अधिक आयु के होते थे, लेकिन अब कम उम्र के बेघर युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।
1: 75% du résident qui
2: ont यहाँ 75% रहने वाले 18 से 45 वर्ष के हैं। ऐसी स्थिति से भी बच्चे आते हैं जिनके माँ बाप अलग अलग शादियों में परिवार बसा चुके हैं। ऐसे में वे शराब की लत में पड़ जाते हैं। ऐसे भी मामले हैं जहां घरेलू हिंसा या सेपरेशन के बाद बच्चे या पत्नियां सड़क पर आ जाती हैं। बेघर लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इस कारण शेल्टरों पर दबाव बढ़ गया है और विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में सभी जरूरतमंदों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण हो गया है। सेंट-जॉन नाइट शेल्टर में निवास की अवधि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता और उसके पुनर्वास की प्रगति के आधार पर लगभग 18 महीने से लेकर 2 वर्ष तक हो सकती है। कभी हमें दुख होता है कि यहाँ 40 की संख्या तक और पॉटरीज के लिए 26 की संख्या तक आने के बाद हमें लोगों को मना करना पड़ता है क्योंकि जगह ही नहीं है। हालांकि ये केंद्र केवल रात बिताने के लिए आश्रय उपलब्ध नहीं कराता। वर्ष 2025 से 2030 की अपनी रणनीति के तहत यहाँ रहने वाले लोगों के पुनर्वास और समाज में पुनर्स्थापन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकें। जिन लोगों व नौजवानों को किसी तरह की लत है उन्हें एक समय तक के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटरों में भेजा जाता है, जिसके बाद वे पेशेवर जगत में भी जगह वापस पाने की कोशिश करती हैं और फिर एक घर की तलाश करना पड़ता है जहां 3 दोस्तों के साथ रहा जा सके। ये चिंताजनक स्थिति हमें बेघर लोगों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने का संदेश देती है। पूर्वाग्रह और सामाजिक कलंक से ऊपर उठकर उन लोगों का साथ देना और उनका उत्साह बढ़ाना आवश्यक है जो अपने जीवन को फिर से संवारने और समाज की मुख्य धारा में लौटने का प्रयास कर रहे हैं।
0: मंगलवार को राष्ट्रीय सभा में अप्रोप्रिएशन बिल बिना सुधार के पारित किया गया, जिसे बजट 2026-2027 मंजूर कर लिया गया। इस बजट में खाद्य सुरक्षा मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। 25x35 फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के जरिए सरकार ने अगले 2035 तक देश की खाद्य आवश्यकताओं का 25% हिस्सा स्थानीय स्तर पर ही पैदा करने और आयात पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य तय किया है। फागे की सीईओ माधवी मधु के अनुसार ये एक महत्वाकांक्षी

0: राष्ट्रीय लक्ष्य हैं। उनका कहना है कि मॉरिशस अभी अपने इस्तेमाल का 70% से ज़्यादा खाद्य सामान आयात करता है तथा बीज खाद और फिटोसैनिटरी उत्पादों के लिए काफ़ी ज़्यादा विदेशी स्रोतों पर निर्भर करता है। उनका मानना है कि इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ज़्यादा अनुसंधान नवाचार कंपोस्ट और ऑर्गेनिक खाद के उत्पादन तथा खेती के लिए ज़मीन सुलभ करने की ज़रूरत पड़ेगी। Shelley Nirburn, Ashita Raghu.
1: Pour atteindre cette vision, nous devons investir davantage dans la recherche et l'innovation.
2: इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें नवाचार और खोज में निवेश करना होगा। अंत में हमारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के राष्ट्रीय उत्पादन तंत्र का विकास करना आवश्यक है। साथ ही जैविक कचरे के रिसाइकल से तैयार कंपोस्ट और अन्य जैविक उर्वरकों के स्थानीय उत्पादन में तेजी लाना भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित करना भी अत्यंत आवश्यक है। अंततः खाद्य सुरक्षा केवल किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। इसके लिए ऐसी समग्र नीति अपनानी होगी जो उत्पादन से लेकर उपभोग तक पूरी खाद्य श्रृंखला को समाहित करे। इस दृष्टिकोण में पोषण, खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता तथा आर्थिक लचीलापन जैसे सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए।
0: सरकार देश की बायो सिक्योरिटी के लिए संभावित खतरे को लेकर सख्त रुख अपना रही है। कृषि उद्योग मंत्रालय की तरफ से कल 1 जुलाई को जारी एक कॉम्युनिके के मुताबिक मोजाम्बिक से पशुओं को लेकर निकला जहाज अपेक्स एलएसएस सक्सेस कथित तौर पर अपने तय रास्ते से भटक गया है और वो मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर सकता है। मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी, मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी और नेशनल कोस्ट गार्ड की टीमें तैनात की गई हैं इस बात का ध्यान रखने के लिए कि इस जहाज से अवैध तरीके से कोई भी माल या पशु न उतारा जाए। शैली नियबन, आशिता रघु।
2: पशु चिकित्सा सेवा डिवीजन के अनुसार मॉरिशस में इन मवेशियों को उतारने की अनुमति देने के लिए कोई भी पशु चिकित्सा परमिट जारी नहीं किया गया है। इसलिए इन पशुओं के आयात या उन्हें देश में उतारने का कोई भी प्रयास वर्तमान कानून का उल्लंघन माना जाएगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस प्रकार की किसी भी अवैध कार्रवाई से पशुओं के स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा देश की खाद्य सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। इस संभावित खतरे को देखते हुए निगरानी व्यवस्था को और अधिक सख्त कर दिया गया है। मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी, मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के कस्टम टैक्स विभाग तथा नेशनल कोस्ट गार्ड को किसी भी अवैध रूप से मवेशियों को देश में उतारने के प्रयास को रोकने के लिए तैनात किया गया है। सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में दोहराया है कि राष्ट्रीय जैव सुरक्षा से समझौता करने वाली किसी भी गतिविधि के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। जो भी व्यक्ति बिना अनुमति मवेशियों का आयात, उन्हें देश में उतारने या इस प्रक्रिया को सुगम बनाने का प्रयास करेगा, उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
0: अगले 6 से 9 दिसंबर के बीच पाई के स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट लगेगा। ये गतिविधि पहले जुलाई महीने के आखिर के लिए निर्धारित थी, लेकिन केंद्रीय अफ्रीका में एबोला महामारी के फैलाव की वजह से इसे कथित तौर पर स्थगित किया गया था। इसका आयोजन मॉरिशस सरकार और कॉर्पोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका की मिलीजुली पहल पर किया जाएगा। इस सम्मेलन में कई अफ्रीकी राष्ट्र और सरकारी नेता, अमेरिकी और अफ्रीकी उच्चाधिकारी, वरिष्ठ व्यापारी, निवेशक और फाइनेंसिंग संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेंगे। मकसद है व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी मजबूत करना। इस गतिविधि के लिए 2500 से ज़्यादा डेलीगेट्स मॉरिशस आएंगे। आज दो जुलाई से वकवा के जॉन केनेडी एवेन्यू पर स्थित तकमका पुल नए सिरे से खुल रहा है। इस बात की घोषणा सार्वजनिक मूल ढांचा मंत्री अजय गणेस ने कल क्यूबेक में काजेयन पुल के दूसरे चरण के उद्घाटन के दौरान की। इस पुल का निर्माण 2 चरणों पर किया गया है, जिसके लिए 5 मिलियन रुपए लगाए गए हैं। कई सालों से इलाके के बाशिंदे इस कम चौड़े पुल के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, जिसके कारण कई बार विगत में वहाँ कई हादसे भी पेश आए हैं।

0: ये रिपोर्ट राजमिला सीतामणि और आशिता रघु के साथ।
1: यहाँ के बाशिंदों का बहुत साथ मिला क्योंकि वे पिछले 20 सालों से अधिक इस समस्या का सामना कर रहे थे। दो चरणों में यहाँ काम पूरा किया गया। पहले चरण के अंतर्गत ऊपर का हिस्सा खोल दिया गया था और आज दूसरे चरण की समाप्ति के साथ ये परियोजना संपन्न हुई। लोग संतुष्ट हैं कि इन परियोजनाओं के माध्यम से उन्हें राहत पहुँच रही है। आज पूरी सुरक्षा में वे इधर चल फिर सकते हैं। इस पुल के माध्यम से लोगों को बहुत सुविधा होगी क्योंकि यहाँ से नदी बहती है जो काफी खतरनाक भी है। मैं संतुष्ट हूँ कि जो लोगों से वादा किया था उसे हम पूरा कर पाए।
0: बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। एक हफ्ता हुआ है जब से वेनेजुएला में दो विनाशकारी सिलसिलेवार भूकंप पेश आए थे। मरने वालों की संख्या 2300 पार कर गई है। जहां मलबे हटाने का काम जारी है, वहीं इनसे लोगों के जिंदा निकलने की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। अब वहां के लोग खाद्य सामानों और दवाइयों की कमी के एक नए संकट का सामना कर रहे हैं। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने देश में 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। उधर रूसी ताकतों द्वारा यूक्रेन की राजधानी कीव पर किए गए हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 11 लोग घायल हुए हैं। कई जगहों पर आग लगी है। रशिया यूक्रेन संघर्ष के 4 साल हो गए हैं और कई शांति वार्ता की कोशिशों के बावजूद संघर्ष थमने के आसार नहीं दिख रहे। चलिए जानते हैं मौसम का हाल। आमहारत हमारे इलाके पर हल्की और सामान्य हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज तड़के सुबह पूर्व दक्षिण और ऊंचाइयों पर रह रहकर बारिश हो सकती है। आमतौर पर दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, रात के दौरान भी आसमान साफ रहेगा। हवा दक्षिण दक्षिण पूर्व की तरफ से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिणी समंदर में 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, तो समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 14 से 17, अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:46 पर सूर्योदय, शाम को 5:41 पर सूर्यास्त होगा। चारों के आखिर में सुर्खियां। एक बार फिर इलाकाई अस्पतालों और कुछ मेडिक्लिनिक्स के बाद जल्द ही न्यू गोफ एरिया हेल्थ सेंटर में एक डायबिटीज एंड वास्कुलर सेंटर की स्थापना की जाएगी। मकसद है जनता को बेहतर इलाज और सेवाएं प्रदान करना। मोजाम्बिक से पशुओं को लेकर निकला जहाज कथित तौर पर अपने तय रास्ते से भटक गया है और वो मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर सकता है। मॉरिशस कोस्ट अथॉरिटी, मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी और नेशनल कोस्ट गार्ड की टीमें तैनात की गई हैं इस बात का ध्यान रखने के लिए कि जहाज से कोई भी अवैध माल या पशु न उतारा जाए। आज 2 जुलाई से वाकवा के जॉन केनेडी एवेन्यू पर स्थित तकामाका पुल नए सिरे से खुल रहा है, इस बात की घोषणा सार्वजनिक मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश ने कल क्यूपिप में की। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, एक हफ्ता हुआ है जब से वेनेजुएला में 2 विनाशकारी सिलसिलेवार भूकंप पेश आए थे। मरने वालों की संख्या 2300 पार कर गई है। देश विदेश की खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में कादे हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए। थोड़ी देर में शुभ समाचार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। नंबर 15 कौशन स्ट्रीट, नंबर 15 कौशन स्ट्रीट विल में कोचे मिलिटेयर में, कौशन स्ट्रीट विल में कोचे मिलिटेयर में 52 साल के 52 years old श्री शशि कुमार भवनी ज्योति, श्री शशि कुमार भवनी ज्योति जो शशि नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे

के अर्थयाज दिन के एक वजन के बेटे श्री सावन भवन ज्योति के मकान नंबर 15 कोसों स्ट्रीट विल में कौचे मिलते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोस्तांसाइपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 पीएम। रॉयल रोड इक्वायो में, रॉयल रोड इक्वायो में 82 साल की 82 इयर्स ओल्ड श्रीमती मुनेश्री रामबरन, श्रीमती मुनेश्री रामबरन जो तारा नाम से ज्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे, इनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे के मकान रॉयल रोड इक्वायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वो शौकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 पीएम। Avenue Rosier, number 2, Monseigneur Raffray, Léo Chétier Rouge, mais Monseigneur Raffray, Léo Chétier Rouge, mais Bavan Salke, 50, Ban, Bavan Salke, Satavan Salke, 57 years old, Janab Ahmed Khalil, Janab Ahmed Khalil, Janab, जो कालील नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए। इनका जनाजा आज दिन के 12:15 बजे, इनका जनाजा आज दिन के 12:15 बजे के मकान एवेन्यू रोज़िए नंबर 2 मोसल मौकाफ़िले ओशे तेरूज से उठाकर अंतिम दफनाने के लिए बामोशा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 9:15। क्लेफो नंबर 3 वाकोमी, क्लेफो नंबर 3 वाकोमी 80 साल की 80 इयर्स ओल्ड श्रीमती गजरानी जगमोहन, श्रीमती गजरानी जगमोहन पैदाशी नाम रामजादा, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1:15 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 1:15 बजे इनके दामाद श्री किशोर तकुरी के मकान क्लेफो नंबर 3 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेरिनो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:15 पीएम। भजन लेन लालमाटी में, भजन लेन लालमाटी में 39 साल के 39 इयर्स ओल्ड श्री युधीश लीलाधर, श्री युधीश लीलाधर जो सुदेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के 2 बजे, इनके अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके पिता श्री गुरुलाल लीलाधर के मकान भजन लेन लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाटी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 पीएम। ईस्ट लेन कॉन्डोस 4 बोन में, ईस्ट लेन कॉन्डोस 4 बोन में 65 साल के 65 इयर्स ओल्ड श्री श्रीमती ईश्वरी लक्ष्मण, श्रीमती ईश्वरी लक्ष्मण पैदाशी नाम गूर, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे के बेटे श्री मनीष लक्ष्मण के मकान ईस्ट लेन कॉन्डोस 4 बोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30। कोस्टल रोड पॉइंटो कानोनी में, कोस्टल रोड पॉइंटो कानोनी में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड श्रीमती गोमती पाइडियामा, श्रीमती गुमती पाइडियामा पैदाशी नाम रामचरण जो शांति नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके बेटे श्री संजय पाइडियामा के मकान कोस्टल रोड पोतो कानोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनी स्थियोली की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 पीएम। Chemin La Pompe, Caroline May, Chemin La Pompe, Caroline May, 74 साल की 74 years old, श्रीमती महेंद्री गर्बरन, श्रीमती महेंद्री गर्बरन पिताशी नाम चंदू जो महेंद्री नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे के बेटे श्री सूरज गर्बरन के मकान Chemin La Pompe, Caroline से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वो शौकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 एएम। सीते बहन चौबे प्लान मानियों में, सीते बहन चौबे प्लान मानियों में 44 साल की 44 इयर्स ओल्ड श्री राजेश गिरिधारी, श्री राजेश गिरिधारी जो आलू नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे, इनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे इनके मकान सीते बहन चौबे प्लान मानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 एएम। कौशलो समय गोनी में, कौशलो समय गोनी में 79 साल के 79 इयर्स ओल्ड श्री राजाना नाराया, श्री राजाना नाराया जो धर्मानंद नाम से ज़्यादा

0: जाने जाते थे। इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे, इनकी पत्नी श्रीमती ममिता नाराया के मकान कौशलो शुमेगोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिविया देगा लेके श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रुद्बॉशेरी मुकामे 69 साल के 69 years old श्री सुरुजलाल सोनिया जो विजय नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे, इनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे, इनकी पत्नी श्रीमती अमरावादी सोनिया के मकान रुद्बॉशेरी मौका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टेंस सेंट पियर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। La Croisée chez Belle Petite Rivière, 77 साल की 77 years old श्रीमती कमला देवी बीपन जो कमला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 9:45 बजे, इनकी अर्थी आज सुबह 9:45 बजे, इनके बेटे श्री आनंदत रामा के मकान La Croisée chez Belle Petite Rivière से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:45 AM। सेंट मारी गली ले कोनू सेंट क्वामे सेंट मारी ले कोनू गली सेंट क्वामे 87 साल की 87 years old श्रीमती चंद्रावती गोपल जो सीता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे, इनके मकान सेंट मारी ले कोनू रोड सेंट क्रॉ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले वाले पद की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। जकारोंडा स्ट्रीट ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट में 57 साल की 57 years old श्रीमती वीना राजेश्री मुतुवीरेन पैदाशी नाम बोला, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे, इनके मकान जकारोंडा स्ट्रीट ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताज सेंट पियर बॉम्बू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। Avenue Cour de Gaulle, Stanley Rose-Ilmé, 65 साल के 65 years old श्री वकील जगन्नाथ जो कुकू नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे, इनकी पत्नी श्रीमती स्वस्ति जगन्नाथ के मकान Avenue Cour de Gaulle Stanley Rose-Ilmé से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉन्वियो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9। नंबर 6 Avenue Lo के बोबा सेमी 44 साल की 44 years old श्री राजीव बंधुआ जो राजीव नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह 9 बजे, इनकी अर्थी आज सुबह 9 बजे, इनके मकान नंबर 6 Avenue Lo के बोबासेन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलेव्यू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9 AM। लॉट नंबर 9 मोसेलमो माउंट पॉम्पलमूसेज में 80 साल के 80 years old श्री ब्रह्मानंदा मंगापाती जो नंदा नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। कि अर्थी रविवार 12 जुलाई को, इनकी अर्थी रविवार 12 जुलाई को दिन के 10 बजे इनके मकान मोसेलमो माउंट पॉम्पलमूसेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:58 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ। चलिए बात करते हैं फटाफट से उन खास लोगों की जिनका आज है स्पेशल डे। तो आज बर्थडे है आरती जी का, जो कि लाल माटी से है। उनके बेटे अवनीश जी उनको विश कर रहे हैं और कह रहे हैं हमेशा खुश रहो। आज निशा जी का भी बर्थडे है, फैमिली विश कर रही है। अनाता जी, दिपने, दीदी कल्याणी, तरुल जी, और उन्हें कह रहे हैं हमेशा खुश रहो। बर्थडे विशेष शैलेश दोहू फ्रॉम वीना जी, उन्हें भी कह रहे हैं कि भाई हमेशा इंजॉय करो और ये गाने के साथ साथ आज का जो पार्टी शार्टी करोगे वो हमें ज़रूर बुलाएगा। और आज बिंदिया कालू जी का बर्थडे है, जो कि गुडलैंड से हैं। उनके हस्बैंड सोना जी उनको विश कर रहे हैं, दो बेटे सानी स्वयं एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स उन्हें विश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो भाई शाम को पार्टी करेंगे। क्या बात है भाई, ऐसे ही जुड़े रहिए अपने ही प्रोग्राम के साथ। मैं थी आपके साथ पूनम, मेरे बाद आने वाली हैं वेदिता, का साथ मिलेगा आपको। इन्जॉय कीजिएगा अपना पूरा दिन, और चाहे ऑफिस हो चाहे कहीं पर भी, घर पर इन्जॉय करते रहे। गाना आखिरी छोटा सा आप सबके नाम।

0: टाइम चेक, शाम सुबह के 7 बज रहे हैं।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती,
1: नॉर्थ साउथ
2: 103.5,
1: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4,
1: सेंटर
2: 99.4।
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.

और यहाँ तो बारिश ही बारिश है, ये पानी पानी पानी बरस रहा है, समझ गए ना। वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह के 7:05 हुए हैं। यू आर लिसनिंग टू मॉर्निंग बीट विनीता के साथ।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: देखो बुरा मत मानो, कभी कभी हम लोग इमेजिन कर लेते हैं और आज का मौसम देख के, सर्दी को देख के हमारे लिए ये इमेजिन करना बहुत ज़रूरी था कि धूप खिली हुई है और पानी एकदम ब्लू ब्लू है और हम बिल्कुल अच्छे हैं, हमें सर्दी नहीं लग रही है, जबकि हमें ही पता है हमें कितनी सर्दी लग रही है। हमारा ये जो टिप ऑफ द नोज़ है ना, इतना ठंडा हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या करें। एनीवे, आप लोगों को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आज है थर्सडे 2nd of July, सुबह के 7:08 हुए हैं। हम साथ रहेंगे आपके 9 तक एंड आई जस्ट होप कि यू कीपिंग वेल। वैसे आपको पता चल ही गया होगा आवाज़ से कि आज ये लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे अंदर में मंजुलिका स्त्री सब भरे पड़े हैं, घबराओ नहीं, बस आवाज़ थोड़ी आ नहीं रही है। और आज तो हम आपको गाना भी गा के सुनाएंगे, सुनोगे ना मेरा गाना? चलो ठीक है, तो साथ देते रहना और डोंट फॉरगेट योर मैसेजेस ऑन 5491294।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: बाहर का मौसम कैसा भी हो लेकिन अंदर से आवाज तो यही आ रही है कि इट्स अ ब्यूटीफुल लवली मॉर्निंग। चलो भाई, ये खुशियां जो होती हैं हमें बटोरनी आनी चाहिए और खुशियां आपको छोटी छोटी चीज़ों में मिल सकती हैं। किसी से प्यार से दो बोल बोल के, किसी को प्यार से गुड मॉर्निंग बोल के, किसी को ये बोल के थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट दे दो, यार बड़े अच्छे लग रहे हो आज, यार आपका ड्रेस बड़ा अच्छा है, अरे वाह क्या बात है, नए जूते लिए हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं इंसान को खुश करता है और हम भी चाहते हैं कि आप हमें खुश कर दो। हम तो आपको खुश करते हैं हमारे म्यूज़िक के साथ। आपका मैसेज आ जाता है और आप हमें कहते हो कि आपको हमारा म्यूज़िक पसंद है, आप कहते हो कि भाई आज मौसम अच्छा है, आप कहते हो कि बारिश हमें परेशान नहीं करता, बस हमारे साथ तो ये गाने और गाने के साथ हमारा मूड बन जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं और ये भी हैं कि आप किसी को हैप्पी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। पर अगर आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, अगर आप उनको खुश करना चाहते हो, लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से उनको एक वाउचर दिलाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर आपको मुझे भेजना है 1549-1294।

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
2: A very good morning, my dear friends. Welcome to Radio Musti. How are you doing today? कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ, जानती हूँ. सब कह रहे थे अच्छी हूँ. उनसे वो पूछे थे अच्छी हैं तो सब अच्छी अच्छी कर रहे हैं. कुछ लोगों को सुबह सुबह गागल करते हुए आवाज़ें आ रही हैं. पड़ोसी, बहुत सारी पड़ोसियां हैं जो गागल कर रहे हैं मॉर्निंग में. और कुछ लोग हैं जो बस देखो तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि घर से कंबल लेकर आए हैं और ओढ़ के बैठे हैं. तो अभी आपको थोड़ा सा संभलना होगा. मैंने हमेशा कहा है, मैं फिर कह रही हूँ कि दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं प्लीज़ उनको अपनाएं. ये जो गोल्डन मिल्क आप लोगों ने सुना है, ये हल्दी वाला दूध है जो हमारे घर पे माएँ बनाती हैं. सो प्लीज़ हैव द गोल्डन वाला दूध, यानी कि हल्दी वाला दूध. इसमें पेपर ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जब आप हल्दी में पेपर डालते हो तभी इसका काम शुरू होता है एंड उनके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं. चलिए, अभी फ़िलहाल हमें जो आपने मैसेज भेजे हैं इनमें से अब समय हो गया है कि मैं एक लकी ड्रॉ करूं. जब तक कि मैं लकी ड्रॉ करती हूं, आप लोग गाना सुनो, फिर उसके बाद कॉल करके देखते हैं कि कौन है जो जाएगा लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से ये वाउचर के साथ.
3: प्ले करो, स्माइल करो, बॉलीवुड के साथ चल करो, दिल से बॉलीवुड. रेडियो मस्त.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर हम कोशिश तो करते हैं मॉर्निंग में फ़ोन करके बात करने का, लेकिन कभी कभी ये भी होता है, हम हमेशा कहते हैं ना कि हमारे जो बर्थडे बॉयज़ या बर्थडे गर्ल्स होते हैं, कभी कभी म्यूज़िक समझ के पता नहीं क्यों डर जाते हैं, भाग जाते हैं। कोई बात नहीं, अभी हम कोशिश कर रहे हैं किसी और को याद करने की, कॉल करने की। अगर इनका नंबर लग गया तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे जो दादाजी हैं वो कितना खुश होते हैं। लेकिन दादाजी हमेशा क्या है ना कि वो लेट तक सोना पसंद करती हैं, या तो फिर मॉर्निंग में, और उनको कभी फ़ोन की पड़ी नहीं रहती, वो कभी फ़ोन उठाते नहीं है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम दादाजी को उठा दें, दादाजी से थोड़ा बात कर लें। अब अगर दादाजी ने फ़ोन उठा लिया तो ठीक है, अदरवाइज आपको पता है कि लोडो खाइपा मार्केट की तरफ से यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि जो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका जो दिन है हम खास बनाएं, स्पेशल बनाएं, उनके लिए एक वाउचर भी है। तो चलिए देखते हैं, अगर उन्होंने फ़ोन उठा लिया तो ठीक है, अदरवाइज हम बात करेंगे। हाँ जी, फ़ोन तो लग गया। हेलो, एक मिनट, लगता है आगे। हेलो, लगता है ये फ़ोन भी कट गया। कोई बात नहीं, हम बार बार कोशिश करें उनको फ़ोन करने की। तो ये हैं पापा जगदीश्वर लक्ष्मण, जो कि आज 83 इयर्स के हो गए हैं, और उनकी बेटी शालिनी कालीचरण और शीतल नायको की तरफ से, उनके बेटे नितेश की तरफ से उनको विश किया जाता है अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे।

0: रेडियो मस्ती।
1: तो जगदीश्वर लक्ष्मण जी को हैप्पी बर्थडे। और मैं आपको बताऊं कि आपको मिल रहा है एक वाउचर, और वो वाउचर आपको आकर कलेक्ट करना है आज या कल आईडी कार्ड के साथ। हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट जो है थोड़ी देर में आपको कॉल करेंगे और आपको देंगे सारे डिटेल्स। और थोड़ी देर में हम बढ़ने जा रहे हैं स्पोर्ट्स की ओर।
2: RM2 Radio Musty.
3: Avec Canal+, je stream grand matin, je stream midi, je stream tantôt, je stream à soir. L'autre, tout mon monde est connecté. Côte-moi, la meilleure, côte belle meilleure, n'importe qui l'est.
4: T'as y qui te stream, Goubza?
3: Dernier blockbuster, comme Anaconda, le Canal+, House of the Dragon, saison 3, le HBO, The Lander, le Star Gold, et nous la home, saison 3, le Netflix. Apportez-y 500 roupies par mois. App Canal+, un clic.
5: Canal+, c'est plus que vous ne l'imaginez. La plateforme qui réunit cinéma, séries, sport, telenovelas, Bollywood, mais aussi HBO, Netflix, le tout au même endroit.
6: Offre soumise à condition à Maurice. Modalité sur canalplus.com.
2: RM2
7: Radio Musty.
8: It's a unisex song.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: ये समय हो गया है, चलिए मिलते हैं अरविंद से, जानते हैं लेटेस्ट खबरें स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है। गुड मॉर्निंग अरविंद।
4: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आरएम टू लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। इंग्लैंड के लिए शर्मनाक हार, वन ऑफ द वर्स्ट ह्यूमिलिएशंस इन इंग्लैंड हिस्ट्री। ऐसा नहीं हुआ, होते होते मैंने दो गोल स्कोर करके इंग्लैंड को बेइज्जत होने से बचाया। कैप्टन, इंस्पिरेशन और अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैरी केन ने इंग्लैंड की लाज बचाई। कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बहादुर जाबाज टीम 1-0 से आगे थी। सेकंड हाफ में 15 मिनट बाकी थे, तब हैरी केन के पावरफुल हेडर पर मैच ड्रॉ 1-1। मैच को समाप्त होने से 4 मिनट पहले फिर से हैरी केन का गोल, इंग्लैंड 2 कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 1। He did what the great do, ऐसा बीबीसी स्पोर्ट्स में कहा गया। पर दाद देनी होगी कोंगो की जाबाज बहादुर टीम को, पहली बार वर्ल्ड कप में यहां तक आए और इंग्लैंड जैसी टीम को हराने के बहुत करीब। जो भी हो, हैरी केन का डबल, इंग्लैंड का अगला मैच मेक्सिको के खिलाफ। बेल्जियम की टीम भी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हुई। द रेड डेविल्स सेनेगल को 3-2 से हरा पाए। फर्स्ट हाफ में सेनेगल 1-0 से आगे था, फिर सेकंड हाफ में 2-0 से लुकाकू का गोल और चेलेमेंस ने अंतिम मिनट में मैच ड्रॉ किया 2-2 और एक्स्ट्रा टाइम में जाकर बेल्जियम को जितवाया चेलेमेंस ने। सेनेगल 2-0 से आगे फिर भी हार हुई बेल्जियम लास्ट 16 में, और यूएसए की टीम भी लास्ट 16 में पहुंची बोस्निया को 2-0 से हरा के। कनाडा, मेक्सिको और अब यूएसए तीनों मेजबान टीमें वर्ल्ड कप के लास्ट 16 में। अब सोमवार 6 जुलाई को मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड सुबह 4 बजे और ट्यूसडे 7 जुलाई यूएसए वर्सेस बेल्जियम। आज के मैच रात के 11 बजे स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया, फिर कल सुबह 3 बजे पोर्टुगल का मुकाबला क्रोएशिया से है, सुबह 7 बजे स्विट्जरलैंड वर्सेस अल्जीरिया, रात को ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इजिप्ट से और अर्जेंटीना केप वर्डे। ट्रांसफर न्यूज, टोटनहम हॉटस्पर के लिए ट्रांसफर रिकॉर्ड 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर टोनाली स्पर्स में आने वाला है। न्यूकासल यूनाइटेड के साथ 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर डील पर मंजूरी हो गई है। लिवरपूल के लिए दूसरी साइनिंग, फ्रांस का डिफेंडर रेन से जेरेमी जाके लिवरपूल में आ रहा है, 60 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर डील हुई। विक्टर म्यूनेज आने वाला है, कोच इराओला और नए खिलाड़ियों को साइन करना चाहता है। 1 जुलाई से साला, कोनाते, रॉबर्टसन लिवरपूल के खिलाड़ी नहीं रहे। टेनिस, विंबलडन ओपन में कल यानिक सिनर की जीत हुई, बहुत संघर्ष के बाद उसने बोगस को हराया 7-6, 7-6, 6-4 से, फिर अंद्रीवा को हराया क्रिस कीवा ने, और जोकोविच की जीत से सिपास के खिलाफ सबालेंका को गोव, अलियासिमेस ओसाका को बोली, मेडवेदेव पेगुला पोल मुचोवा फोनसेका और बेंसिच की जीत हुई। क्रिकेट में इंग्लैंड और टीम इंडिया के बीच पहला मैच टी20 मैच बारिश के कारण रोक दिया गया। भारतीय टीम

0: 189 रन बना पाई। संजू सैमसन एक पर आउट हुआ। ईशान किशन जीरो हाफ सेंचुरीज अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर की ओर से। वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच। सेशंस में फ्रेंडली मैच में मॉरिशस की रेस्ट जुनो टीम की दूसरी जीत। पॉपुलर स्टेडियम में रेस्ट जुनो टीम ने पेनाल्टी पर लेजेंड सेशंस को हराया। अंत में बता दें, इंग्लैंड बेल्जियम और USA लास्ट 16 के लिए क्वालिफाई हुए। थोड़ी देर बाद 8:30 बजे आपको ज्यादा जानकारियां देंगे वर्ल्ड कप पर। Till then, enjoy the music on Radio Masti.
1: Thank you, Arvind. Thank you so much.
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.

0: से बॉलीवुड रेडियो मस्ती।
1: वैसे ऐसे मौसम में ऐसा गाना अगर चल पड़ी ना तो वाह क्या बात है। अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियो मस्ती विदिता के साथ। देखो घर से निकल रहे हो, स्माइल करना मत भूलना। एंड बी केयरफुल ऑन द रोड इफ यू आर ड्राइविंग राइट नाउ।

और अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. ऐसा लगता है कि सारा स्ट्रेस पता नहीं कहाँ भाग गया. देखो ये जो गाना, इसकी फीलिंग को पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं इसको, ऐसे ही स्ट्रेस फ्री रहना, खुश रहना. और आज का दिन आपके लिए और भी बहुत स्पेशल, बहुत खास होने वाला है. चलिए अब हम अगले गाने के साथ बढ़ने जा रहे हैं 8 बजे के समाचारों की ओर. मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में. मूड एकदम बदल गया. डांस करने का मूड है तो हिला करो, अच्छा है.

नमस्ते, पेश बा भोजपुरी के समाचार मर्शस में। डायबिटीज सार्वजनिक स्वास्थ्य के एगो बहुत बड़का समस्या बनल बाटे। एकरा ध्यान में रख के सरकार जनता के जस्ती अच्छा सुविधा देवे खातिर ठोस प्रयास करता। इस दिशा में देखभाल सेवा बेहतर करे खातिर देश में कई इलाका में विशेष केंद्र स्थापित करल जाता। जीतू अस्पताल, फ्लाक के साज अस्पताल और पॉम्प्रोविंसिस के एसएसआईएन अस्पताल के बाद थ्रियोले और फ्लोरियाल के मेडिक्लिनिक और अब न्यूगोव के एरिया हेल्थ सेंटर में एगो छठा डायबिटीज एंड वास्कुलर सेंटर खोलल जाल। मकसद है जनता के बेहतर इलाज प्रदान करे के। गल थोड़ा बखत से ई नोट करल गल है कि सेंट जॉन नाइट शेल्टर में अब सब ले जस्ती 19 से 45 बरिस की उम्र के आदमी लोग रहत हुन जा। बेघर होए के समस्या पहले जस्ती बड़ जन लोग से जुड़ल माना जात रहल, बकिर अब ई समस्या ई सामाजिक समस्या कमती उम्र के लोग के बीच भी देखल जाता। अधिकारी लोग के अनुसार ये गो चिंताजनक प्रवृत्ति है जो मॉरिशस में कठिन हालात में रहे के तेजी से बदलल स्थिति दर्शावेला। ई वास्तविकता के बीच सहायता देवे होला संस्था लोग पर ही दबाव बढ़ाता। उन लोग के लगातार बढ़ल मांग और मदद के जस्ती जटिल आवश्यकता से निपटे के पड़ता। मंगल के राष्ट्रसभा में अप्रोप्रिएशन बिल बिना सुधार के पारित करल गल, जेकर से बजट 2026-2027 मंजूर कर लेवल गल। इस बजट में खाद्य सुरक्षा मुख्य प्राथमिकता में से एगो है। 25x35 फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के जरिए सरकार आव 2035 ले देश के खाद्य आवश्यकता के 25% हिस्सा

0: स्थानीय स्तर पर ही पैदा करे के आर आयात पर ही निर्भरता कमती करे के लक्ष्य तय कर ले बाटे। फागे के सीईओ माधवी माधु के अनुसार ई एगो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। उनका रही मानना है कि मॉरिशस सभी अपन इस्तेमाल की 70% तलेजस्ती खाद्य सामान आयात करेला तथा बीज खाद आर फिटोसैनिटरी उत्पाद खातिर भी काफी जस्ती विदेशी स्रोत पर ही निर्भरता बाटे। उनका अनुसार ई लक्ष्य की पूर्ति खातिर जस्ती अनुसंधान नवाचार कंपोस्ट आर ऑर्गेनिक खाद के उत्पादन तथा खेती खातिर जमीन सुलभ करे की आवश्यकता पड़ी। सरकार देश के बायोसिक्योरिटी खातिर संभावित खतरा के लेके सख्त रुख अपनावता। कृषि उद्योग मंत्रालय देने से काल पहला जुलाई के जारी करल गए कम्युनिके के मुताबिक मोजाम्बिक से जानवर के लेके निकलल जहाज अपेक्स एलएसएस सक्सेस कथित तौर पर ही अपन तय रास्ता से भटकल बाटे और मॉरिशस की समुद्री क्षेत्र में ढुके के कोशिश करता। मॉरिशस पोस्ट अथॉरिटी मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी और नेशनल कोस्ट गार्ड की टीम लोग के तैनात करल गल है बात के ध्यान रखे खातिर कि जहाज से कोनो भी तरह से अवैध तरीके से कोनो भी माल या फिर जनावर के न उतारल जाए। और आज 2 जुलाई से वाकवा के जन के निधि एवेन्यू पर स्थित तकमा का पुल नवा सिरे से खुल गल बाटे। ये बात की घोषणा सार्वजनिक मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश काल क्योपिप में लिकाजेन पुल के दूसरका चरण के उद्घाटन के दौरान करलन। ये पुल के निर्माण 2 चरण में करल गल है जेकर खातिर 5 मिलियन रुपया के निवेश करल गल है। कई बरिस ले इलाका के बाशिंदा लोग ई कमती चौड़ा पुल के कारण कठिनाई के सामना करत रहलन जा हुआ कई गो हादसा भी पेश आयल बाटी। और दूसरा देश के खबर में एक हफ्ता हो गल बा जब से वेनेजुएला में 2 गो विनाशकारी सिलसिलेवार भूकंप पेश आयल बा। मरे हुआ लोग की संख्या 2300 पार कर गल है। जहां पर ही मलबा हटावे की काम जारी बाटे तो हुआं से जिंदा लोग के निकाले की संभावना भी कमती होल जाता। आज हुआ के लोग खाद्य सामान और दवाई की कमी के नवा संकट झेलत हुआ जा। तय रहल भोजपुरी के समाचार तो हर ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: A good beat for your morning show.
2: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: वही जो हमारा ये भोजपुरी गाना चलता है ना, काफी सारे लोग मूड में आ जाते हैं। जैसे रितेश जी भी ड्राइव कर रहे, कहते हैं बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल। और राखी भी कहते हैं मैं तो गाड़ी में डांस कर रही हूँ, तो चलो अच्छी बात है, डांस करो, अच्छी अच्छी बात है कि आप लोग अपना मूड सेट कर लेते हो। पता है ये छोटी छोटी खुशियाँ ही है जो पूरे दिन आपके साथ रहती है, है ना। तो अभी आज का मौसम कैसा रहेगा? वैसे जब मैं आ रही थी तो मैं तो अंधेरे में आ रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे अब ना शहनशे वाली फीलिंग आती है मुझे मॉर्निंग में जब मैं निकलती हूँ अंधेरी रातों में नहीं, मैं सुबह सुबह आती हूँ तो अंधेरा होता है। और पता नहीं अभी तो मौसम कैसा है बाहर, मैं स्टूडियो से बाहर गई नहीं। ऐसा करते अदिति को बुलाते हैं, उनसे जानते हैं मौसम का हाल।
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स,
3: ओनली टू विनर्स।
4: योर वेदर फोरकास्ट ऑन RM2
1: रेडियो मस्ती।
5: हल्की और सामान्य हवाएं चल रही हैं अगले 24 घंटों के लिए अनुमान। आज सुबह खासकर पूर्व, दक्षिण और ऊंचाइयों पर हल्की बारिश हो सकती है और दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। रात के दौरान भी आसमान साफ रहेगा। हवा दक्षिण दक्षिण पूर्व की तरफ से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिणी समंदर में 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 14 से 17, अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:46 पर सूर्योदय, शाम को 5:41 पर सूर्यास्त होगा।

0: de long shift commence par une bonne décision. Nescafé.
1: दोस्तों, हम सबके लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रेस होता है ना। हम कभी उससे लड़ लेते हैं, कभी वो हमसे लड़ लेता है, कभी हम स्ट्रांग बन के ओवरकम कर लेते हैं, कभी वो हम पे भारी पड़ जाता है। पता है, जिस तरह एक पेड़ होता है धीरे धीरे ग्रो करता है, उसी तरह लाइफ में भी पेशेंस और कंसिस्टेंसी से ही स्ट्रांग रूट्स यानी जड़ बनती हैं। जल्दी नहीं, सही डायरेक्शन में बढ़ना जरूरी है। एक पेड़ हमें क्या सिखाता है? उसके जो रूट्स होते हैं, जो जड़ होते हैं, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज और डिसिप्लिन लाइफ की फाउंडेशन होते हैं, और उसकी जो ट्रंक होते हैं हमें सिखाता है कि चैलेंजेस के सामने खुद को मजबूत रखना कैसे होता है। ब्रांचेस जो होते हैं वो हमें सिखाता है कि ग्रोथ के साथ नए अपॉर्चुनिटीज और रिलेशनशिप्स बनते हैं, और जो उनके पत्ते होते हैं ना, हर सीजन में बदलाव आता है। चेंज लाइफ का नेचुरल पार्ट है, इसको आपको समझना चाहिए। और जो उसके फ्रूट्स और शेयर होते हैं वो हमें सिखाता है कि जब हम ग्रो करते हैं तो सिर्फ खुद नहीं दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। ओवरऑल हमें पेड़ ये सिखाता है कि अगर आपको बनना है तो मुझ जैसा बनो, डीपली रूटेड, कॉल्मली ग्रोइंग और बिना शोर के दुनिया को बेहतर बने रहो। तो चलो, इसी के साथ हम कहेंगे कि अगर आपके लाइफ में भी कोई स्ट्रेस है तो वो बस अभी इस पल का है, कल जो होगा

0: a good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू रेडियो मस्ती। बस आप लोग डांस कर रहे हो, मस्त मूड में हो, ये मैं जानती हूँ। चलिए भाई, यहाँ पर देखते हैं किनको हैप्पी बर्थडे विश करना है। सो बर्थडे विशेज आए हैं फॉर माय बेस्ट मामी राधा सी गुलाम अवला मागी बाकवा। ये है श्रवण, भाभी कृति, अभिनव, कियान, नव्या एंड मामू विकास, साथ में अभिनेश, बहू शीतल और बेटी वंदना की तरफ से, स्वेनल की तरफ से बहुत सारा प्यार। एंड यहाँ पर अंशनी हमारे साथ हैं, रिव्या जी पोस्ट से नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर माई फैमिली। एंड श्रिया, यनीश, आशना, अनुष्का, धीरज, ये सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू। और वहीं पे गुलशन हमारे साथ है, बर्थडे विशेस जाता है फॉर मिसेस सत्यावती, देवी दीनव, गोशबुआ, अशोक, कीर्ति, अखिल, अभय, अर्णव, उमा, विनोद, विवेक, विधि और देवी दीन फैमिली की तरफ से। पति कमलेश का बर्थडे है, बहुत सारा प्यार। किरण, ईशानी, नील, सासू मॉम है कमला, पुदोदो विलेज से बहुत सारा प्यार एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच शीतल।

0: हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एंड एंजॉय करिए हमारे गाने. सनी यू लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच. चलिए इसके साथ नेक्स्ट गाना और हमारा इंतजार अभी कर रहे हैं अरविंद, कहते हैं कि बेटा जल्दी कर, अभी हम भी आने वाले हैं.
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती.
0: हमने भी छोटा छोटा पान वान खा के इंतजार कर लिया जाए. आए हाय हाय सच्ची

0: वाह वाह वाह वाह, क्या गाना है, क्या गाना है, क्या गाना, एकदम मूड सेट कर दिया। पान खा लिया तो अरविंद से मिले।
1: It's the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
2: Get ready for the biggest World Cup ever.
3: 2026 FIFA World Cup.
2: रेडियो मासी की टीम के साथ चलिए यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और

0: चलिए भाई अरविंद तो एकदम रेडी हो गए हैं भाई, आगे बताओ क्या चल रहा है।
1: वर्ल्ड कप मैगजीन सो होस्ट नेशंस कनाडा मेक्सिको के बाद यूएसए भी अगले राउंड के लिए टिकट बुक कर पाया, पर इंग्लैंड के लिए मामला गंभीर था। कोंगो डेमोक्रेटिक

0: रिपब्लिक के खिलाफ जमीन आसमान एक करना पड़ा और मसीहा हैरी केन का डबल, तब जाके इंग्लैंड ने कोंगो को हराया और इंग्लैंड की टीम क्वालिफाई अगले राउंड के लिए। पर आगे है इंग्लैंड के सामने मेक्सिको, मामला गरम होगा। अफ्रीका से और एक टीम एलिमिनेट हुई, बेल्जियम ने सेनेगल को हराया 3-2 से। सेनेगल की टीम 2-0 से आगे थी पर अनुभव काम आया, लुकाकू का गोल, चिलेमेंस का डबल और बेल्जियम पहुंचा अगले राउंड में और एक्स्ट्रा टाइम में बेल्जियम की जीत हुई। सो सेनेगल हार गया, सेनेगल वर्ल्ड कप से बाहर। और यूएसए की टीम भी लास्ट 16 में पहुंची, बोस्निया को 2-0 से हरा के, कनाडा, मेक्सिको और अब यूएसए तीनों मेजबान टीमें लास्ट 16 में। लास्ट 16 में मंडे 6 जुलाई मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड सुबह 4 बजे, फिर ट्यूसडे 7 जुलाई यूएसए वर्सेस बेल्जियम, आज के मैच रात के 11 बजे स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया, फिर कल सुबह 3 बजे पोर्टुगल वर्सेस क्रोएशिया, सुबह 7 बजे स्विट्जरलैंड अल्जीरिया, रात को ऑस्ट्रेलिया इजिप्ट और अर्जेंटीना केप वर्दी। वर्ल्ड कप जारी है, एक के बाद एक टीमें क्वालिफाई हो रही हैं लास्ट 16 के लिए और कुछ टीमें अलविदा कह रहे हैं वर्ल्ड कप को। आगे क्या होगा आपको बताएंगे जरूर वर्ल्ड कप स्पेशल मैगजीन में।
1: FIFA World Cup 2026, 11 June से 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates.

0: कमाल है, आई नहीं कैसे आई बेचारी। आप लोग खुद घर के सामने लिखते हो स्त्री का लाना। पढ़ी लिखी है लेकिन बेवकूफ है, आती है फिर चली जाती है।
1: A good beat for your morning show.
2: RM2 Radio Musti.
0: अरे झूठ थोड़ी ना बोलती हूँ, आपने मूवी देखी होगी, सारे मूवी में ये लिखा होता है, वो स्त्री का लाना, ये आती है पढ़ती है, पढ़ी लिखी है लेकिन बेवकूफ है, आती है पढ़ती है फिर वापस चली जाती है ना। चलो कोई नहीं, लेकिन मैं तो आती हूँ, रोज आती हूँ, और कभी मेरे अंदर की मंजुलिका और स्त्री देखना हो तो आ जाना कभी हवेली पे रात के 12 बजे, पता चल जाएगा। यस, यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती विनीता के साथ, आपका मॉर्निंग बीट है। और यहाँ पर हमारे जो दोस्त हैं, कितने सारे दोस्त हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट गाना जो होगा फॉर वाइफ बिंदिया, ये है गुडलैंड से, और सोना कालू की तर्फ से आपको कहेंगे हैप्पी हैप्पी बर्थडे। अच्छा आपकी वाइफ है, वेरी गुड। चलो जी, यहाँ पर ऋषि विदेशी हैं बॉम्बू से, और कहते हैं कि नेक्स्ट गाना प्लीज स्पेशली मेरी मूडी गर्लफ्रेंड के लिए, बॉम्बू रहती हैं, लेट राइजर हैं एंड उनका बर्थडे है, तो प्लीज़ हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए। इतनी तारीफ कर दी बेटा आप, तो मूड और भी अच्छा हो जाएगा। इसे कहते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। देखो ऐसा करो, आज का दिन उनके लिए स्पेशल बनाना, वरना आपका मूड खराब हो जाएगा। ऑल द बेस्ट टू यू बच्चा। चलो ठीक है, यहाँ पर सुप्रभात, चलो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। यहाँ छाया सुकोई है पेलगांव सेवास्तोपोल से, प्रोग्राम रोज सुनती हैं, थैंक यू सो मच। कहती हैं कि हमारे लिए तो हमारा एनर्जी बूस्ट हो जाता है, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो नेक्स्ट गाना आपके पति सुविराज के लिए, बेटा श्रेयस के लिए, बेटी शैवी के लिए, और खास तौर पे आपके सभी फैंस के लिए। ओह रियली, थैंक यू सो मच। आई होप भागने गए होंगे। और यहाँ पर हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं निशा को, जो रहती है दीपी ने, यह है कल्याणी कौतूहल से, और साथ में यही गाना डेडिकेट करेंगे, इतने सारे दोस्त क्या बात है। तो यहाँ पर गाना होगा आपके लिए दीपा बंतु, जो रहती है सेवास्तोपोल, आज उनका बर्थडे है, तो रेशमार विराज की तरफ से गाना होगा। एंड कुछ लोगों ने मुझे चाय भेजा है ब्रेड के साथ, बेटा रियल में भेजते तो पेट भी भर जाता, लेकिन अभी मन भर गया, थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ यहाँ पर गाना जाएगा आरती के लिए, जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करिए, और हस्बैंड विशाल, अवनीश, मामा सांता, पापा सोना, भाभी, दीदी ज्योति, रवीन, इन सब की ओर से हैप्पी बर्थडे। हो गया ना भाई, चलो कोई बचा तो नहीं।
2: RM2
1: Radio Musti.
2: Feel

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musty.
2: यस तो चलिए भाई यहाँ पर ड्राइव कर रहे हो आप लोग. मैंने बाहर का मौसम देख लिया, बादल ही बादल है. और ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं प्लीज़ अपना छाता अपने साथ लीजिएगा. और स्पेशली जब आप देखते हैं कि मौसम का ये रुख बदलने वाला है तो इट्स बेटर टू बी वेरी केयरफुल. कभी कभी होता है हम कहते हैं अरे ये थोड़ी सी बारिश होगी फिर क्या होता है, फिर पूरा भीग जाते हैं और घर पहुँचते पहुँचते क्या होता है कि पूरा आपको सर्दी लग जाती है. तो ये सर्दी का लगना हम हमेशा कहते हैं कि जो नेचर है ना, प्रकृति है, ये हमें पहले से ही तैयार रखता है. आपको पता है कि विंटर में जो है हमें ऑरेंजेस मिलने लगते हैं. ऑरेंजेस तो हमें मिलते ही हैं, ये जो मौदागिन होता है ये हमें मिलने लगते हैं. तो जो फ्रूट्स होते हैं ये खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है. विटामिन सी बहुत ज़रूरी है. तो अगर ज़्यादा नहीं तो अगर आप दिन में एक कीवी खा सकते हैं, एक अमरूद खा सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, तो फ्रूट्स खाइए. और आजकल तो देख रही हूँ कि भाई ये स्ट्रॉबेरीज भी मिल रही हैं, उसमें भी विटामिन सी होता है. बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है. एंजॉय करें एंड हमारे गानों के साथ चिल.

0: नहीं नहीं नहीं गलत हो गया.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
3: अच्छा गाजा गाना चल रहा था, मैं गा रही थी गलत.
0: मैं सुन रहा था कि तुम बोलोगी कि एक मैं और एक तू. अरे दोनों के बीच बात हो रही है.
3: नहीं,
0: और देखो
3: मैं,
0: नहीं वो भी ठीक है बात, लेकिन दो की बात इसलिए भी करना क्योंकि आज है 2 जुलाई और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. ये म्यूजिक का फ्लो यूं ही चलता रहता है और मौसम भी बदलता रहता है. अच्छा नहीं है वो, थोड़ी सी बारिश होनी है, हवा चल रही.
3: आज पहली बार कहने का मन कर रहा है कि आज का मौसम अच्छा नहीं है.
0: ओह माय गॉड.
3: लेकिन कोई बात नहीं, उसमें कुछ
0: नहीं, लेकिन आते ही आते मैंने इतनी अच्छुम अच्छुम की. ओह माय गॉड,
3: अच्छी नहीं थी वो.
0: हाँ, इट वाज
3: नॉट अच्छी, नहीं थी,
0: नॉट एट ऑल. लेकिन आप भी इसमें घुसे हुए हैं तो लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अच्छे से कवर कीजिए एंड देन हैव सम गरम गरम चाय या फिर गरम पानी या कुछ ऐसे करके बॉडी को हीट अप करके इंजन स्टार्ट चालू. तो फिर मैं आ जाता हूँ 9 से 12, मैं संभालू.
3: ऑलराइट, मैं चलूं, मैं आऊंगी अब मंडे मॉर्निंग में.
0: सी यू,
3: बाय बाय.

0: अब आप अदिति से समाचार सुनेंगे। नमस्कार अदिति।
1: नमस्कार अनुराधा, श्रोताओं को भी नमस्कार। मॉरिशस में डायबिटीज सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में पाई जाने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। इस दिशा में देखभाल सेवाएं बेहतर करने के वास्ते देश के विभिन्न इलाकों में विशेष केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। जीतू अस्पताल, फ्लाक के साज अस्पताल और पॉम्पलोमोसिस के एसएसआईएन अस्पताल तथा त्रियोले और फ्लोरियाल के मेडिक्लिनिक्स के बाद अब जल्द ही न्यू गोव के एरिया हेल्थ सेंटर में एक छठा डायबिटीज एंड वैस्कुलर सेंटर खुलेगा। मकसद है जनता को बेहतर इलाज प्रदान करना। सरकार देश की बायो सिक्योरिटी के लिए संभावित खतरे को लेकर सख्त रुख अपना रही है। कृषि उद्योग मंत्रालय की तरफ से कल 1 जुलाई को जारी कम्युनिके के मुताबिक मोजाम्बिक से पशुओं को लेकर निकला जहाज अपेक्स एलएसएस सक्सेस कथित तौर पर अपने तय रास्ते से भटक गया है और वो मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर सकता है। मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी, मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी और नेशनल कोस्ट गार्ड की टीमें तैनात की गई हैं ताकि इस बात का ध्यान रखा जाए कि इस जहाज से अवैध तरीके से कोई भी माल या पशु उतारा न जाए। अगले 6 से 9 दिसंबर के बीच पाए के स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट लगेगा। ये गतिविधि 1 जुलाई के आखिर के लिए निर्धारित थी, लेकिन केंद्रीय अफ्रीका में इबोला महामारी के फैलाव की वजह से इसे स्थगित किया गया है। इसका आयोजन मॉरिशस सरकार और कॉर्पोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका की मिली जुली पहल पर किया जाएगा। इस सम्मेलन में कई अफ्रीकी राष्ट्र और सरकारी नेता, अमेरिकी और अफ्रीकी उच्चाधिकारी, वरिष्ठ व्यापारी, निवेशक और फाइनेंसिंग संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेंगे। मकसद है व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी मजबूत करना। इस गतिविधि के लिए 2500 से ज़्यादा डेलीगेट्स मॉरिशस आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूसी ताकतों द्वारा यूक्रेन की राजधानी कीव पर किए गए हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 11 लोग घायल हुए हैं। कई जगहों में आग लगने की खबरें हैं। रशिया यूक्रेन संघर्ष के 4 साल हो गए हैं और कई शांति वार्ता कोशिशों के बावजूद संघर्ष थमने के आसार नहीं दिख रहे। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो गया। दीजिए नमस्कार।

कुछ अलग साल की शुरुआत हुई नहीं, 9:07 और हम साथ साथ हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का मस्ट मॉर्निंग शो। काफी सारे लोग हैं जो इस मौसम को बिल्कुल ना पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या करें, आ गया तो आ गया, चलिए इसको भी नमा लेते हैं। भाई संगे आपका थोड़ा गा लेते हैं।

जो बसात होगा वो भी सुपर हिट। चलिए करते हैं हर एक सिचुएशन के अंदर गानों को फिट। साइड पे क्या चल रहा है, थोड़ी सी भागा दौड़ी, अरे खाना पीना या फिर ये भूल गए वो भूल गए, बस आप फ्रीक्वेंसी पर सेट होना ना भूलें, उसके बाद सब कुछ फिट। All the ones hitting the road, hello.

0: मिस्टर नायडू की बारी आने ही वाली है। मूड बैंगल सेट हो जाता है, जो भी आप कर रहे हैं उसमें म्यूजिक जरूर शामिल करें, उसके बाद देखिए क्या रूप क्या रंग है और हमारी संगत। जितने लोग बाहर काम कर रहे हैं यानी कि मार्केट्स के अंदर या फिर कहीं फेयर में, अरे आप सभी को बहुत सारा साहस।
1: ऐसे बहुत अच्छा।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: जैसे आप चलते हैं आपकी राशि की तरफ और शुरुआत करते हैं वेद।
2: एरीज मेष राशि।
1: भाई आज की जो एनर्जी है वो फुल ऑन रहने वाली है, बस जल्दबाजी में किसी का दिल या फोन चार्जर मत ले जाना। एक स्वीट कॉम्प्लीमेंट किसी का दिन बना सकता है और आपका भी, सो वो ही कीजिए जो आपके लिए अच्छा और दूसरों के लिए भी।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: भाई कंफर्ट जोन आज आपके लिए फेवरेट रहेगा, लेकिन उसे बाहर निकलकर ही कुछ चैलेंजेस एक्सेप्ट किए जाते हैं। एक नई चाय या फिर एक नया गाना या नई बात को इस्तेमाल कीजिए, अपना लीजिए, क्योंकि मूड बनेगा बेहतर। स्माइल फ्री है, उसे यूज करते रहे।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: भाई आज आपकी बातें सबको इम्प्रेस कर सकती हैं, बस गॉसिप और गुड वाइब्स के बीच का बैलेंस बनाए रखिए। ऐसा ना हो कि आप किसी के दिल को दुखा दें और उसकी कीमत चुका दें। एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज फेस पर स्माइल ला सकता है।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: दिल की सुनना अच्छा है, लेकिन ओवरथिंकिंग को थोड़ा कॉफी ब्रेक दे दीजिए। फैमिली या क्लोज दोस्त के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके मूड होगा रिफ्रेश।
2: लियो सिंह राशि।
1: लियो, जो भी काम है उसको समय रहते कर दी हो, वैसे आज स्पॉटलाइट नेचुरली आपकी तरफ आ सकती है। कॉन्फिडेंस पहनिए, एटीट्यूड नहीं, किसी की तरफ आंख उठाकर देखते हैं, किसी को दिल से लगाते हैं, तो बस ये सोचिए कि वही कीजिए जो बाकी आपके साथ करें, या फिर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वही डबल एप्रिसिएशन आपको वापस मिलेगी।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: प्लानिंग आपकी सुपर पावर है, लेकिन हर चीज परफेक्ट होना जरूरी तो नहीं। कभी एकदम से कोई प्लान बन जाना या फिर कहीं पर टपक जाना हो और माहौल को बिल्कुल चेंज कर देना, तो थोड़ा रिलैक्स कीजिए और लाइफ को सरप्राइज देने का मौका तो दीजिए।
2: लीब्रा तुला राशि।
1: भाई आज बैलेंस बनाना इजी रहेगा, बस डिनर मेन्यू डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और कहीं पर कुछ खरीदारी, घर के लिए सामान खरीदना, बजट पर थोड़ा सा आप कंट्रोल रखें। हाँ, दिल और दिमाग दोनों की बात सुनिए।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: भाई आज मिस्ट्री कम और स्माइल ज्यादा रखिए, किसी पुराने दोस्त से बात हो सकती है जो पुरानी यादें ताजा कर ले, पॉजिटिव वाइब्स आप अट्रैक्ट करेंगे।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: एडवेंचर का मूड रहेगा, नहीं ऐसा नहीं कि आप पहाड़ों में निकल जाए, क्योंकि मौसम भी आजकल ऐसा ही हो रहा है। अगर ट्रैवल नहीं हो रही है तो एक नई प्लेलिस्ट बना सकते हैं या फिर एक मिनी वेकेशन प्लान कर सकते हैं यहीं आसपास कहीं, लेकिन लाफ्टर इज गोना बी योर लकी चार्म। अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को शामिल कीजिए और करिए इस फन को मल्टीपल ट्रिपल।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: भाई हार्डवर्क के साथ साथ थोड़ा सा सेल्फ केयर भी जरूरी है, आज एक छोटा ब्रेक बड़ी प्रोडक्टिविटी ला सकता है। वैसे एक्सपर्ट्स ही मानते हैं कि वही जिंदगी का काम, वही पकड़े हुए घोड़े की लगाम कब तक खींचते रहेंगे, इसलिए थोड़ा चेंज देना खुद को बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए प्रोडक्टिविटी क्या उछाल मारती है।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: क्रिएटिव आइडियाज आज फुल स्पीड में आएंगे, सब आइडियाज लिख लीजिए वरना हवा के साथ उड़न छू। किसी दोस्त के साथ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो सकती है, लेकिन कहीं पर भी अगर कुछ सीखने का मौका मिले, कोई सॉफ्ट स्किल भी, तो गो अहेड।
2: पाइसेस मीन राशि।
1: भैया जी जो इमेजिनेशन है वो हाई रहने वाली है, रोमांटिक गाने और बारिश वाली फीलिंग बोनस हो सकती है, बस सपनों के साथ रियलिटी के चार्जर को भी कनेक्ट करके ही रखिए। उसके बाद देखिए एनर्जी, मूड सब कुछ सुपर हिट।
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: रेडियो मस्ती।
1: जी साहब, हम तो चाहते हैं कि आप हम मॉर्निंग में बिल्कुल सेट हो जाएं, और वहीं पर जब बात करते हैं हम खाने पीने की तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन मॉर्निंग में वो प्यार की चुस्की बातें इसकी उसकी, और उसके बाद कुछ टाइम अपने साथ भी बिताना और ये समझ जाना कि आप भी कितने इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आज के लाइफ स्टाइल मंत्रा की बात कर लेते हैं। वैसे कहते हैं कि आज का मंत्र यही है कि हर नोटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं होती, नहीं ध्यान सुनिए, हर नोटिफिकेशन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन हर कॉन्वर्सेशन ज़रूर इम्पॉर्टेंट हो सकती है। स्क्रीन टाइम से ज़्यादा सीन टाइम को इम्पॉर्टेंस दीजिए। अरे भाई ये क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। वैसे रिसर्च कहती है कि जब हम थोड़ी देर के लिए फ़ोन साइड पर रखकर फैमिली फ्रेंड्स या कलीग से फेस टू फेस बात करते हैं तो स्ट्रेस कम फील होता है और मूड नेचुरली बेटर हो जाता है। कभी नोटिस किया आपने क्या आपके साथ ऐसा होता है? नहीं, आपको टाइम ही नहीं मिला ना इस नोटिफिकेशन स्क्रीन टाइम से थोड़ा दूर रहकर। देखिए साहब, चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। एक अच्छी हंसी हो या 10 मिनट की रियल कॉन्वर्सेशन सोशल मीडिया स्क्रॉल से कहीं ज़्यादा रिफ्रेश कर देती है। तो आज क्या करेंगे, तो आज खुद को एक फन चैलेंज दीजिए। खाना खाते वक्त या फिर चाय के ब्रेक के दौरान सिर्फ 15 मिनट ही सही, लेकिन फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखिए, साइड में रखिए, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बातें, कितनी हसीन मेमोरीज और कितनी जेन्युइन स्माइल्स आपका इंतज़ार कर रही होती हैं। आपने कितना इंतज़ार कराया है उनको, हाय रब्बा। इसलिए याद रखिए, ऑनलाइन रहना ज़रूरी है लेकिन लाइफ को लिव करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपके साथ दे रहा हूँ विकास, एंड इट्स गोना कंटिन्यू टिल 12। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है संगीत का जहाँ जाना है कहाँ।

0: अरे सुबह सुबह लोगों ने कहा कि जो बारिश हो रही थी उससे बचने का कोई तरीका।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: लेकिन नॉर्मल सी बात है कि जो बारिश हो रही है इससे तो बचने का तरीका नहीं है, लेकिन हाँ ये सच बात है कि जो बारिश हल्की हल्की है और थोड़ी थोड़ी बूंदें जो निकल रही हैं बस, और जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो ऐसे में ये बन जाता है एक डेडली कॉम्बिनेशन। थोड़ा अछूम अछूम होना शुरू होता है। लेकिन बात करें अगर अपने आप को आप वार्म रखते हैं और जाते ही कुछ गर्म पीते हैं तो यू स्टार्ट टू फील बेटर। नहीं, इस मौसम में सर्दी खांसी गले में खराश और कुछ वायरल इन्फेक्शंस का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग आपको हेल्दी और एनर्जेटिक रह सकती है। भाई रेनी मॉर्निंग टिप यही है, बॉडी को वार्म रखिए और इम्यूनिटी को सपोर्ट कीजिए। सुबह घर से निकलने से पहले बस 3-5 मिनट की लाइट स्ट्रेचिंग या थोड़ी सी वॉक कर लीजिए जिससे बॉडी एक्टिव हो जाती है। वैसे अभी तो निकल गए होंगे ना काम पर।

0: अगर पॉसिबल हो तो एक इन्फ्यूजन यानी उसमें अदरक तुलसी वाला कोई हर्बल ड्रिंक ऐसा कुछ पी सकते हैं और हल्का सा वार्म वाटर पीजिए। वही आजकल काफ़ी सारे लोग थर्मस लेके जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ इन्फ्यूज़ कर लेते हैं, ये भी अच्छी बात है। गले को कंफर्टेबल रखिए, इसमें आपको मदद मिलेगी अगर आप ऐसे इन्फ्यूजन पीते हैं साथ में। तो बारिश के मौसम में एक लाइट जैकेट, रेनकोट या अम्ब्रेला रखना ये बिल्कुल मत भूलिए। अगर कपड़े या शूज़ गीले हो जाएँ तो ज़रूरी है कि आप बैग में कुछ बहुत ही लाइट स्लीपर्स रख सकते हैं जो चेंज के तौर पर आ सकती है। अगर आप जाते हैं, बस पकड़ते हैं, पैदल चलना हो और इतना सब कुछ, गीली सॉक्स और शूज़ में ज़्यादा देर अगर आपके पैर रहते हैं तो टेम्परेचर गिर सकता है, डिस्कम्फर्ट बढ़ सकता है। एक और छोटी सी बात, बहुत सारे लोग बारिश में प्यास कम लगने की वजह से पानी कम पीते हैं, लेकिन बॉडी को हाइड्रेटेड रखना भाई ज़रूरी है। दिन भर में रेगुलर पानी पीते रहिए और सीजनल फ्रूट्स का आनंद लीजिए, उसके बाद देखिए सब कुछ चकाचक। अरे मौसम परेशान करेगा कब तक।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: चल चलते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में और अब रोबोट्स ये एक आम बात हो गई नहीं, घर की क्लीनिंग हो या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हाथ बटाना हो, हैवी हैवी चीज़ें उठानी हो, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अभी हो रहा है कि ह्यूमनॉइड्स को बनाया जा रहा है, ऐसे रोबोट्स जो फैक्ट्री में ज़रूर बनेंगे लेकिन पहुँचेंगे सीधा घरों में, और साथ ही बनने के लिए उनको बनाया गया है, इंसानों के साथ रहने के लिए बनाया गया है। इन रोबोट्स में सिलिकॉन की स्किन, इमोशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिवाइस में ही डेटा स्टोर करने की जो फैसिलिटी है वो दी गई है। इन्हें घरों और सर्विस वाली जगहों पर लोगों का साथी बनने के लिए, इमोशनल सपोर्ट देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब सोचिए वो लोग जो अकेले रहते हैं, इन रोबोट्स के साथ वक्त बिता पाएंगे, इमोशनल एक कनेक्शन बना पाएंगे। अभी कितना सही है या नहीं, उनसे पूछिए साहब जो अकेले रहते हैं और उनके पास कोई है ही नहीं बात करने के लिए, कोई समझने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इमोशंस को कैप्चर कर पाएगा, रिस्पॉन्सेज दे पाएगा, तो इंसान को भी लगेगा जैसे कोई है मेरा साथ देने के लिए। यू नो दैट फीलिंग, आई टेल यू। रोजाना काम करने वाले जब घर लौट कर आते हैं और फिर घर में कोई नहीं होता, तो ऐसी सोचा गया, चाहे बुजुर्गों की देखभाल करनी हो या फिर पढ़ाई किसी को करानी हो, ये सब हो सकेगा। हॉस्पिटैलिटी, रिसेप्शन और प्रीमियम होम सर्विस के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जा सकेगा। आने वाले टाइम में देखते हैं साहब कैसे कमाल करते हैं। लेकिन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए बनाए गए ट्रेडिशनल रोबोट से अलग हैं ये, और स्वाभाविक रूप से बातचीत करने के लिए बनाया गया है। ये मेल और फीमेल दोनों रूप में आते हैं और इनमें इतने सेंसर्स हैं और इतने आर्टिफिशली इक्विप्ड है इंटेलिजेंस है कि हर एक इमोशन को समझ सकते हैं। रोबोट के बाहरी हिस्से पर इसे इंसानों की तरह दिखाने के लिए सिलिकॉन की कोटिंग की गई है, ताकि लोगों को रोबोट से बातचीत करते समय ऐसा ना लगे कि वो किसी मशीन से बात कर रहे हैं। अरे साहब, देखते हैं आने वाले टाइम में ये कैसे हर एक आव भाव पर अपना स्वभाव देते हैं।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: नमस्कार, स्वागत आप सभी का संक्षिप्त समाचार के लिए। बिल्कुल तैयार और स्टूडियो में आ गए हैं अदिति, उनसे मिलेंगे और साथ में साथ देंगी भारती। आप दोनों को नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। सरकार देश की बायो सिक्योरिटी के लिए संभावित खतरे को लेकर सख्त रुख अपना रही है। कृषि उद्योग मंत्रालय की तरफ से कल 1 जुलाई को जारी एक कम्युनिके के मुताबिक मोजाम्बिक से पशुओं को लेकर निकला जहाज अपेक्स LSS सक्सेस कथित तौर पर अपने तय रास्ते से भटक गया है और वो मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर सकता है। मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी, मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी और नेशनल कोस्ट गार्ड की टीमें तैनात की गई हैं इस बात का ध्यान रखने के लिए कि इस जहाज से अवैध तरीके से कोई भी माल या पशु उतारा ना जाए। अगले 6 से 9 दिसंबर के बीच पाए के स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में US अफ्रीका बिजनेस समिट लगेगा। यह गतिविधि 1 जुलाई महीने के आखिर के लिए निर्धारित थी, लेकिन केंद्रीय अफ्रीका में बोला महामारी के फैलाव की वजह से इसे स्थगित किया गया है। इसका आयोजन मॉरिशस सरकार और कॉर्पोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका की मिली जुली पहल पर किया जाएगा। इस सम्मेलन में कई अफ्रीकी राष्ट्र और सरकारी नेता, अमेरिकी और अफ्रीकी उच्च अधिकारी, वरिष्ठ व्यापारी, निवेशक तथा फाइनेंसिंग संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेंगे। मकसद है व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी मजबूत करना। इस गतिविधि के लिए 2500 से ज्यादा डेलीगेट्स मॉरिशस आएंगे। पिछले कुछ समय से ये नोट किया गया है कि सेंट जॉन नाइट शेल्टर में अब सबसे ज़्यादा 19 से 44 साल की उम्र के बीच के लोग रहते हैं। बेघर होने की समस्या पहले ज़्यादातर बुजुर्गों से जुड़ी मानी जाती थी, लेकिन अब ये सामाजिक समस्या कम उम्र के लोगों के बीच भी देखी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार ये एक चिंताजनक प्रवृत्ति है जो मॉरिशस में मुश्किल हालातों में रहने की तेजी से बदलती स्थिति दर्शाती है। इस वास्तविकता के बीच सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है। उन्हें लगातार बढ़ती मांगों और मदद की ज्यादा जटिल आवश्यकताओं से निपटना पड़ रहा है। और विदेश की कुछ खबरें भारती बिहारी के साथ।
2: एक हफ्ता हुआ है जब से वेनेजुएला में 2 विनाशकारी सिलसिलेवार भूकंप पेश आए थे। मरने वालों की संख्या 2300 पार कर गई है। जहां मलबे हटाने का काम जारी है, वहीं इनसे लोगों के जिंदा निकलने की संभावनाएं कम होती जा रही है। अब वहां के लोग खाद्य सामानों और दवाइयों की कमी के एक नए संकट का सामना कर रहे हैं। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश

0: में 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। और उधर रूसी ताकतों द्वारा यूक्रेन की राजधानी कीव पर किए गए हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 11 लोग घायल हुए हैं। कई जगहों में आग लग गई है। रशिया यूक्रेन संघर्ष में 4 साल हो गए हैं और कई शांति वार्ता कोशिशों के बावजूद संघर्ष थमने के आसार नहीं दिख रहे।
1: तो ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। रोजे पिजानी स्ट्रीट मोग्राविये बोबासे में 88 साल के टी ए टी एस ओ श्री विष्णुदत्त सुखी, श्री विष्णुदत्त सुखी जो विष्णु नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और सन इंश्योरेंस और सेंट्रल एजेंसी के पूर्व निदेशक थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके मकान रोजे पिजानी स्ट्रीट मोग्राविये बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिछली थ्रीबिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूरिया 3 PM। नंबर 15 कोसों स्ट्रीट विलमे कोचे मिलिते में 52 साल की 52 ईयर्स ओल्ड श्री शशि कपूर भावनी ज्योति, श्री शशि कपूर भावनी ज्योति जो शशि नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के एक बजे इनके मकान, इनके बेटे श्री सावन भावन ज्योति के मकान नंबर 15 कोसों स्ट्रीट विलमे कोचे मिलिते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकुंसों सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:01 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
2: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Okay, so welcome back, ladies and gentlemen. जैसे मैंने कहा था कि दूसरे घंटे में और फिर से आपका साथ देने के लिए ऑल सेट. सो अभी के लिए चलते हैं थोड़ा दूर आगे, जहाँ पर बारिश और वहीं पर ठंडी मौसम, वहीं पर लोग ये कहते हैं कि आज सुबह सुबह घर से निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया. चलिए, इस चैलेंज को आप पार कर चुके हैं, निकल चुके हैं, सो इट्स ऑल गुड. बाकी जो जितनी चीज़ें उनको आराम से हम सेट करते जाएंगे और आपका हाथ थामे भी म्यूजिक वर्ल्ड में ले जाएंगे. चलिए, हाउस होल्ड देखो टिप्स और साथ साथ बात करेंगे आपकी आपके मैसेजेस 549-1294 पर और जानेंगे कि आपके साइड पर कैसा है मौसम, कितना मौसम.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

a beautiful track name. वैसे होता है कि जिंदगी के किसी भी सिचुएशन के अंदर गाने फिट हो ही जाते हैं. दैट्स द मैजिक ऑफ बॉलीवुड. AM to PM आपके साथ. RM2 वेरी पॉपुलर सॉन्ग. अरिजीत सिंह एंड निकिता गांधी. और मूवी तो भूत बंगला है, लेकिन कहते ना कि ये जिंदगी क्या है, एक पहेली या यादों की हवेली.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: हाँ सर, बात है कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्लानिंग होती है। ये दुनिया है गोल और यहाँ पर हर कोई निभा रहा है अपना अपना रोल। लेट्स रॉक एंड रोल एवरी सिंगल डे, हर दिन कुछ स्पेशल। वैसे सच बात है, अगर आपके पास होगा ना कि अगले दिन क्या करने वाले हैं, यू एक्साइटेड अबाउट दिस, तो आपको लगेगा कि अरे देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। ये जिंदगी में जो क्यूरियोसिटी है ना, ये जो एडवेंचरस फीलिंग है, वो बहुत अलग होती है, अमेजिंग। और कोशिश ये कीजिए कि हर दिन अपने आप को तो है ही है, लेकिन दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए जिंदगी जीने के लिए। और खुद से पूछिए कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। वो पहली चीज आपके दिमाग में जब खटकेगी तो आपको समझ आएगा कि जिंदगी ऐसी नीचे जाती। कुछ अलग करना हमेशा, हर दिन कुछ अलग चैलेंज एक्सेप्ट करना, यही तो है जिंदगी। नहीं तो H2O हो जाएगी जिंदगी, H2O यानी होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम। अरे घूम के आओ कभी इटली या रोम। यहाँ सपनों की बात करते हैं तो हर कोई अपना सपना सेट करता है, और कई लोग ये कहते हैं कि अपने जो आपने रखे ना टारगेट, वो थोड़ा ऊंचा रखें, अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाए फिर भी यू विल हिट हाई। कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएं। चलिए वहीं पर भाई, कोई इंटरनेशनल डे तो नहीं है, लेकिन साथ ही में कहते हैं कि वर्ल्ड UFO डे मना रहे हैं कई देशों में। UFO, अब सोचिए आपके सामने एलियंस आ जाए। नहीं वो वाला नहीं जो जादू दिखाता है ऋतिक रोशन को, जादू तू जाली खाता है, हाँ वो वाला नहीं जो धूप खाता है, हाँ वो वाला भी नहीं। लेकिन सोचिए आपके सामने कोई एलियन आ जाए तो आप उससे पहली चीज क्या कहेंगे, टेक मी टू योर प्लैनेट, कौन सी गैलेक्सी, कौन सी, अपनी तो मिल्की वे है। हाँ लेकिन उनसे ये पूछोगे क्या, ए बॉलीवुड सुनते हो क्या?
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: to Radio Musti. Fashion tips powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. Welcome to RM2.
1: Musti Mornings, Radio Musti.
2: आज सुबह से हर कोई बात कर रहा है कि बारिश के मौसम में क्या कपड़े पहनो, ये सोच कर दिमाग कभी कभी असमंजस में पड़ जाता है। सोचे तो ये क्योंकि रात को आप अपने कपड़े सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन सुबह हाई हील और साथ साथ में वो ठंडी वाली फील, फिर लगता है कि क्या होगा राइट चॉइस। वैसे काफ़ी लोग हैं जो बूट्स पहन रहे हैं आजकल। अच्छा, ये भी कि जब बारिश के मौसम की बात करते हैं तो काफ़ी लोग हुडीज पहनना पसंद करते हैं, लेकिन लेडीज आपका हेयर स्टाइल ये कभी कभी मुश्किल में आता है, सदमे में आ जाता है जब सब कुछ चिपक जाता है। नहीं, सच बात है। हाँ, लेकिन हुडीज डू प्रोटेक्ट। अगर आप बाहर जा रहे हैं, बस की लाइन में खड़े हैं, तो फिर ये बारिश की बूंदें आपको इतना इफेक्ट नहीं कर पाती। व्हेन यू हैव द हुडीज द थिक लेयर, क्योंकि जो पतले लेयर वाले होते हैं ना, वो जल्दी गीले हो जाते हैं और उसके बाद उनको सुखाना, वो डिसकम्फर्ट, ये काफ़ी मुश्किल होता है। इस मौसम में कॉटन या क्विक ड्राई फैब्रिक्स चूज़ कीजिए। हैवी जीन्स और मोटे कपड़े गीले हो जाएं तो जल्दी सूखते नहीं और अनकंफर्टेबल भी लगते हैं, तो ये चॉइस आपकी होगी कि क्या आप लेयर्ड पहनना चाहते हैं, फैशन एक्सेसरीज लगाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको ऑफिस के अंदर जब एसी नहीं चल रहा और ठीक ठाक मौसम है, देन यू कैन टेक ऑफ योर लाइट जैकेट्स, और आपके जो कॉटन फैब्रिक्स हैं, वो जो कलर्स हैं, वो कैन रियली कम इन द फ्रंट। फुटवेयर की बात करें तो लेदर शूज़ को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। वाटरप्रूफ सैंडल्स, रबर सोल स्नीकर्स या रेन फ्रेंडली फुटवेयर, ये कंफर्टेबल। और हाँ, अपने बैग में एक कॉम्पैक्ट अम्ब्रेला आप रख सकते हैं या फिर रेनकोट, जो कहीं भी इस्तेमाल में आ सकता है। और ये सच बात है कि फैशन वही है जो वेदर के साथ भी चले और कम्फर्ट के साथ भी।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. RM2
1: Radio Musti.

0: Yeah, it's love for music. It's love for Bollywood.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.
0: बात करते हैं बी टाउन की और अभी तो कुछ मूवीज रिलीज जरूर हुई हैं लेकिन सिटिंग ऑन टॉप बहुत आराम से इट्स धुरंधर द रिवेंज 1800 करोड़ से भी ऊपर कमाल

बॉर्डर टू, उसके बाद भूत बंगला. लेकिन अगर रिसेंट मूवीज की बात करें तो कॉकटेल टू इज डूइंग ऑलराइट, क्योंकि 100 करोड़ से ऊपर निकल गया, 128 करोड़. उसके बिल्कुल नीचे है वेलकम टू द जंगल, हमारी रिसेंट रिलीज. आज बात इसलिए करें क्योंकि थर्सडे, अरे फ्राइडे को बड़ी मूवीज रिलीज, और इस बड़ी लिस्ट में शामिल होने वाली है मूवी अल्फा, यशराज फिल्म, स्पाई यूनिवर्स, एक और फ्रेंचाइज. आलिया भट्ट काफी टाइम से खबरों में और सुन रहा है कि बॉबी देओल से काफी ज्यादा उन्होंने कीमत दी इस मूवी के लिए. बहुत ही कमाल का कैरेक्टर, एक हैवान जो करता है एक लड़की को बहुत ही परेशान, लेकर आती है एक प्रिंसेस, और उसके बाद क्या होता है, उसके एरोगेंस, उसका गुस्सा, उसका एक ऐसा विलेनस रोल और लुक लेकर शामिल किया गया है इस मूवी के अंदर अल्फा. वेरी प्रॉमिसिंग इन द मोमेंट. वैसे कह रहे हैं कि शुरू के अंदर ही लगभग 17 करोड़ की बात की जा रही है. यू नो ट्रेड एनालिस्ट वो बात करते हैं कि कितने एडवांस बुकिंग हो गए हैं, मूवी कितना कमाल कर पाएगी, ये थोड़ा सा आइडिया उनको मिलता चला जाता है. क्रूशल फिल्म होगी यशराज फिल्म के लिए. लेकिन अगर बात करें इस मूवी की तो आलिया भट्ट और शर्वरी, इनको कास्ट किया गया लगभग July 2023 में. सोचिए कब से काम शुरू. उसके बॉबी देओल 2024 में आ गए, अनिल कपूर July 2024, और फिर आपको बताइए कि दोनों के दोनों बहुत ही कमाल के एक्टर्स हैं. बॉबी देओल एनिमल के बाद इतने ज़्यादा पॉपुलर, लेकिन अनिल कपूर के बाद कोई और नहीं है अभी तक. झगास. चलिए आदित्य चोपड़ा के लिए बहुत कमाल की मूवी होगी. एंड लोग ये कहते हैं कि धुरंधर आने के बाद क्या वही फीलिंग आ पाई कि इट्स द स्पाई यूनिवर्स मूवी, क्या वो बनेगी धुरंधर, कर पाएगी थिएटर के अंदर वही कमाल. वी गोना कीप यू अपडेटेड.

0: to Radio Musti.
1: Alala ki zoli zoli, ou pa konnen ki zoli zoli.
2: Uniquement chez King Savers, du 25 juin au 13 juillet, les frites Unbrutus d'un kilo sont à 89,95 €. La glace Kulfi Dream de 900 ml est à 189,80 €.
3: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग-अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं। हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
4: Allons chez Lolo. Chez Lolo, c'est bon. Liquide vaisselle, 5 litres, 194,50 €. Chanteclair, Easy Pack, Pison, 1 kg, plus foie de poulet, 250 grammes, à 305 roupies. Merimo, shampoing 400 ml, 95 roupies.

कहना एक स्पेशल सॉन्ग फॉर आरती लालमाची में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, सो उनको बहुत सारी विशेज हैं विशाल की तरफ से, अवनीश है पूरी फैमिलीज की तरफ से, रामदयाल फैमिली, गुली फैमिली, दलतमन फैमिली, सीचन फैमिली, दयाल फैमिली, निलंबर फैमिली, जदू फैमिली, गोकुल सिंह फैमिली और साथ में रामपता, भगवान, तेंसी तोहल, गनू फैमिली, दीवू फैमिली, सभी फ्रेंड्स की तरफ से। वाह भाई वाह, आशा जानू जी गुड गुड वाली मॉर्निंग, शुभम के क्या हाल चाल। आपके मैसेजेस थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में संक्षिप्त समाचार।

0: यह वक्त हो गया संक्षिप्त समाचार का, स्टूडियो में आ गया अदिति और भारती, उनसे मिलते हैं, जानते हैं क्या है लेटेस्ट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। मॉरिशस में डायबिटीज सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में पाई जाने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। इस दिशा में देखभाल सेवाएं बेहतर करने के वास्ते देश के विभिन्न इलाकों में विशेष केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। जीतू अस्पताल, फ्लाक के साज अस्पताल और पॉम्पलोमोसिस के शिवसागर रामगुलाम अस्पताल तथा तयोले और फ्लोरियाल के मेडिकल क्लिनिक्स के बाद अब जल्द ही न्यू होव के एरिया हेल्थ सेंटर में एक छठा डायबिटीज एंड वैस्कुलर सेंटर खुलेगा। मकसद है जनता को बेहतर इलाज प्रदान करना। मंगलवार को राष्ट्रसभा में अप्रोप्रिएशन बिल बिना सुधार के पारित किया गया, जिसे बजट 2026-2027 मंजूर कर लिया गया। इस बजट में खाद्य सुरक्षा मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। 25x35 फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के जरिए सरकार ने अगले 2035 तक देश की खाद्य आवश्यकताओं का 25% हिस्सा स्थानीय स्तर पर ही पैदा करने और आयात पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य तय किया है। फाखे की CEO माधवी माधु के अनुसार ये एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। उनका कहना है कि मॉरिशस सभी अपने इस्तेमाल का 70% से ज़्यादा खाद्य सामान आयात करता है तथा बीज, खाद और फीटो सैनिटरी उत्पादों के लिए काफ़ी ज़्यादा विदेशी स्रोतों पर निर्भर करता है। उनका मानना है कि इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ज़्यादा अनुसंधान, नवाचार, कंपोस्ट और ऑर्गेनिक खाद के उत्पादन तथा खेती के लिए ज़मीन सुलभ करने की आवश्यकता पड़ेगी। आज 2 जुलाई से वकवा के जॉन केनेडी एवेन्यू पर स्थित तकामाका पुल नए सिरे से खुल रहा है। इस बात की घोषणा सार्वजनिक मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश ने कल क्यूपिप में काजियन पुल के दूसरे चरण के उद्घाटन के दौरान की। इस पुल का निर्माण 2 चरणों पर किया गया है, जिसके लिए 5 मिलियन रुपए लगाए गए हैं। कई सालों से इलाके के बाशिंदे इस कम चौड़े पुल के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, जिसके कारण विगत में कई हादसे भी पेश आए हैं। विदेश की कुछ खबरें भारती बिहारी के साथ।
2: एक हफ्ता हुआ है जब से वेनेजुएला में 2 विनाशकारी सिलसिलेवार भूकंप पेश आए थे। मरने वालों की संख्या 2300 पार कर गई है। जहां मलबे हटाने का काम जारी है, वहीं इनसे लोगों के जिंदा निकलने की संभावनाएं कम होती जा रही है। अब वहां के लोग खाद्य सामानों और दवाइयों की कमी के एक नए संकट का सामना कर रहे हैं। अंतरिम राष्ट्रपति देल्सी रोड्रिगेज ने देश में 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। और उधर रूसी ताकतों द्वारा यूक्रेनियन राजधानी कीव पर किए गए वृहद मिसाइल और ड्रोन हमले में 13 लोगों की मौत हुई है। ये हमला आवासीय इमारतों को निशाना बनाकर किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने रशिया को एक बड़े हमले की धमकी दी थी।
1: तो ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। ब्लॉक C20 NHDC रूट दे पॉम्पलेमोस ला क्रोजे वाले दे पोएटमी NHDC रूट पॉम्पलेमोस ला क्रोजे वाले दे पोएटमी 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की मिसेज हुस्ना बानू

0: रामदीन, मिसेस हुस्ना बानू रामदीन, जो हुस्ना बानू नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे मागों गली प्लेन वेत के अल ईसान फ्यूनरल सेंटर से उठाकर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। एवेन्यू नेपच्यून बोसोंज में, बासठ साल के 62 years old। श्री मोहन प्रसाद बिस्तो नारायण जो अनिल नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके मकान अविनी नेपच्यून बोसोंज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। रोजे पेजानी स्ट्रीट मोग्राविये बोबासमे, रोजे पेजानी स्ट्रीट मोग्राविये बोबासमे 88 साल के 88 years old। श्री विष्णु दत्त सुखी जो विष्णु नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, और पहले सन इंश्योरेंस और सेंट्रल एजेंसी के पूर्व निदेशक थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे के मकान रोजे पेजानी स्ट्रीट मोग्राविये बोबासमे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पेचित रिविया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3 PM। ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में 76 साल के 76 years old। श्री सुलेश गोकुलक जो सुलेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, और पहले SSN अस्पताल के अटेंडेंट थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनकी पत्नी श्रीमती माला गोकुलक के मकान ऋषि दयानंद लेन मौलाशो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इजी दो रोज़ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 11 AM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Kabhi spicy, kabhi sweet. Music lovers ki heartbeat.
2: Tak tak Bollywood.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: ग्यारह बजे 10 मिनट हैं, ऑलरेडी लैंडेड इन द थर्ड आवर, यानी कि ये है आखिरी घंटा ऑफ मस्ट मॉर्निंग शो। उसके बाद रेट्रो रिदम, जहां पर गाने थोड़ा जरूर मौसम चेंज करते हैं लेकिन फीलिंग तो वही है, द लव फॉर म्यूजिक एवरी सिंगल डे। ऐसे ही साथ देते रहे, सुनते रहे। चलिए इस घंटे में आपके कुछ मैसेजेस, और जाने कि आप ने कोई लास्ट मूवी देखी तो उसके बारे में बताइए ना कि आपको रिव्यू कैसा लगा, या फिर आपने जाकर खुद देख लिया तो आपका रिव्यू कैसा रहा। वहीं पर आपके फेवरेट स्टार से लेकर बात करेंगे किचन हैक्स एंड डेकोरेशन टिप्स की भी। स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल हैपनिंग राइट हियर, सिलसिला 12 बजे तक। इससे पहले कि आपको लगे कि एनर्जी हो रही है डाउन, ना करें गुस्सा ना फ्राउन, बिकॉज एनर्जी के बबल्स जो हटा देंगे सारी ट्रबल्स यहीं पर।
0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: हाँ, लेकिन मौसम देखने के बाद उई अम्मा।
1: Welcome to RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: जैसे आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर कोशिश करते हैं कि हम जिंदगी से जुड़े कुछ अंश भी इसमें शामिल करें, और कभी कभी होता है कि जब बच्चे टीनेजर्स बन जाते हैं तो वो रिबेलियस हो जाते हैं और माँ बाप उनको ठीक करने के लिए बहुत सारी बातें करने लगते हैं। भाई हमारे टाइम पर तो, या फिर हमने जो बोला वही होना चाहिए। भाई ऐसा ना हो कि बीच में टकराव हो जाए एंड बच्चे चाहे मुस्कुराएं लेकिन पीछे से आपसे गुस्सा ही खाएं, तो रिलेशन कभी वैसे ओरिजिनल नहीं रहेगा, उतनी मधुरता नहीं रहेगी, तो क्या करें। भाई ये बोलना छोड़ दें कि हमारे ज़माने में तो, क्योंकि अब चीज़ें बदल गई हैं, नहीं हर कुछ अलग होने लगा है। हाँ, वो बात अलग है कि जो वैल्यूज़ हैं, संस्कार हैं, वो ज़रूर रखें, लेकिन अगर आप बात करते हैं कि भाई कोई भी टीनेजर ना ये बात या डायलॉग सुनना नहीं चाहेगा, दूर होने लगे हैं, क्योंकि आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से अपनी सिचुएशन को ऐड करें कि हाँ, चाहे सिचुएशन कोई भी हो लेकिन अपनी वैल्यूज़ मत भूलो, अपने संस्कार नहीं भूलो, ये ज़रूरी है। और ये बोलना कि आखिर किस चीज़ की कमी है तुम्हारे पास, हाँ ये भी बोलना, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनकी भावनाओं को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। अगर उनको लगता है कि वो आपका सहारा चाहते हैं, इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं, और आप कहें कि अरे सब कुछ तो है तुम्हारे पास, तो उनको लगेगा कि अरे आपके पास टाइम ही नहीं है सुनने के लिए। अगर आप कहेंगे कि हर बात माननी पड़ेगी क्योंकि तुम मेरे घर में रहते हो, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो फिर उनको लगेगा जैसे वो एक बर्डन है। इस तरह के शब्द ना ऐसे एक धमकी की तरह लगते हैं, और आप अगर अथॉरिटी दिखाते हैं बच्चों की तरफ तो उनको लगता है कि उनकी फीलिंग्स को दबाने के लिए की जा रही है। तो कुछ उन पर थोपे नहीं, लेकिन चीज़ों को समझाएं कि ऐसे सिचुएशन में अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। फिर रोल चेंज हो जाएगा, उनको बात का मतलब समझ में आएगा और एक दोस्त की तरह रहेंगे। वो जो डिफिकल्ट ट्रांजिशन है टीनेजर से बाहर निकलकर मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ना, उसमें और साथ देना जरूरी, उनको समझाना जरूरी।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: जी 11:23 और थर्सडे का दिन है, 2nd of July, यानी कि 7वां महीना शुरू हो गया और जो मौसम चल रहा है वो ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी बारिश और बारिश के साथ हर एक बूंद के साथ जैसे कोई याद ताज़ा हो जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, RM2 पर रेडियो मस्ती, और हम कोशिश करते हैं कि रेडियो वेव्स के जरिए, गानों के जरिए आप लोगों से कनेक्ट हों, लेकिन आप लोग जब स्टूडियो में आते हैं हमसे कनेक्ट करने के लिए तो वो बात अलग होती है। प्लेन द पपाया से यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, मुस्कुराते चेहरे हैं और क्या अंदाज है, क्या आवाज़ है, क्या सुर है, क्या साज है, चलिए उनसे मिल लेते हैं। पहले तो नमस्ते।
3: नमस्ते।
2: देखिए नमस्ते भी कहते हैं हंसते हंसते, ये पॉजिटिव एनर्जी। अच्छा, हमारे साथ कोई है, उनसे भी बात कर लेते हैं जो थोड़ा बताएंगे अपने ग्रुप के बारे में। नमस्ते जी, आपका नाम?
4: नमस्ते, मैं शांता नेमधारी हूँ।
2: हाँ,
4: मैं प्लेन द पपाया की हूँ।
2: अच्छा,
4: मैं
2: अच्छा, तो बताइए कि अब ग्रुप के साथ आए हैं और थोड़ा घूम रहे हैं MBC?
4: जी हाँ, हम घूम रहे हैं, अभी MBC आए हैं, तो बहुत खुशी की बात है आज यहाँ हम सब लोग यहाँ।
2: हाँ, तो मैंने सुना कि आप लोग घूमने फिरने तो जा रहे हैं, स्टूडियो जाएंगे, रेडियो स्टूडियो, टीवी स्टूडियो, और आप लोग गाते भी बहुत बढ़िया है ना। अरे तो थोड़ा गाना सुना दीजिए, क्योंकि हम तो लता जी, आशा जी और ऐसे पता नहीं। हाँ, वो गाना कैसे था?
4: एक
2: मैं देता हूँ आपको, वो गाना शुरू कर दें, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें। हाँ शुरू कीजिए।
4: अजीब

0: लेकिन हम
1: अच्छा एक भाई साहब है जैसे वो गाना खत्म करती थी कहाँ खत्म टें टें टें टें टें कि अरे साहब अपना जो बाजा आपने बहुत कमाल का बजाया और आपने भी बहुत कमाल का गाया बहुत बहुत धन्यवाद इन गानों के साथ तो एमबीसी में घूम फिर कर मजे लीजिए जानी रेडियो के बारे में टीवी के बारे में और आप यहाँ पर आए अपने ब्लेसिंग्स के साथ आशीर्वाद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा रखें याद और आपकी पूरी टीम को नमस्कार एंड एमबीसी में आपकी विजिट बहुत ही कमाल की हो ये है हमारी भावना

0: M2 Radio Musti.
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: Allons chez Loulou. Chez Loulou, Mojo Peach Halves, 820 grammes à 49,50 €. Omega, lait entier en poudre de 1 kg à 199,50 € et recevez un jus La Vie 200 ml en cadeau. Lavage Kiri 32 portions à 122,50 €.
3: Loulou Hypermarché.

चले जाने के वक्त और थोड़ी देर में साधने के लिए नितुषा आ रही है रेट्रो रिदम। एक बार फिर से मिलेंगे आप और हम और ये सिलसिला चलेगा हमेशा की तरह RM2 पर। Enjoy the best mix of music और वहीं पर थोड़ा सा चेंज, कुछ पुराने गाने, एवरग्रीन, सुपर हिट, गोल्डन क्लासिक्स।

0: आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे रजनी। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं।
2: स्थानीय स्तर पर आज सुबह 6:30 रोजिल में एक हिट एंड रन का मामला पेश आया। पुलिस सक्रिय रूप से एक चालक को ढूंढ रही है जिसने फैजल रोजानी को टक्कर मारकर भाग गया। अब तक वाहन के बारे में पता नहीं चला है। 57 वर्षीय पुरुष और रोजिल का रहने वाला है। कृषि उद्योग मंत्रालय की तरफ से कैपर ही जुलाई को जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक मोजाम्बिक के पशुओं को लेकर निकाला जहाज एपेक्स एलएसएस सक्सेस कथित तौर पर अपने तय रास्ते से ही भटक गया है और वो मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर सकता है। मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी, मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी और नेशनल कोस्ट गार्ड की टीमें तैनात की गई है इस बात का ध्यान रखने के लिए कि इस जहाज से अवैध तरीके से कोई भी माल या पशु न उतारा जाए। अगले 6-9 दिसंबर के बीच पाए के स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट लगेगा। इसका आयोजन मॉरिशन सरकार और कॉरपोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका की मिलीजुली पहल पर किया जाएगा। सम्मेलन में कई अफ्रीकी राष्ट्र एवं सरकारी नेता, अमेरिका एवं अफ्रीके के उच्चाधिकारी, वरिष्ठ व्यापारी, निवेशक तथा फाइनेंसिंग संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्देश्य है व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी मजबूत करना। इस गतिविधि के लिए 2,500 से ज्यादा डेलीगेट्स मॉरिशस आएंगे। विदेशी समाचारों में जापान के प्रधानमंत्री सनाए टकाइची आज गुरुवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। जापानी प्रधानमंत्री को औपचारिक गौरव भी दिया गया। स्वागत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री से अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का परिचय कराया। कुछ अन्य विदेशी खबरें भारती के साथ।
3: एक हफ्ता हुआ है जब से वेनेजुएला में दो विनाशकारी सिलसिलेवार भूकंप पेश आए थे। मरने वालों की संख्या 2,300 पार कर गई है। जहां मलबे हटाने का काम जारी है, वहीं इनसे लोगों के जिंदा निकलने की संभावनाएं कम होती जा रही है। अब वहां के लोग खाद्य सामानों और दवाइयों की कमी के एक नए संकट का सामना कर रहे हैं। अंतरिम राष्ट्रपति देलसी रोड्रिगेज ने देश में 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है।
0: संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। मॉग्रावियर बुबासेमे, रोजे पेजानी स्थित मॉग्रावियर बुबासेमे 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के श्री विष्णुदत्त सुखी, श्री विष्णुदत्त सुखी जो विष्णु नाम से भी जाने जाते थे और पहले सन इंश्योरेंस और सेंट्रल एजेंसी के पूर्व डायरेक्टर थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके घर रोजा पेजानी स्थित मौकाविये बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिचित्रविया के शमशान भूमि ले जाए जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 3 PM। आवेन्यू नेपच्यून बोसोंज में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री मोहन प्रसाद बिस्तो नारायण जो अनिल नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके घर आवेन्यू नेपच्यून बोसोंज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 8 PM। रू मागो प्लेनवेट में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के बीबी हुस्नबानो रामजीन जो हुस्नबानो नाम से भी जाने जाते थे और पहले ब्लॉक C20 NHDC रोड दे पॉम्पलमूस ला क्वाजे वाले दे प्रत रहती थी का अंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे आलिसान फिनरल सेंटर रुमागों प्लेनवेट से उठाकर दफनाने के लिए रिश्तिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फिनरल टुडे एट 1:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
4: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and

0: रेट्रो रिदम।
1: दिन के बारे में कर 10 मिनट हो रहे हैं भाई, इतने प्यार से आप आवाज दे रहे थे, नहीं तो कहां जा सकती हैं। सो लेट मी विश यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून, प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। रेट्रो रिदम टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन,

साजा लेन में जहाँ पर ऐसी ऐसी आवाजें हुआ करती थी जो आज भी भले ही साल बीत गए बरसों बीत गए लेकिन वो गाने आज भी फ्रेश हैं और सुनकर दिल को खुश कर जाते हैं। सो चलिए दो घंटों के सुरीले सफर में आपका स्वागत। एज यूजुअल आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294 रेट्रो रिदम है तो संगीत धुन के साथ इन प्यारी प्यारी मेलोडीज के साथ हम आपका स्वागत करते हैं टिल 2 PM।

9294 पर थैंक यू सो मच हना. एंड आपका मैसेजेस, आपका जो मैसेज रहता है ना वो इतना लंबा होता है, बाप रे बाप. तो चलिए पूरे परिवार के नाम, लेकिन अच्छा लगता है. सिव सरन फैमिली फ्रॉम फ्लैक. एंड अगला गाना डेफिनेटली आपके नाम चलाएंगे आकाश एंड मनसुख परिवार. यहाँ पर है कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या ले शाम एंड फैमिलीज. और किसी ने क्या खूब कहा है कि इश्क की शुरुआत अक्सर एक छोटी सी मुलाकात से होती है. जब कोई आपके पास आता है और आपको अपने दिल की बात कहना ज़रूरी लगता है, शायरी के जरिए हम भी अपने इस पहले जज्बात को एक नई पहचान देते हैं, जिसमें हम अपने इश्क की गहराइयों को बयां करते हैं. वाह वाह, आप तो शायर बन गए आकाश एंड मनसुख फैमिली. जिंदगी में अगर थोड़ी सी शायरी ना हो, थोड़े से बोल, थोड़े से मेलोडीज ना हो, तो जिंदगी फीकी लगती है. थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी योर मैसेजेस ऑन सैकत नफ नफ दोज नफ कात. ये है रूप तेरा मस्ताना, लता जी किशोर कुमार के साथ.

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti. Radio Musti.
2: वही तो आपके दिल की बातें आप हम तक पहुंचाइए आपके मैसेजेस के जरिए ऑन 5499 1294। साहस और आवाज की दुनिया के दोस्तों बस दिल से दिल यहाँ पर मिल रहे हैं और सुर से सुर टकरा भी रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती। ये वाला गाना स्पेशली इन द वॉइसेस ऑफ येसुदास एंड हेमलता। इट्स योर रिक्वेस्ट भाई माहेन और आप है पाल्मा का त्रिभुवन से आपके पूरे परिवार के नाम। और पहले के ज़माने के गाने जो ना, ओ माय गॉड, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आज भले ही कोई गाना आ जाए, उनको आप एक हफ्ते दो हफ्ते एक महीने में भूल जाएंगे, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड एंड इन गोल्डन एरा में आपको ले चले हैं वंस अगेन टिल 2 PM। सो 5499 1294 पर कीप ऑन सेंडिंग मी योर मैसेजेस। गुड आफ्टरनून आपको शाम एंड डेबिचन फैमिली फ्रॉम पेरेबेयर। और यहाँ पर है कौन, अगला गाना चंद्रानी जी, प्रीति, सभी हरक चुलन परिवार के नाम फ्रॉम ऑसर जोशी।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: That was चिचोर फिल्म का सदाबहार गाना और इसी मूवी के साथ उन्होंने अपना डेब्यू किया था. आई मीन येसुदास द ग्रेट सिंगर. और उनको मिला भी था द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर फॉर द सॉन्ग गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा. गाँव से हो शहर से हो बड़ा यू माइट बी. एक छोटा सा मैसेज आपके साथ ऑन 5499-1294. That's Amit Kumar and Akay Agnik. Sanam, मेरे सनम, हम और आप एक साथ ऑन रेडियो मस्ती टिल 2 PM.

0: 2 रेडियो मस्ती
1: 12:43 मिनट है। थैंक यू सनम रे सनम, नींद आती है कम? नहीं, झूठ मत बोलो, सर्दी के मौसम में अच्छी नींद और भी अच्छी नींद आती है। तो बस जितने भी लोग इस वक्त आराम फरमा रहे हैं इन गानों के साथ साथ, थैंक यू सो मच। नहीं तो विद यू टिल 2 PM। एंड अगला गाना जो है कमला कातुबोन से है, तनवीर काजल आपके सभी परिवार नेमली गंगा बिसुन फैमिली के नाम। हैप्पी बर्थडे आपको सत्यावती देवी दीन फ्रॉम खुशबुआ, अशोक कीर्ति, अखिल भाई, अर्नव, उमा, विनोद, विवेक, विधि, देवीन परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।

0: रेट्रो रिदम
1: आसपास तीसरी मंजिल ऑफ कोर्स 1966 की सदाबहार मूवी और सदाबहार गाने ओनली फॉर यू 12:50 इतने सारे मैसेजेस आए हैं किन का पढ़ूं किन का ना पढ़ूं भाई मैं कोशिश कर रही हूं सब के नाम आ जाए तो वेरी गुड आफ्टरनून आपको माय प्रिया ज्योति आशनी रेखा सुरेखा माधव परिवार एज यूजुअल शतु बिना से है लेट मी विश हैप्पी बर्थडे टू यू प्यारी सी निशा आपके पति अनिल आपके दो बेटे अनंत परिवार दीपिने से आपकी सात बहनें आपके भाई लालमाची से हैं साथ में है जीतू हॉस्पिटल टीम की तरफ से एंड बोकोराज बाय द वे टू ऑल एंड दीदी कल्याणी है फ्रॉम कॉटुगैल और हमारी टीम की तरफ से भी ढेर सारा प्यार कविता फ्रॉम दिफ्रेयर मोहन रेखा अंबिका प्रेमिला के नाम एंड अगला गाना किन के लिए यहाँ पर इतने सारे मैसेजेस हैं भाई ऑन सैकात नफ नफ दूध नफ कात तो गीतांजलि है और शिवानी अंजलि लक्ष्मी पूरे परिवार के लिए फ्रॉम त्रियुले विश्वानी दुमन फ्रॉम वाकवा और अभी आप बढ़िया बढ़िया गाने सुन रही हैं थैंक यू आपने गाने की फरमाइश की है चलिए मैं कोशिश करती हूँ आपके नाम इंदिरा शारदा सहेली है नीला प्रतिभा शोभा एंड गीता के लिए नमस्ते कविता फ्रॉम दिफ्रेयर मोहन रेखा अंबिका प्रेमिला के नाम चला दीजिएगा हम भी कोशिश करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू ओके ये तो हमने पढ़ लिया है ऑलराइट रेडियो मस्ती टीम कैसे हैं बाबू से धनेश्वर जी पत्नी सुनीता रेखा साथ में है मीना ऋषि रानी माला संजीव निशा एंड सभी दावे दोस्त सनीचर काउलिस और परिवार के लिए मिस्टर देव आप हो एज यूजुअल फ्रॉम पेरिस एंड गाना आपके नाम आपके लवली वाइफ आपके पूरे परिवार के नाम ललिता एंड डेविडसन फैमिली आज मेरे यंगेस्ट ब्रदर दिलीप 59th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आपकी तरफ से ब्रदर इन लॉ आनंद सब परिवार की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं एंड लवली दीपा बांटू आप रहते हैं लेजुआ सेबास्टोपोल आपका बर्थडे है बेस्ट विशेस मामा सीता पापा देवन रूमा रेशमा भाई हैं साथ में रति भी है सचिन पति हैं बॉबी विराज किशन लविश ओजस्वी की तरफ से सब की तरफ से ढेर सारा प्यार

चाहे माने ना माने हम तो मानेंगे कि आप हमारे हमसफर हमेशा बनते रहेंगे। 12:58 माने कि एक बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार और इस खूबसूरत सरबहार कारवां को आगे बढ़ाएंगे। टिल 2 PM साथ दीजिएगा। हाँ

0: नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज सुबह 6:30 बजे रोजिल में एक हिट एंड रन का मामला पेश आया। पुलिस सक्रिय रूप से एक चालक को ढूंढ रही है जिसने फैजाल होसानी को टक्कर मारकर भागने में कामयाब हुआ। अभी तक वाहन के बारे में पता नहीं चला है। 57 वर्षीय पुरुष रोजिल का रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात करते हैं। मॉरिशस में डायबिटीज सार्वजनिक स्वास्थ्य में पाई जाने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के वास्ते ठोस प्रयास कर रही है। इस दिशा में देखभाल सेवाएं बेहतर करने के लिए देश के विभिन्न इलाकों में विशेष केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। जीतू अस्पताल, फ्लाक के सनेरो जगन्नाथ अस्पताल और पॉपुलर मिसर्स के शशि सागर राम गुलाम अस्पताल तथा थ्रियोलिया और फ्लोरियाल के मेडिक्लिनिक्स के बाद अब जल्द ही न्यूक्रोव के एरिया हेल्थ सेंटर में एक छठा डायबिटीज एंड वैस्कुलर सेंटर खुलेगा। मकसद है जनता को बेहतर इलाज प्रदान करना। कृषि उद्योग मंत्रालय की तरफ से 1 जुलाई को जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक मोजाम्बिक के पशुओं को लेकर निकाला जहाज एपेक्स LSS सक्सेस कथित तौर पर अपने तय रास्ते से भटक गया है और वो मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर सकता है। मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी, मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी और नेशनल कोस्ट गार्ड की टीमें तैनात की गई हैं इस बात का ध्यान रखने के लिए कि इस जहाज से अवैध तरीके से कोई भी माल या पशु न उतारा जाए। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं विदेशी समाचारों की ओर। भारती बिहारी के साथ।
1: जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकेची का आज गुरुवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। जापानी प्रधानमंत्री को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। स्वागत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री से अपने कैबिनेट सहयोगियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का परिचय कराया। और उधर रूसी ताकतों द्वारा यूक्रेनियन राजधानी कीव पर किए गए वृहद मिसाइल और ड्रोन हमले में 13 लोगों की मौत हुई है। ये हमला आवासीय इमारतों को निशाना बनाकर किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रशिया को एक बड़े हमले की धमकी दी थी।
0: संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। गंगवीन गली विल्नो मेबग में 67 साल की 67 years old की श्री नाज सिंह बिसबिहारी जो राज नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम चार बजे उनके घर गंगवीन गली विल्नो मेबग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबो मेबग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 4 PM। एपास माकाओ सिटी मार्शल में 78 साल के 78 years old के जनाब मोहम्मद हनीफ अब्दुल्ला जो भाई मोहम्मद नाम से भी जाने जाते थे का अंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज शाम चार बजकर दस मिनट पर उनके बेटे जनाब मोहम्मद सलीम अब्दुल्ला के मकान एपास माकाओ सिटी मार्शल से उठाकर दफनाने के लिए खिश्ते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। Funeral today at 4:10 PM. Roger Pezani Street, Margravier Boubassemé, 88 साल के 88 years old के श्री विष्णुदत्त सुखी, जो विष्णु नाम से भी जाने जाते थे और सन इंश्योरेंस तथा सेंट्रल एजेंसी के पूर्व डायरेक्टर थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके घर रोजे पेजानी स्ट्रीट मौकाविये बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिछित्रविया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 3 PM। Avenue Neptune Bossonge में 62 साल के 62 years old के श्री मोहन प्रसाद बिस्तो नारायण जो अनिल नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके घर एवेन्यू नेपच्यून बोसोंज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 2 PM। रू मागों प्लेन वेत में 77 साल के 77 years old के बीबी हुसनबानो रामजीन जो हुस्ना बानू नाम से भी जानी जाती थी और पहले ब्लॉक सी

0: 20 NHDC रोड़े पंपले मुशला क्वाजे वाले प्रत मेरे तिथि का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे आलिसन फिनरल सेंटर विमागो प्लेंदे से उठाकर अंतिम दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फिनरल टुडे 1:30 PM। शुक्र रुबिन सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Radio.TV.
2: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services, TV contents such as films, TV serials, local productions, amongst others, TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on NBC's website mbc.mu and on NBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through NBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.
3: Retro Rhythm.
4: RM2. Radio Musty.

0: Retro Rhythm.
1: वाज गाना फ्रॉम द मूवी अनामिका 1973 की क्लासिक बॉलीवुड जिसमें संजीव कुमार नजर आए थे ऑफकोर्स अब जया बाधुरी के साथ एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवीज एवर जो उस साल की बनी थी और गाने तो मशहूर मेरी भीगी भीगी सी या फिर बाहों में चले आओ अब कभी भी रहो ऐसे गाने कभी पुराने होते नहीं हैं तो बस इन्हीं यादों को हम ताज़ा किए जा रहे हैं टिल 2 PM एंड आपके मैसेजेस इतने भर भर के आ रहे हैं ऑन 5499 1294 तो चलिए गले लगाते हैं इन गानों के साथ

0: प्यार की झप्पी, जादू की झप्पी, गानों की झप्पी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ ना. अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो प्यार बांटो, प्यार पाओ. ये भी जिंदगी के एक कैसे कहते कह सकती है फलसफे हैं. वेल, जो भी आप समझो, प्यार तो प्यार होता है.
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती.
0: एक बजकर 19 मिनट हुए हैं. थैंक यू सो मच जीना जॉयसुरी, कैसे है माय डियर, साथ देने के लिए एज यूजुअल. एंड वाओ, यहाँ पर आपके पूरे परिवार के लिए अब्दुल अंसार बानो, गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स. हाय स्वीटू नीटू, हाँ नाम बदल दिया. थैंक यू सो मच. गाने एंजॉय आप कर रही हैं, तुम्हारा प्यार चाहिए जीने के लिए. चलिए मैं आपको अपना प्यार देती हूँ, लेकिन यह गाना बप्पी लहरी की आवाज़ में है आपके नाम स्पेशली रोशनी. और राइट, मैं कोशिश करती हूँ. अगला गाना गुजार टू हूम, यहाँ पर है कौन मैं देख रही हूँ, मिला एंड रामडिकल फैमिली के लिए. एंड अशानीज कल्याणी, रीना, ऋषि, संध्या, तनुजा, मनीषा, विद्या, इरफान, उमा, राधा, स्टेफानी, राज, पॉपलो मुसलसी हैं. बस आपके मैसेजेस ऑन 5499 1294. ऐसे ही प्यार बांटते रहिए और प्यार पाते रहिए.

कैसे हैं आप आदू फैमिली खुशनुमा से वेल मौसम एकदम स्प्लेंडिड आपके यहाँ तो एंजॉय कीजिएगा ये गाने फर्स्ट डे आफ्टरनून है 2 जुलाई की तारीख अनुशाहरी नाम फ्रॉम ब्लेंड गोश गाना आपके पापा ससन माँ प्रेमिना भाई संजू सिस्टर इन लो आपके पूरे परिवार के लिए है सुदेवी जी कैसे हैं अरे बाप रे बाप इतना लंबा मैसेज आज ऑस्ट्रेलिया के छोटे वीर अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं सब परिवार की तरफ से राम गुलाम कुआरू गुरन सिंह राम जतन सब की तरफ से उनको ढेर सारा प्यार

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: आप कहते हैं गीत गाता चल चुत चलिए, हम भी गीत गाते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं आपके मैसेजेस के साथ। एंड अगला गाना किन के नाम, यहाँ पर इतने सारे, प्रकाशवती कैसी है माय डियर,

एज यूजुअल फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि आप हमें सुनते रहते हैं, और अभी के लिए द ब्यूटीफुल एंड सोलफुल वॉइस ऑफ नाजिया हसन, साथ में जोहब हसन का म्यूजिक दम दे दम, मैं गाऊंगी नहीं, आप सुनते चलो।

lovely gana. Kaafi rare gana hai, lekin haan, ekdam popular bhi hai. From the movie Parak. Hemlata aur Kishore Kumar ki awaazon mein. Thank you so much. Hey, cooking, looking, cooking nahi. Jitne bhi log cook kar rahe hai, yani ki kitchen mein, aapko bon courage. And of course, aapne humko TV pe dekha. Haan, aapko humari sari achi bhi lagi. Thank you so much. Hi, Nalini, kaisi hai, my dear, from Kathubon. And aapko bhi gaane ki selection bahut hi achi lag rahi hai. Thank you so much. हम तो कहेंगे सारे शहर में क्या, सारी दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है. आशा जी और रफी साहब की आवाज़ एक बार फिर ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. ये है बेराग फिल्म का सरबहार गाना.

0: रेडियो मस्ती सुनते रहो
1: सुनते रहो अपनाते चलो. थैंक यू सो मच. देवी जी कैसी हैं आप? ये गाना आपको बहुत ही पसंद है फ्रॉम द मूवी खूबसूरत. चलिए खूबसूरत लोगों के लिए खूबसूरत गाने इन द वर्सेस ऑफ कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति. यही गाना आपके नाम. आप है कौन? वेल आरती अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. सो सभी रामदयाल सीचन नीलंबर जदू लालमन दलतमन एंड दयाल परिवार एंड रेडियो मस्ती फैमिली की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं.

रेडियो मस्ती के साथ जुड़े रहे 157 टाइम टू से बाय बाय मुलाकात कल होती है अब सुबह 7 से 9 के बीच इन मॉर्निंग वेट टिल देन टेक केयर बाय बाय स्टे सेफ एंड हाँ परी भी आ गई है बस बातें बहुत सी होने वाली है इन बॉम्बे टॉकीज़ बाय

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check 2 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं अभियोदय. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. संक्षिप्त समाचारों में स्वागत करते हैं आप सब लोगों को. मॉरिशस में मधुमेह यानी कि डायबिटीज अभी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी

चुनौती बना हुआ है। इसके इलाज और प्रबंधन में सुधार के लिए देश भर में विशेष केंद्रों का एक नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। G2 फ्लक के सज SSRN अस्पताल और थ्रियोले एवं फ्लोरियल की मेडिक्लिनिक्स के बाद जल्द ही न्यू ग्रोव रूजवेल अस्पताल के पास एक पांचवा डायबिटीज और वास्कुलर सेंटर खुलेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूती मिलेगी।

0: ने इस मंगलवार को बिना किसी सुधार के अप्रोप्रिएशन बिल को मंजूरी दे दी है, जिससे बजट 2026-2027 को अंतिम रूप मिल गया है। प्राथमिकताओं में खाद्य सुरक्षा प्रमुख रूप से शामिल है। एक 25x35 फूड सिक्योरिटी के माध्यम से सरकार का लक्ष्य 2035 तक देश की खाद्य आवश्यकताओं का 25% स्थानीय स्तर पर उत्पादन करना और साथ ही आयात पर निर्भरता को कम करना है। फागे के सीईओ माधवी माधु के अनुसार ये लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी है। उन्होंने याद दिलाया कि मॉरिशस आज उपभोग किए जाने वाले भोजन का 70% से अधिक आयात करता है। और एक मौन परंतु महत्वपूर्ण बदलाव, जी हाँ, सैजों के नाइट शेल्टर में अब आधे से अधिक निवासियों की उम्र 19-45 वर्ष के बीच है। बेघर होना, जिसे लंबे समय से बुजुर्गों से जोड़ कर देखा जाता था, आज बहुत कम उम्र की आबादी को प्रभावित कर रहा है। ये चिंताजनक बदलाव है जो मॉरिशस में तेजी से बदलती बहाली और असुरक्षा को दर्शाता है। इस वास्तविकता के सामने शेल्टरों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आने वाली मांग लगातार बढ़ती जा रही है और सहायता की देखभाल की जरूरतें पहले से कहीं अधिक जटिल होती जा रही है। इस दिशा में सैजों के इस नाइट शेल्टर का उद्देश्य स्पष्ट है, इन लोगों को पुनर्वास, समाज में फिर से शामिल करने और उनकी आत्मनिर्भरता के पुनर्निर्माण की दिशा में उनका मार्गदर्शन व सहयोग करना है। और विदेशी खबरें रुद्रानी मोहबिया के साथ।
1: नमस्कार। पिछले 4 साल से ज्यादा समय से रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध दिन प्रतिदिन और भयावह होता जा रहा है। संघर्षों से घिरी दुनिया में जहां एक ओर कई देशों के बीच युद्ध शुरू हुए और फिर बात शांति स्थापना तक पहुंची, वहीं दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में शांति समझौते की स्थिति या फिर संघर्ष विराम की पहल दूर दूर तक नहीं दिख रही है। इसी क्रम में स्थिति और ज्यादा गंभीर तब हो गई जब गुरुवार तड़के रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों और सुइसाइड ड्रोन से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले ने यूक्रेन की राजधानी कीव को पूरी तरह से दहला दिया। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर प्रांत में सैफुल्ला झील में एक टूरिस्ट बोट के पलटने से 60 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता हो गया। खबरों के अनुसार कलाम इलाके में यह नाव पलट गई, जिसमें एक ही परिवार के 8 सदस्य घूमने गए थे।
0: इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनते हैं गोंगुएं गली विल्नोमेबर्ग में। गोंगुएं गली विल्नोमेबर्ग में 67 साल के 67 years old के श्री नाज सिंह बिसहरी, श्री नाज सिंह बिसहरी, जिन्हें सब लोग राज के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम के चार बजे उन्हीं के घर गेंगुएं गली विल्नोमेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टोंबू मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 4। एम्पास मकाओ सिते मौशाल में 78 साल की 78 years old की जनाब मोहम्मद हनीफ अब्दुल्ला, जिन्हें सब लोग भाई या मामद के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज शाम के चार बजकर दस मिनट पर उनके बेटे जनाब मोहम्मद सलीम अब्दुल्ला के मकान एम्पास्सा मकाओ सिते मौशाल से निकालकर दफनाने के लिए रिश्तिया का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल दिस आफ्टरनून एट 4:10। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies.
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.
3: heartthrob.

0: Cheese.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: तो चलिए दोस्तों 2:25 हो गए हैं, मैं हूं परी आपके साथ और लेकर आए हैं वी टाउन की खबरें। बता दें आपको, आमिर खान तीसरी बार दूल्हा बनने जा रहे हैं। दरअसल बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रिंट के साथ 5th ऑफ जुलाई को शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। वहीं आमिर और गौरी की शादी कैसी होगी, वेन्यू कहाँ होगा, कितने मेहमान वेडिंग में पहुंचेंगे, ये जानने के लिए हर कोई बेकरार है। तो थोड़ी सी खबरें हम भी आपके लिए लेकर आए हैं। सो यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है दैट

आमिर खान और गौरी 5th of July को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। साथ ही यहां पर कपल की वेडिंग आमिर खान के मुंबई स्थित घर में ही परिवार के सदस्यों और करीबों की मौजूदगी में होगी। साथ ही यहां पर खबर आ रही है दैट आमिर खान और गौरी की ग्रैंड वेडिंग नहीं होगी, इसके बजाय ये कपल एक रजिस्टर्ड मैरिज करने जा रहे हैं। और वहीं इस जोड़ी की शादी जो है वो दिन के फर्स्ट हाफ में होगी और आमिर खान और गौरी की शादी में उनके बच्चे भी इनवाइटेड है। साथ ही यहाँ पर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आमिर खान और गौरी की इंटीमेट जो रजिस्टर्ड वेडिंग है इसमें पूरी दुनिया से गेस्ट इनवाइट किए गए हैं और इस शादी में करीबन 100 से 150 मेहमानों के आने की उम्मीद है। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि कपल ने एक एक परिवार को खुद जाकर इन्वाइट किया है। हालांकि आमिर खान और गौरी की शादी में फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी नहीं आने वाला है, उन्हें कोई भी न्योता नहीं भेजा गया है। सो यहाँ पर स्टार्स की भीड़ तो नहीं लेकिन ऑफकोर्स क्लोज फैमिली फ्रेंड्स जरूर नजर आने वाले हैं आमिर खान और गौरी की शादी में। और याद आ रहा है हमें वही वो लगान वाला सीन जहां पर उनकी जो तब की को स्टार थी उनका नाम भी गौरी था, और चलिए अभी उनकी रियल लाइफ जो वाइफ बनने वाली है उनका नाम भी गौरी है। एंड वी डू होप दैट ये शादी एकदम परफेक्ट चले, जैसे मिस्टर परफेक्शनिस्ट हर चीज परफेक्ट करते हैं। दिस इज हिज थर्ड शादी, सो उम्मीद करते हैं दैट इस शादी में उन्हें अपनी जो सोलमेट है, लाइफ टाइम सोलमेट, वो जरूर मिले। सो गुड विशेस हम पहुंचा रहे हैं उनके सभी फैंस की ओर से। और वेल फ्रेंड्स कनेक्टेड हैं आप, सो दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज साथ दे रहे हैं। तो नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499 1294 पर।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti

0: Oldies.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: And well friends, it's 2:52. आलिया भट्ट की जिस फिल्म का उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो बस चंद घंटों में दुनिया भर के सिनेमाघरों में उतरने वाली है. एक्शन से भरपूर उनकी फिल्म अल्फा रिलीज के लिए एकदम तैयार खड़ी है. ट्रेलर में आलिया का दमदार एक्शन देखने को मिला और जिनसे उनके फैंस जो है वो उन्हें देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है. लेकिन अल्फा में एक्ट्रेस यूं ही खतरनाक और दबंग नजर नहीं आ रही है. उनके दमदार एक्शन के पीछे हॉलीवुड ट्रेनर का हाथ है. और चलिए आपको बताते हैं कि अल्फा के लिए आलिया भट्ट ने कैसी ट्रेनिंग ली है. टीजर के बाद आलिया भट्ट की फिल्म का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. स्पेशली उनके फैंस उन्हें इस एक्शन अवतार में देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. सो यहाँ पर आपको बता दी दैट वो अकेली यहाँ पर सब पर भारी पड़ती नजर आ रही है और सुपर एजेंट बनकर कभी दुश्मनों पर चाकू से वार किए तो कभी बंदूक की गोली से दुश्मनों का सीना छल्ली करती नजर आ रही है आलिया भट्ट. और आलिया इतनी निडर और दबंग हॉलीवुड ट्रेनर जेसन नेवोयोलो की वजह से है. और आपको बता दी दैट उनके ये जो एक्शन ट्रेनर है वो काफ़ी सारे हॉलीवुड फिल्मों में स्टंट जो है वो करवा चुके हैं उनके एक्टर्स के साथ. और अब बारी है आलिया भट्ट की जिनके साथ वो काम कर रहे हैं. और ये तो हमने देख ही लिया दैट आलिया भट्ट का सुपर दमदार एक्शन वाला जो किरदार है जो अवतार है वो उनके फैंस को काफ़ी पसंद आ रहा है. वैसे कुछ लोग यहाँ पर ट्रोल भी कर रहे हैं लेकिन जैसे हम कहते हैं भाई स्टार्स है तो ये दोनों तरफा जो क्रिटिसिज्म है वो तो मिलती रहती है. कभी तारीफ होती है कभी ट्रोलिंग होती है लेकिन बहुत सारे लोग एक्साइटेड है आलिया भट्ट को इस अवतार में देखने के लिए. आपको बता दें उनके जो ट्रेनर है हॉलीवुड से लाए गए हैं उनके ट्रेनर जेसन नेवियलो. और देखना काफ़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग होगा कि आलिया भट्ट का एक्शन लोगों को कितना पसंद आता है. और अल्फा में उनके साथ नज़र आने वाली है शर्वरी वाघ भी और उनके साथ होने वाला है यहाँ पर स्टार्स का एक बड़ा जमावड़ा. अनिल कपूर का नाम शामिल हो रहा है. बॉबी देओल को हमने देखा इन द टीज़र एंड नाउ इट्स आलिया भट्ट एंड शर्वरी वाघ. अब देखना यह है कि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म क्या कमाल दिखा है. भाई तैयारियां तो काफी चल रही है लेकिन जैसे हमने कहा कि लोगों का दिल जीतना अब इतना आसान नहीं है. सो लेट्स वेट एंड वॉच के अल्फा कितनी पसंद आती है दर्शकों को स्पेशली आलिया भट्ट के फैंस को. सो चलिए दोस्तों इसी ट्रैक के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. गानों का कारवां जारी रहेगा खबरों का कारवां जारी रहेगा परी का साथ एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. RM2 रेडियो मस्ती पर साथ दे रहे हैं आप. दिस वन गोज आउट फॉर यू रॉकी रानी की प्रेम कहानी. एंजॉय दिस वन.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं।
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Musti.
5: North, South,
6: 103.5.
5: East, West,
6: 96.4.
5: Center,
6: 99.4.
7: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
7: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
8: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं अभियोदय। आपको नमस्कार।
9: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा की जाने वाली जांच के दायरे में अब बैंक सीक्रेसी के अपवादों को और बढ़ाया जाएगा, यानी कि अब बैंक कुछ मामलों में जांच के लिए जानकारियां दे सकेंगे। सरकार ने बजट भाषण के दौरान बैंकिंग एक्ट में एक बदलाव करने का ऐलान किया। इसके तहत बैंक अपने ग्राहकों की गोपनीयता के नियम का उल्लंघन किए बिना कुछ जरूरी जानकारियां FCC को सौंप सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य कानून को एक समान बनाना है, ताकि पिछले अप्रैल में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एक्ट में किए गए बदलाव के बाद पैदा हुई कानूनी विसंगति या आपसी टकराव को सुधारा जा सके। घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ाई में एक नया कदम उठाया गया है। डोमेस्टिक अब्यूज बिल में कई ऐसे नए नियम लाए गए हैं जिनका उद्देश्य पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है। इसके साथ ही इसमें हिंसा के उन रूपों को भी पहचान दी गई है जिन्हें पकड़ना

0: इस नए कानून का स्वागत कर रही है। यह कानून ऐसी घरेलू हिंसा पर भी ध्यान देगा जो सीधे तौर पर दिखाई नहीं देती है। राष्ट्रीय सभा ने इस मंगलवार को बिना किसी सुधार के अप्रोप्रिएशन बिल को स्वीकृति दे दी है, जिससे बजट 2026-2027 को अंतिम रूप मिल गया है। प्राथमिकताओं में खाद्य सुरक्षा प्रमुख रूप से है और इस फूड सिक्योरिटी के माध्यम से सरकार का लक्ष्य 2035 तक देश की खाद्य आवश्यकताओं का 25% स्थानीय स्तर पर उत्पादन करना, साथ ही आयात पर निर्भरता को कम करना है। और विदेशी खबरें भारती बिहारी के साथ।
1: कतर के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार कतर और पाकिस्तान ने दोहा में अमेरिकी और ईरानी वार्ताकारों के साथ अलग अलग बैठकें संपन्न की, जिनमें 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन से संबंधित मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति दर्ज की गई। गुरुवार को एक एक्स पोस्ट में कतर के प्रधानमंत्री ने सलाहकार और विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि वार्ता शिखर सम्मेलन के परिणामों पर आधारित थी। यह ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता के अंतिम यात्रा के बाद जारी रहेगी। थाईलैंड के पूर्वी प्रांत में 11 वर्षीय एक लड़के ने तीर्थ यात्रा पर निकले भिक्षुओं में के एक समूह पर पिकअप ट्रक चढ़ा दिया। इस दर्दनाक हादसे में कम 8 भिक्षुओं की मौत हो गई। खबरों के अनुसार 5 भिक्षुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके अलावा 14 अन्य घायल भिक्षुओं और को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
0: तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। टेंपल रोड आमोरी में 82 साल के 82 years old के श्री माओदे मुदेली वायापुरी, जिन्हें सब लोग राजू के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के एक बजे उनकी पत्नी श्रीमती माया वायापुरी के घर टेंपल रोड आमोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट 1 PM। सिमिचिया रोड प्लेमायो में 36 years old के श्री विकेश बुधन, जिन्हें सब लोग इशले के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी शनिवार 4 जुलाई दिन के 10 बजे उनकी माँ श्रीमती संध्या गाबूजी के घर सिमिचिया रोड प्लेमायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेमायो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन सैटरडे 4th of July 2026 at 10 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies. Radio Musti.
5: Radio Musti.

सुबह फ्रेंड्स, इस आवो में आप सभी का स्वागत करते हैं. 3:07 हो गए हैं. थर्सडे आफ्टरनून, 2nd of July. आई डू होप यू एंजॉय योर थर्सडे आफ्टरनून. सर्दियों वाली ये दोपहर जहां पर आपके लिए लेकर आए हैं गर्मा गर्म बॉलीवुड सॉन्ग्स. दिस वन क्रिएटिंग मैजिक आजकल तो चर्चा हो रही है. बस इसी फिल्म की अंदाज धमाल 4 रिलीज होने वाली है जल्द, लेकिन रिलीज हो चुका है ये गाना. एंजॉय दिस वन.

So well friends, अब हम बात करेंगे एक्ट्रेस सकृति खरबंदा जिन्होंने इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल नोट शेयर किया है. उन्होंने बताया कि इस फिल्म को उन्होंने बहुत ही पसंद किया और इस फिल्म ने उन्हें बहुत ही टच किया है और उनके जो दिव्यांग दादाजी और नाना जी थे उनकी यादें ताज़ा कर दी इस फिल्म ने. फिल्म से जुड़ी अपनी इमोशनल जर्नी को शेयर करते हुए कृति ने लिखा कि इस फिल्म को उन्होंने अपने दादू और नानू दोनों की इस फिल्म ने उनको अपने दादू और नानू दोनों की याद दिला दी. उन्होंने कहा कि वो उन्हें हर दिन याद करती है लेकिन इस फिल्म ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर दिया और कहती हैं कि इस फिल्म ने उन्हें उनके सभी जो त्याग थे उसे याद करने पर मजबूर किया. जो

रहेंगे आपकी गुड विशेस, आपकी लवली विशेस फॉर योर लव्ड वंस. अभी के लिए लव्ड वंस की बात की है, सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल रोमांटिक गाना. इट ऑलवेज हिट्स द हार्ट, एंड जैसे हम कहते हैं कि दिल की सही नोट छेड़ना इस गाने को बिल्कुल आता है. भाई अरिजीत सिंह की आवाज़ और एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी आफ्टरनून को थोड़ा सा रोमांटिक बनाते हैं विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. एंजॉय दिस वन.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: चलिए दोस्तों, इट्स 356 एंड इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. लेकिन जाने से पहले आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 54991294 पर. यहाँ पर अनुष्का साथ दे रही हैं फ्रॉम गुडलैंड्स और डेडिकेट करना चाहती हैं एक लवली गाना. स्पेशली होगा फॉर मॉम सुदेवी और डैड, साथ में तीन किड्स, सभी के लिए प्यार. दैट्स कमिंग फ्रॉम अनुष्का. बिल्कुल जी, बिल्कुल स्वीट सा गाना आपके नाम. एंड वेल, अपना 83rd बर्थडे आज सेलिब्रेट किया है आपके डैड ने और नायको लक्ष्मण एंड कालीचरण परिवार. थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल मैसेज. आप खुश तो हम भी खुश, बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें. एंड अंकल जी को बहुत सारी गुड विशेस ऑन हिज स्पेशल डे. कुमार देवीचंद साथ दे रहे हैं आप, डेडिकेटिंग गाना फॉर पापा श्याम देवीचंद और उनके लिए मैसेज, लव यू पापा. स्वीट मैसेज ये है फ्रॉम मिस्टर कुमार. एंड ललिता जी कहते हैं, सब तो गाने लाजवाब है, बस मेरा नाम भी जरूर जोड़ दीजिए, अगला गाना आपके नाम. प्रीतम बेटू जी हमारा साथ दे रहे हैं आप और कहते हैं, अभी अभी काम से वापस आया हूँ एंड एंजॉइंग द वंडरफुल प्रोग्राम ऑन RM2 रेडियो मस्ती. अभी के लिए वाइफ वर्षा के लिए डेडिकेट कर रहे हैं ब्यूटीफुल गाना. सो वेल, इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. आ रही है गिनीशा लेकर योर रफ्तार वाइब्स, उनका साथ निभाइए ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. मुलाकात होगी जल्द. टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ.
3: एक दीवाना शहर में,
4: एक दीवाना नहीं

0: आइए सुनते हैं समाचार अभी उदय और रुद्रानी महाबियर के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनिशा, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मॉरिशस टेलीकॉम ने साल 2025 में बहुत ही शानदार वित्तीय प्रदर्शन दिखाया है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने 13.5 बिलियन रुपए की रिकॉर्ड दर्ज की है। इसके साथ ही कंपनी ने मॉरिशस को अफ्रीका और एशिया के बीच एक डिजिटल हब बनाने के अपने बड़े लक्ष्य को और मजबूत किया है। वाकवा में टाकामाका ब्रिज को एक नया रूप दे दिया गया है। लगभग 60 साल पुराना ये पुल सब बहुत ही लंबे समय से ट्रैफिक जाम की एक बड़ी वजह बना हुआ था। इसकी हालत ऐसी थी कि विपरीत दिशाओं से आने वाली दो बसें भी एक साथ सुरक्षित तरीके से यहां से नहीं गुजर पाती थी। कई महीनों के काम के बाद इस नए और चौड़े किए गए पुल का उद्घाटन आज सार्वजनिक मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश द्वारा किया गया है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा की जाने वाली जांच के दायरे में अब बैंक सीक्रेसी के अपवादों को और बढ़ाया जाएगा, यानी कि बैंक कुछ मामलों में जांच के लिए जानकारियां दे सकेंगे। सरकार ने बजट 2026-2027 के भाषण के दौरान बैंकिंग एक्ट में एक बदलाव करने का ऐलान किया। इसके तहत बैंक अपने ग्राहकों की गोपनीयता के नियम का उल्लंघन किए बिना कुछ जरूरी जानकारियां FCC को सौंप सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य कानून को एक समान बनाना, ताकि पिछले अप्रैल में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एक्ट में किए गए बदलाव के बाद पैदा हुई कानूनी विसंगति या फिर आपसी टकराव को सुधारा जा सके। और विदेशी खबरें रुद्रानी मुहाबिया के साथ।
2: नमस्कार। रूस ने गुरुवार की सुबह यूक्रेन

0: पैमाने पर हमला किया। इसके कारण भीषण विस्फोट हुए और कीव कई घंटों तक हिलता रहा। कीव शहर के सैन्य प्रशासन प्रमुख ने बताया कि हमलों में आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई, जिनमें 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह हाल में हमले का शिकार हुए अपने परमाणु ठिकाना का निरीक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को अनुमति नहीं देगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद घालिबाफ ने कहा कि इन ठिकानों तक IAEA की पहुंच की खबरें पूरी तरह गलत हैं और देश का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता।
1: तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। 6 बजे आप विस्तार के साथ सांकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। तब तक का अभय और रुद्रानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार और आदाब।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Raftar Vibes, Filmy Rides,
4: RM2.

0: वेलकम टू क्यू टाइम स्टूडियो की घड़ी में एक्जैक्टली 4:06 हो चुके हैं. विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून. नमस्कार और गणेशा का प्रणाम. और ये थर्सडे द 2nd of July 2026. जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो हाफ जो साल का जो हाफ मिड टर्म जो बोलते हैं ना, हम पहुंच गए हैं और आधे से तो वैसे ख़त्म हो चुके हैं और ओनली कुछ महीने बाकी हैं इस साल को पूरा कंप्लीट करने के लिए. देखते देखते टाइम कैसे बीत रहा है हमें पता भी नहीं चला. तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे जियो ना जैसे कि आज आपकी आखिरी दिन हो. एंड जस्ट मेक टू द मैक्स एवरी डे. जो भी आप करते हो आप बस खुशी से करते रहना एंड कीप ऑन क्रिएटिंग एंड रिक्रिएटिंग सम लवली मेमोरीज. तो चलिए जी, गिनिशा गई है साथ देने के लिए दिस ब्यूटीफुल शानदार योर रफ टार वाइब्स, जहाँ पे हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे वाइब्स सो दैट जस्ट टू मेक यू फील गुड. आज ऑलरेडी थर्सडे है, तो यानी कि कल इसका ना भी फ्राइडे एंड देन द वीकेंड विल स्टार्ट. सो वी काफी क्लोज है हम. तो चलिए जी, दिल छोटा नहीं करते हैं. आई नो सो मेनी पीपल मस्ट बी ऑलरेडी हिटिंग द रोड्स, ड्राइव केयरफुली. और जो अभी भी काम पे है सो कुराज टू यू. अगर अभी हेयर टू गिव यू वन ऑफ द बेस्ट लवली कंपनी विद सम गुड गुड म्यूजिक. तो चलिए जी, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड ऑन योर नंबर वन रेडियो स्टेशन.
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती.

खूबसूरत गानों का सिलेक्शन सर लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए. सो माय डियर लवली पीपल आउट देयर जो साथ दे रहे हैं, स्पेशली ड्राइवर्स जो हैं, हाँ जी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, अब सेफ जर्नी का टाइम है, तो सीट बेल्ट लगाओ और स्पीड को कंट्रोल में रखो और घर पहुंचते ही अपने फैमिली के साथ एंजॉय करो. लेकिन फिलहाल के लिए जिस अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए क्योंकि वी हैव गॉट यू सम लवली लवली गानों का सिलेक्शन. सो जस्ट टू गिव यू अ गुड एंड अ पॉजिटिव राइड हमारे साथ एंड टू ऑल दोस जो अभी जो है घर पे हैं एंड ऑलरेडी पहुंच गए हैं, हो सकता है ड्यूटी खत्म हो गए जल्दी से. सो प्लीज जस्ट रिलैक्स, अपना ख्याल रखना एंड कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन. एंड चलिए जी 5491294 पर यू कैन सेंड मी सम लवली मैसेजेस, यानी कि इफ यू आर ऑलरेडी हिटिंग द रोड एंड कुछ ऐसे ट्रैफिक रिगार्डिंग कुछ आपके पास मैसेजेस हैं जो आप भेजना चाहेंगे, इन्फॉर्मेशन है जो आप हमारे साथ बांटना चाहोगे, सो यू कैन डू इट राइट नाउ राइट अवे. एंड हियर वी गो, लेट्स ऑल एंजॉय द नेक्स्ट ट्रैक व्हिच इज स्पेशली आपके लिए हम लेकर आए हैं ऑन आवर टू रेडियो मस्ती.

0: ट्रिलॉजी टाइम भी चला जा रहा है ना, रियली होप दैट यू गाइस आर रियली हैविंग अ गुड राइड. यस, चाहे आप बस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, टैक्सी में हो, आप मेट्रो में हो, कहीं से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हो, आई जस्ट वांट यू टू एंजॉय द गुड म्यूजिक. और वैसे दोस्त, ठंड का मौसम तो बढ़ता ही जा रहा है, तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. गर्म कपड़े पहनिए, गर्म पानी पीते रहे, और अगर सर्दी खांसी या बुखार हो तो उसे इग्नोर मत कीजिए, ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से ज़रूर मिले. अपना ख्याल रखिए और इस विंटर को हेल्दी बनाइए और खुद हेल्दी आप रहिए, क्योंकि ठंड से बचने के लिए वार्म क्लोज पहनना बहुत ज़रूरी है. और हेल्दी खाना खाइए और अपनी इम्यूनिटी जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखिए. एंड यस, कीप ऑन हैविंग लॉट ऑफ विटामिन सी. आप फल बहुत खा सकते हैं, और कोल्ड कफ फीवर हो तो रेस्ट कीजिए और डॉक्टर की सलाह ज़रूर कीजिए. आई एम टेलिंग यू ऑल दिस क्योंकि आप लोग जो हैं हमारे लिसनर्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका ख्याल रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है. सो जस्ट स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड. एंड अच्छे अच्छे गाने सुनोगे तो आई गेस कि मन भी अच्छा रहेगा.
1: RM2 Radio Mustang.

0: बिल्कुल जी, लेके जाएंगे आपको स्पोर्ट्स की गलियों में, क्योंकि आ गए हैं इन द स्टूडियो हमारे स्पोर्ट्स गुरु मिस्टर अरविंद।
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो, द फ्लो एक्सपर्ट।
2: स्पोर्ट्स न्यूज,
3: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: तो आइए सुनते हैं अरविंद जी, कौन से चटपटी खबरें लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से। गुड आफ्टरनून टू यू।
4: गुड आफ्टरनून आपको। गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स। सो इंग्लैंड की टीम बाल बाल बच्ची कल कोंगो के खिलाफ, एक्चुअली 15 मिनट फ्रॉम ह्यूमिलिएशन, लेकिन हैरी केन फिर से मसीहा साबित हुआ और यूएसए भी क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। आज स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया, ये मैच 11 बजे खेला जाएगा और ये मैच आप लोग एमबीसी के स्पोर्ट्स 11 पर लाइव देख पाएंगे। इसके बाद कल सुबह 3 बजे पोर्टुगल क्रोएशिया, सुबह 7 बजे स्विट्जरलैंड अल्जीरिया, फिर कल रात ऑस्ट्रेलिया इजिप्ट अर्जेंटीना केप वर्दी। सो स्पेन जो अपने ग्रुप में पहले पोजीशन पे आया था, उसके लिए रिलेटिवली ये मैच आसान कहा जा रहा है, लेकिन इस लेवल में कुछ आसान नहीं होता। कल देखा किस तरह से इंग्लैंड को जमीन आसमान एक करना पड़ा कोंगो को हराने में। सो स्पेन ऑस्ट्रिया की टीम ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन दी ग्रुप स्टेज। पोर्टुगल क्रोएशिया, इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक तरफ तो लुका मोड्रिच दूसरी ओर, दोनों टीमों में अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, स्टार खिलाड़ी हैं। सो मिडफील्ड में काफी आक्रामक खेल होगा पोर्टुगल वर्सेस क्रोएशिया। स्विट्जरलैंड फेवरेट है अल्जीरिया के खिलाफ, उनका जो ग्रुप स्टेज रहा बहुत अच्छा गया। ऑस्ट्रेलिया इजिप्ट और अर्जेंटीना के विरुद्ध ये कल के मैच होंगे। सो इंग्लैंड की टीम मेक्सिको के खिलाफ खेलेगी और न केवल मेक्सिको का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, दे हैवंट कंसीडेड एनी गोल, पर मेक्सिको सिटी यानी अज्टेका स्टेडियम में जब मैच खेला जाता है तो ओपोनेंट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ये आल्टीट्यूड, वेरी हाई आल्टीट्यूड में ये स्टेडियम होता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। अब फुटबॉल खेलेंगे तो सांस लेना ही पड़ेगा। ये मेक्सिको के लिए एक एडवांटेज होगा और टोमास टुखेल ने बताया कि इट्स अ बिग डिसएडवांटेज फॉर इंग्लैंड। सो सब कुछ मेक्सिको के हक में जा रहा है, इंग्लैंड को संभल कर खेलना होगा अगेंस्ट मेक्सिको। मेक्सिको की टीम की अभी तक हार नहीं हुए, दे वन ऑल द मैचेस विदाउट कंसीडिंग अ सिंगल गोल। इतना कुछ वर्ल्ड कप के बारे में। टोटनहम हॉटस्पर की खरीदारी जारी है, दे हैव साइंड फर्नांडेस फॉर क्लब रिकॉर्ड 85

0: मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। ये माचुस फर्नांडिस है जो वेस्ट हैम यूनाइटेड में खेलता था, लेकिन अब टोटनहम हॉटस्पर में आ गया है। कुछ और खिलाड़ी आ सकते हैं इस टीम में, यानी टोटनहम हॉटस्पर जो एक के बाद एक खिलाड़ियों को साइन करता जा रहा है। द लेटेस्ट समरविल को टारगेट किया गया है। सो स्पर्स वेस्ट हैम यूनाइटेड से और एक खिलाड़ी को साइन करना चाहता है, क्रिसेंसियो समरविल, जबकि यूवेंटुस संडरलैंड के स्ट्राइकर ब्रायन ब्रोबी को साइन करना चाहता है, और एवर्टन पापे ग्वे और मंडेला केइता को खरीदना चाहता है टू रिप्लेस इद्रिसा ग्वे। इधर संडरलैंड के बारे में बताया, एवर्टन विलारियल से पापे ग्वे को साइन करना चाहता है, और एस्टन विला सेल्टा विगो से इलक्स मोरिबा को, कर्टिस जोन्स लिवरपूल में ही रहेगा क्योंकि ही इज रिलक्टेंट टू जॉइन नॉटिंघम फॉरेस्ट, जबकि इंटर मिलान उसके आस्किंग प्राइस से बहुत दूर जा रहा है। और फॉर्मर लिवरपूल बॉस यर्गन क्लॉप ने कहा कि वो जर्मनी का हेड कोच बनना चाहेगा अगर जूलियन नागेल्समैन को निकाला जाए या फिर उसको वो छोड़कर चला जाए। तो अभी तक लिवरपूल छोड़ने के बाद यर्गन क्लॉप काम नहीं कर रहा था एज मैनेजर एज सच। विंबलडन ओपन जारी है और आज इगा श्वातेक का मुकाबला काप्लिस्कोवा से है। बेरेटिनी मोफिस रिबाकिना खेलेगी मैकनाली के खिलाफ, स्वान अगेंस्ट कीज, और लड़कों में वेरेफ खेलेगा वालेंटिन क्वाये के खिलाफ, मैनसिट सिमप्रोव। फ्रिट्स ने आज किप्सन को हराया। जुडा अभी 3-2 से आगे हैं, 3-2 से आगे हैं फोर्थ सेट में अगेंस्ट कारेनो बुस्ता। आज के ये मैच हैं। कल के मैचों में सीना की जीत हुई थी, फिर आंद्रीवा की हार, क्रेटसिकोवा ने उसे हराया था, जोकोविच ने भी अपना मैच जीता कल। सेम फॉर सबालेंका, कोको गोल्फ और ओसाका भी कल जीत पाई थी। क्रिकेट पहला मैच, पहला T20 मैच इंग्लैंड और इंडिया के बीच वॉश्ड आउट, कल बारिश के कारण मैच रोक दिया गया बीच में ही। इधर इंग्लैंड वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन, ये है सेकंड सेमीफाइनल फॉर द वुमेन T20 वर्ल्ड कप, और इंडिया ए टीम प्लेइंग अगेंस्ट श्रीलंका, ए अनऑफिशियल टेस्ट। श्रीलंका की टीम बैटिंग कर रही है अभी, तो कल सुबह 3-4 दिनों में पता चल जाएगा ये कौन सी वो टीम जो जीतेगी। तो भूलिएगा नहीं आज के मैच, और आज का जो लाइव मैच होगा वो 11 बजे। प्लेंटी ऑफ मैचेस कमिंग अप, धीरे धीरे लास्ट 16 के सभी फिक्स्चर्स तैयार हो जाएंगे।
1: थैंक यू सो मच अरविंद।
0: थोड़ा बहुत देख रहे हैं आप वर्ल्ड कप?
1: थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, यहाँ हाइलाइट्स ज्यादा देख रही हूँ।
0: देर रात तक, कैन यू इमेजिन, ये जो मैच होने वाला है इंग्लैंड का अगेंस्ट मेक्सिको, ये सुबह 4 बजे होगा।
1: एंड पक्का इतना तो मुझे पता है कि आप अलार्म लगाएंगे, उठेंगे और जरूर देखेंगे।
0: नहीं, अलार्म लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर 1 बजे एक मैच है, 1 बजे का मैच देखकर थोड़ा हवा लेकर,
1: अच्छा
0: कॉफी पीकर, 4 बजे मैच देखकर तब जाकर थोड़ा आराम कर।
1: फिर अगले दिन काम पे भी तो जाना है,
0: क्या करे,
1: बहुत रैली आता है ना ऐसा मौका।
0: एग्जैक्टली, लेकिन आफ्टर 4 years,
1: सो कीप ऑन एंजॉयिंग इट एंड कीप ऑन ऑफ कोर्स लिसनिंग टू आवर स्पोर्ट्स गुरु ऑन आवर टू रेडियो मस्ती।
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.

0: tune.
1: Traffic update.
2: तो चलिए जी टाइम बीता चला जा रहे हैं फिलहाल के लिए इट्स ऑलरेडी 4:50 एंड आई एम हियर टू गेट यू सम ट्रैफिक अपडेट्स. जी हाँ, पीक आवर ट्रैफिक अपडेट लेकर आए हैं. सो कैपिटल से नॉर्थ की तरफ ट्रैफिक अब धीरे धीरे जाम होना शुरू हो गया है दोस्तों, क्योंकि ऑफिस आवर्स जो हैं ख़त्म होने के बाद गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है और इसलिए अगर आप उस रूट पर हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलिए. और रेजवी से फिनिक्स आई कैन सी उसकी तरफ ट्रैफिक अभी इतना हैवी नहीं है, लेकिन हमेशा की तरह धीरे धीरे व्हीकल्स जो हैं बढ़ रहे हैं और अगले कुछ ही वक्त में यहाँ भी कंजेशन बढ़ने की संभावना है. और हाजिशल कैथबोन और रोजिला में ट्रैफिक पहले से ही जाम है. मैं एक्चुअली मेन रोड्स पर व्हीकल स्लो मूव कर रहे हैं और इसलिए पेशेंस के साथ ड्राइव कीजिए. एक छोटी सी सलाह है सभी ड्राइवर्स के लिए, ट्रैफिक में जल्दी दिखाने की कोशिश मत कीजिए और सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और लेन चेंज करते वक्त इंडिकेटर ज़रूर यूज़ कीजिए और मोबाइल फ़ोन हमेशा हम कहते हैं उससे दूर ही रहे और सीट बेल्ट जो है हमेशा पहनकर रखिए. याद रखे घर थोड़ा लेट पहुँचना बेहतर है, लेकिन सेफ्टी सबसे ऊपर है और सेफली पहुंचना सबसे जरूरी है. सो सेफ ड्राइव टू यू, हैप्पी इवनिंग और हमारे साथ बने रहे ऑन आर एम टू रेडियो मस्ती.

Well, guys, check your time. 5:10 ho chuke hain. Welcome back in the second hour of this beautiful show. That's your Raftaar vibes happening on RNT Radio Masti. To all of our drivers who are hitting the road, drive carefully, baba. Aram se gaadi chalana and radio ka volume ab filhal ke liye aap thoda sa high kar lijiye kyunki lekar aaye hain such a beautiful track jo hum dedicate karna chahenge especially for you. और कंडक्टर्स हम आपको भूले नहीं है जी हाँ इवन यू इन माय हार्ट राइट नाउ हम भी तो आपको याद करते हैं तो चलिए जी 5491294 पर फिलहाल के लिए यू कैन जस्ट स्टार्ट सेंडिंग मी योर डेडिकेशंस डू लेट मी नो कहाँ तक पहुँचे हो आप

0: Fashion tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Such a beautiful and बहुत ही प्यारा सा गाना था. And just imagine travel करते करते आप अपने रेडियो का वॉल्यूम जब बढ़ा लेते हो और ऐसे गाने बज रहे हैं ऑन ऑल रेडियो मस्ती, कितना अच्छा लगता है ना. द वाइब्स जो है काफी चेंज हो जाती है. एंड यहाँ पे तो हम भी गा रहे हैं, नाच रहे हैं. आई हैव परी विद इन द स्टूडियो. हेलो परी.
2: हेलो गिरीशा. वैसे मैं जानना चाहती थी कि आप स्टाइल टिप्स देने वाली है, लेकिन टुडे आई एम लविंग योर स्टाइल. ये स्टाइल आपने कहाँ से देखा? यहाँ की मैं देख रही हूँ कि विंटर का मौसम है एंड यू हैव दिस ब्यूटिफुल पुल ओवर जो एकदम ग्रीन कलर का है और साथ में यू हैव अ वंडरफुल टी शर्ट. तो थोड़ा सा टिप्स हमें भी दे दीजिए, साथ ही मैचिंग आई शेडो भी है, तो थोड़ा सा टिप्स प्लीज.
1: टिप्स तो यही है मेरी जान. एक्चुअली आपको तो पता है हम तो फैशन टिप्स देने ही आ जाते हैं ऑन ऑल रेडियो. हम फैशन टिप्स जो है गुरु बन गए हैं आजकल. और अगर आपने मेकअप की ही बात की है तो मैं आपको एक विंटर जो फैशन टिप है देना चाहूंगी. विंटर में मेकअप को नेचुरल और ज्यूरी रखिए, क्योंकि जो सॉफ्ट आइज होते हैं, रोजी चीक्स होते हैं, मॉइस्चराइज लिप्स होते हैं, आपके लुक को कंप्लीट बना देते हैं. और हमेशा याद रखिए कि मेकअप के बिना फैशन का लुक अधूरा सा लगता है.
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाई हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स.

तो चलिए जी टोल दोज हु आर ड्राइविंग राइट नाउ, आप बस हमारा साथ यूं ही देते रहना और धीरे धीरे गाड़ी चलाते चलाते आप पहुंचे जाएंगे घर पे। और फिलहाल के लिए नेक्स्ट वन जो है दीपा बांटू के लिए, जो सेबास्टोपोल के रहने वाले, आज उसका जन्मदिन है। सो विशिंग हैप्पी बर्थडे फ्रॉम रेशमा, विराज, रति, किशन, बॉबी, ओजस्वी, लविश, सचिन, मामा सीता और पापा देवन की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू माई स्वीट हार्ट।

That's in the lovely voices of Antara Mitra, Nikhil D'Souza and Arijit Singh. आप लोगों के लिए on RNT Radio से फिलहाल के लिए स्टूडियो की घड़ी में 5:57 हो चुके हैं. थोड़ी देर बाद आप सुन पाएंगे समाचार and उसके बाद the good music continues आपके और हमारे बीच में on RNT Radio. Stay tuned and stay connected.

0: साथ देते रहना ऑन ऑन टू रेडियो मस्ती. फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम स्टूडियो के घर में, इट्स एग्जैक्टली 6 PM.
1: ऑन टू रेडियो मस्ती.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti. The Musti.

2 जुलाई 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बजट 2026-2027 मॉरिशस को अपनी सार्वजनिक वित्तीय स्थिति को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ाता है। ये मानना है कि रेटिंग एजेंसी मूडीज का, जिसने मॉरिशस के रेटिंग को BAA3 पर रखा है बरकरार। मॉरिशस टेलीकॉम ने साल 2025 में बहुत ही शानदार वित्तीय प्रदर्शन दिखाया है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने 13.5 बिलियन रुपए की दर्ज की है रिकॉर्ड। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा की जाने वाली जांच के दायरे में अब बैंक सीक्रेसी के अपवादों को और बढ़ाया जाएगा। सरकार ने बजट भाषण के दौरान बैंकिंग एक्ट में एक बदलाव करने का किया है ऐलान। वित्तीय साल 2026-2027 मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड के लिए एक नया मोड़, कर्ज का धीरे धीरे भुगतान, खर्चों पर नियंत्रण, मेट्रो नेटवर्क का आधुनिकीकरण और तोड़फोड़ को रोकने के लिए नए बड़े कदम। भूमि परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद ने मॉरिशस मेट्रो के सुरक्षित और लंबे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए पेश किया है अपना विजन। और विदेश में वेनेजुएला में आए दोहरे भूकंप के एक हफ्ते के बाद मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 2,295 हो गई है, जबकि 11,000 से अधिक लोग हो गए हैं घायल। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि साल 2026-2027 मॉरिशस को अपनी सार्वजनिक वित्तीय स्थिति को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ाता है, यह मानना है रेटिंग एजेंसी मूडीज का, जिसने मॉरिशस की सॉवरेन रेटिंग को BAA3 पर बरकरार रखा है। भले ही इस रेटिंग एजेंसी ने घाटे को कम करने

और सरकारी कर्ज को स्थिर करने के सरकार के प्रयासों की सराहना की है, परंतु उसका यह भी मानना है कि कई ऐसे खतरे हैं जो इस सुधार के रफ्तार को बिगाड़ सकते हैं, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि मॉरिशस टेलीकॉम ने साल 2025 में बहुत ही शानदार

0: इसको अफ्रीका और एशिया के बीच एक डिजिटल हब बनाने के अपने बड़े लक्ष्य को और मजबूत किया है। ज्यादा विस्तार रजनी बिकर के साथ।
1: मॉरिशस टेलीकॉम की वृद्धि जारी। वित्तीय वर्ष 2025 के समापन पर ग्रुप के कारोबार में 3.5% की बढ़ोतरी दर्ज। नेट प्रॉफिट 1 बिलियन रुपए से अधिक पर बरकरार। ये एक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस है जिसे उसने अपनी सेवाओं में सुधार लाने के वास्ते भारी निवेश किए। मॉरिशस टेलीकॉम के CEO विमल गंगादी ने कहा,
2: C'est qui explique ça, c'est premièrement confiance. Confiance qui population est dans le brand Mighty, confiance qui est dans Mauritius Telecom, qualité de service qui nous passe beaucoup de temps pour improve. L'année dernière, nous avons investi 2,7 milliards roupies dans ce qu'on appelle CAPEX pour faire que comment dire, nous avons réseau, nous avons infrastructure, viennent encore plus reliable.
1: अपने वित्तीय परफॉर्मेंस के अलावा कंपनियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और शिक्षा सेक्टर के लिए ऑपरेटर नवाचार के साथ उम्मीद रखे हुए हैं।
2: Nous lançons un produit qu'on appelle Mighty GPT, qu'ils ont dit nous-mêmes à Mauritius Telecom de payer ça dans nos opérations. Certains de nos clients payent ça dans le domaine de business. Et nous aussi expandons ça, on appelle ça Mighty GPT Education. L'idée, c'est ban professeur dans l'école, zo gen zouti IA qui fait de sorte que zo capable passe plus le temps faire ce qu'on appelle personalized learning. Et pour ban zélève, zo gen ce qu'on appelle un personalized tutor.
1: इसके अलावा मॉरिशस टेलीकॉम अपनी स्ट्रेटेजिक प्लान 2026-2029 की बदौलत अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में तेजी ला रहा है, जिसका मकसद है मॉरिशस को अफ्रीका और एशिया के बीच एक डिजिटल कॉन्फिडेंस प्लेटफॉर्म की तरह स्थापित करना।
2: Nous là pour servir la population mauricienne, tout d'abord. Donc ça qui nous fait un éclair, nous make sure, comment dire, côté réseau, côté mobile, côté internet, nous avons un service bien fiable. Et là, quand nous get au-delà de ça, dans la région, donc dans l'océan Indien et dans l'Afrique, c'est là que nous trouvons nous un rôle qui est capable bien important. Donc, premièrement, dans le domaine de connectivité même. Donc, nous en cours avec différentes négociations en ce moment-ci pour make sure que, comment dire, Maurice est connecté lui-même à l'Afrique bien, mais aussi à l'Asie. Mais à travers Maurice, l'Afrique s'est connecté lui-même better.
1: Mauritius Telecom qui ont reçu 1,9 million d'utilisateurs que ces services sont proposés. 5G que coverage que ça, Mauritius et Rodrigues qui 92% des îles que lié. 3,94,000 फिक्स्ड लाइन के लिए और 2,88,000 ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स के लिए।
0: पेनल्टी पॉइंट सिस्टम के लागू हो जाने के बाद सड़कों पर सावधानी भी और ज्यादा तेज हो गई है। इसके चलते कंट्रावेंशन की संख्या में एक नया मोड़ आया है। ज्यादा विस्तार रजनी बिकर के साथ।
1: आंकड़े चिंताजनक हैं। पिछले 31 जनवरी से पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम फिर से शुरू किए जाने के बाद से पुलिस की ओर से तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के लिए 16,000 कंट्रावेंशन दिए गए। पिछले मंगलवार को राष्ट्रीय सभा में सांसद फराद ओमिर के एक प्रश्न का जवाब देते हुए परिवहन मंत्री उस्मान माहौबंद ने सचेत किया कि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का अपराध काफी ज्यादा है, सबसे गंभीर अपराध जिससे पेनाल्टी पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। इन पिछले 2 महीनों में निर्धारित रफ्तार से 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाने के लिए आंकड़ों में 52% की बढ़ोतरी हुई। जहां तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा का है तो इसमें 53% की वृद्धि हुई है। 25 जून तक 850 कंट्रावेंशन दर्ज किए गए। मंत्री उस्मान मोहम्मद ने कहा, इन दो कैटेगरियों की रफ्तार से चिंता हो चली है। रफ्तार का सड़क सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि जब तेजी से गाड़ी चलाते हैं तब ब्रेक लगाते वक्त ब्रेकिंग का फासला ज्यादा लंबा हो जाता है, अतः टकराने की संभावना ज्यादा होती है। और जब तेजी से जा रहे हों तो जिस जबरदस्त तरीके से दूसरे वाहन के साथ टकराते हैं तो ये भी भारी ताकत है। सड़क सुरक्षा का एक अहम मुद्दा है, इसीलिए अभी रफ्तार पर ध्यान केंद्रित है। लोग भी चिंतित हो चले हैं, क्योंकि लाइसेंस खोने का भी डर है, क्योंकि अंक काटे जा रहे हैं तब बहुत देर हो जाती है। मंत्री ने याद दिलाया कि देश भर में लगाए गए 60 से ज्यादा फिक्स्ड राडार इन अपराधों के बारे में पता चला। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार उचित समय पर पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम के संभावित बदलावों की जांच करेगी। मंत्री उस्मान

0: मोमेंट में स्पष्ट रूप से कहा कि सड़क सुरक्षा के विषय पर कोई समझौता नहीं होगा।
1: अब उतरते हैं फुटबॉल की दुनिया में, जहां पर इंग्लैंड की टीम डीओ कोंगो के खिलाफ मैच में मुश्किल में फंसती हुई नजर आई, परंतु आखिरकार उसने मैक्सिको के साथ राउंड ऑफ 16 यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली। मैच में लंबे समय तक इंग्लैंड की टीम 1-0 से पीछे चल रही थी, परंतु अंत में हैरी केन ने दूसरी छमाही यानी कि सेकंड हाफ में शानदार 2 गोल दागकर फ्री लाइसेंस को हार से बचा लिया। इंग्लैंड ने यह मैच 2-1 से तो जीत लिया, परंतु टूर्नामेंट में आगे का सफर तय करने से पहले उन्हें अगले दौर में अभी अपनी कमियों पर काम करना होगा। इस मैच में इंग्लैंड की टीम को कोंगो के बेहतरीन गोलकीपर की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इस रोमांचक मुकाबले का सीधा प्रसारण कल रात आप सभी ने एमबीसी टेलीविजन के 11 चैनल पर देखा है। अरविंद बिसेसर की रिपोर्ट।
2: मैच की शुरुआत में ही इंग्लैंड को लगा हल्का सा झटका जब कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 7वें मिनट में ही खाता खोलता है। सिपेंगा का गोल, ये उसका पहला गोल है कोंगो के लिए। इसके बाद इंग्लैंड ने भरसक कोशिश की मैच इक्वलाइज करने के लिए। बेलिंगाम कोंगो के गोलकीपर के आगे नाकाम रहा। वान बिसाका ने अपनी टीम को बचाया राशफोर्ड के शॉट पर। इस बीच कोंगो को और एक गोल बनाने का मौका मिला। हैरी केन के अनगिनत प्रयासों पर कोंगो के गोलकीपर पासी कई बार इंग्लैंड को रोकता है। फर्स्ट हाफ में कोंगो 1-0 से आगे। सेकंड हाफ की शुरुआत में इंग्लैंड का दबदबा बढ़ा। राशफोर्ड को निकालकर एंटोनी गोर्डन को भेजा गया। और उसी के क्रॉस पर हैरी केन हेडर से इंग्लैंड के लिए इक्वलाइज करता है। फिर हैरी केन अपनी टीम को जितवाता है। 86वें मिनट पर कोंगो गणराज्य हिम्मत से जी जान से खेली, सम्मान से वर्ल्ड कप छोड़कर जा रही है। इंग्लैंड के लिए अगला मैच मेक्सिको के खिलाफ होगा।
1: फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल्स के रोमांचक मुकाबले जारी हैं, जहां किसी भी बड़े उलटफेड़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैचों का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से है। स्पेन ऑस्ट्रिया के खिलाफ आज रात 11 बजे से एमबीसी 11 पर सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे, इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। पुर्तगाल क्रोशिया के खिलाफ खेलेगी कि उसकी टीम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल टीम भी एक्शन में होगी। ये मैच देर रात यानी कि कल सुबह 3 बजे खेला जाएगा। उधर स्विट्जरलैंड अल्जीरिया के खिलाफ ये दोनों टीम टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए कल सुबह 7 बजे मैदान में उतरेंगी। अरविंद बिसेसा की रिपोर्ट।
2: देखा जाए तो स्पेन इस मैच में फेवरेट है। ऑस्ट्रिया के खिलाफ लाहोगा अगर अपने स्टाइल का फुटबॉल खेलता है तो कठिन होगा उसे हराना। स्पेन वैसे इस वर्ल्ड कप में फेवरेट टीमों में से एक है। अभी तक असली रंग नहीं दिखा पाए, पर अब गोल स्कोर कर रहे हैं। एक गोल भी कंसीड नहीं किया है। स्पेन ग्रुप एच में पहला स्थान पर आया था, जबकि ऑस्ट्रिया ग्रुप जे में से दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना के पीछे। लामिन यामाल की टीम को सावधान रहना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया भी अपने भाग्यों को आजमाएगा। निको विलियम्स, येरेमी पिनो स्पेन के लिए नहीं खेल पाएंगे इंजरी के कारण। ऑस्ट्रिया के कोच राल्फ रागनिक की टीम तैयार है। डेविड अलाबा और नुटोविच, ये कुछ खिलाड़ी हैं जो अपना अनुभव ला सकते हैं। इस मैच का सीधा प्रसारण एमबीसी के स्पोर्ट्स 11 पर होगा आज 11 बजे। कल सुबह 3 बजे टोरंटो में पोर्टुगल और क्रोएशिया के बीच आमना सामना। एक तरफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरी ओर लुका मोड्रिच, दो अनुभवी खिलाड़ी। पोर्टुगल ग्रुप के में से यहां पर आया है, जबकि क्रोएशिया ग्रुप एल में था दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के पीछे। वैसे नामी स्टार खिलाड़ी हैं इन दोनों टीमों में। मिडफील्ड में टकराव होगा, कठिन होगा कहना

0: टीम की जीत होगी। और कल सुबह 7 बजे स्विट्जरलैंड का सामना अल्जीरिया से। स्विट्जरलैंड 2 मैच जीतकर 1 ड्रॉ करके अपने ग्रुप में टॉप पर आया था, पर अल्जीरिया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस स्तर पर ये लोग काफी खतरनाक हो जाते हैं।
1: फिर से लौटे स्थानीय स्तर पर, जहां पर वित्तीय साल 2026-2027 मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड के लिए एक नया मोड़ साबित होने जा रहा है। कर्ज का धीरे धीरे भुगतान, खर्चों पर नियंत्रण, मेट्रो नेटवर्क का आधुनिकीकरण और तोड़फोड़ को रोकने के लिए नए कड़े कदम। इन सब के बीच भूमि परिवहन मंत्री उस्मान महमूद ने मॉरिशस मेट्रो के सुरक्षित और लंबे भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में अपना विजन पेश किया। वे आज दोपहर को पोर्टलुई में क्रॉस रेल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट जारी होने के बाद अपनी बात रख रहे थे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मेट्रो एक्सप्रेस के फायदे सिर्फ यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। अध्ययन के अनुमान के अनुसार ये मेट्रो नेटवर्क देश को हर साल लगभग 1.7 बिलियन रुपए का आर्थिक फायदा पहुंचा रहा है। अशिता रघु की रिपोर्ट।
2: मेट्रो एक्सप्रेस केवल एक परिवहन सेवा नहीं है। ब्रिटेन की रेल परिवहन परामर्श कंपनी क्रॉस रेल इंटरनेशनल की रिपोर्ट का यही मुख्य निष्कर्ष है। रिपोर्ट के अनुसार ये नेटवर्क हर वर्ष लगभग 1.7 बिलियन रुपए का आर्थिक लाभ उत्पन्न करता है।
3: क्रॉस रेल इंटरनेशनल
2: ने कई चीजों का खुलासा किया है, जैसे सरकार को मेट्रो एक्सप्रेस प्रणाली के काम करने से 1.7 बिलियन रुपए प्राप्त होती है, मतलब इसका यूजर बेनिफिट होता है, मतलब स्कूलों, व्यवसायों, अस्पतालों इत्यादि को फायदा होता है, यातायात कम होती है पीक टाइम के दौरान तथा दुर्घटनाओं से भी बचा जाता है, ऊर्जा और प्रदूषण भी कम होती है तथा छोटे ठेकेदारों को भी निर्माण के समय उन्हें कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होती है।
3: एक बार PME बेनिफिशियरी होती है, क्योंकि पहले कंस्ट्रक्शन से गेम कॉन्ट्रैक्ट उनका पास सर्वाइव।
2: नेटवर्क के विस्तार पर कई वर्षों तक निवेश करने के बाद कंपनी ने इस वर्ष अपने ऋण का चरणबद्ध भुगतान शुरू कर दिया है। साथ ही वह अपनी वित्तीय स्थिति को और मजबूत बनाने के प्रयास भी जारी रखे हुए है। इस वर्ष से हम कर्ज चुकाना शुरू कर रहे हैं और मेट्रो एक्सप्रेस की चंद ट्रेनों का मरम्मत भी किया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार को मेट्रो एक्सप्रेस के कर्ज चुकाने, ट्रेनों की मरम्मत हेतु तथा आम खर्चों के लिए 1.4 बिलियन रुपए देनी होगी, पर एक काफी मोटी रकम हमें भारतीय सरकार की ओर से प्राप्त हो रही है। सेवाओं के आधुनिकीकरण और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही नई टिकटिंग प्रणाली भी शुरू की जाएगी। उस्मान मोहम्मद ने जनता से मेट्रो एक्सप्रेस की अवसंरचना की सुरक्षा करने की अपील की। उन्होंने तोड़फोड़ और उपकरणों की चोरी की घटनाओं की निंदा करते हुए कहा कि इससे कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान होता है और यात्रियों को दी जाने वाली सेवाएं भी प्रभावित होती हैं।
1: जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि बजट 2026-2027 मॉरिशस को अपनी सार्वजनिक वित्तीय स्थिति को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ाता है, ये मानना है रेटिंग एजेंसी मूडीज का, जिसने मॉरिशस के रेटिंग को BAA3 पर बरकरार रखा है। भले ही रेटिंग एजेंसी ने घाटे को कम करने और सरकारी कर्ज को स्थिर करने के सरकार के प्रयासों की सराहना की है, परंतु उसका यह भी मानना है कि कई ऐसे खतरे हैं जो इस सुधार के रफ्तार को बिगाड़ सकते हैं, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर विवरण रजनी बिकर का।
4: बजट 2026-2027 सरकार की बजट स्ट्रेटेजी का एक अहम पड़ाव है। मूडीज की ओर से पिछले जून महीने के अंत में साकार किए गए मूल्यांकन में इस बात का उल्लेख। रैंकिंग एजेंसी ने पाया कि वित्तीय मजबूतीकरण को लेकर ठोस प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त मूडीज ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश की आय को बढ़ाने के वास्ते कदम निर्धारित है। इनमें सबसे ज्यादा आय प्राप्त करने वालों के लिए 35% की नई कर लागू की बात शामिल, डिजिटल सेवाओं के विदेशी सप्लायरों के लिए टैक्सेशन भी शामिल। इसके अलावा मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी में ढांचागत सुधार भी सम्मिलित। अर्थशास्त्री डॉक्टर भविष जगन्नाथ ने कहा,
5: मूडीज ने कुमाऊँ से

0: saluer le progrès du pays en matière d'assainissement budgétaire, il peut souligner dans le rapport là et la réduction du déficit budgétaire à 3,7% du PIB. Moody's relève dans son rapport que l'exécution budgétaire dépasse une prévision soutenue par une baisse de dépenses courantes plus marquée qu'anticipée. En conséquence, la ratio de la dette publique par rapport du PIB commence à stabiliser et les pays inverse ainsi la tendance à la détérioration que Moody's prévoit auparavant.
1: लेकिन एजेंसी सावधान है, उसका कहना है कि मॉरिशस के लिए एक नकारात्मक दृष्टिकोण Baa3 का नोट बरकरार है। उसका मानना है कि कई अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। मूडीज के अनुसार घाटे की कमी का एक अहम भाग शागोस द्वीप समूह के समझौते की प्रतीक्षित आय पर भी निर्भर है। इस विशेष आय के बिना घाटा GDP के 5% से नजदीक पहुंच सकता है। इसके अलावा एजेंसी ने पेंशन सुधार से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया, जिसे भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, और साथ में हाईली क्वालिफाइड पेशेवरों के लिए नई वित्तीय क्षमताओं के प्रभाव भी हैं और योग्यताओं के पलायन के बढ़ते खतरे भी। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के CEO पॉल बेकर ने कहा,
2: are relatively high. It's high time to reform the system. Maybe as an economist, how you view the pension reform in Mauritius?
3: Yes, I mean, so Mauritius, like most countries, is facing an aging population. So a smaller tax base to pay towards and to contribute towards government revenue, and yet higher payouts. And so that is not unusual to be a burden on most countries. So some sort of reform may indeed be needed. Inevitably, maybe not this year or next year, but there will be need to reform the pension system in Mauritius because of this aging population.
2: The policy drift risk mentioned by Moody's. You want to add something else?
3: One of the issues is the changes in taxation in Mauritius. So there is a much higher rate for those that earn quite a lot, and that is likely to affect confidence and spending. And so we can expect, I think, much lower growth rates than was forecasted in the budget.
1: Moody's ne ye bhi kaha ki Mauritius mein sarvajanik finance mein sudhar is baat par bhi tika hua hai ki sarkar kis tarah aarthik evam rajnitik khatron ka samna karte hue ghoshit sudharon ko amal mein lati hai. अंत में मूडीज ने वैश्विक अर्थतंत्र की अनिश्चितताओं को लेकर सचेत किया, जैसे कि जियोपॉलिटिकल तनाव है, सप्लाई चेन में रुकावटें और रुपए के भाव का डिप्रिसिएशन, जिनका असर देश की वृद्धि की संभावनाओं पर पड़ सकती है।
4: वाकवा के ताकामाका ब्रिज को एक नया रूप दे दिया गया है। लगभग 60 साल पुराना ये पुल लंबे समय से ट्रैफिक जाम की एक बड़ी वजह बना हुआ था। इसकी हालत ऐसी थी कि विपरीत दिशाओं से आने वाली दो बसें भी एक साथ सुरक्षित तरीके से यहां से नहीं गुजर पाती थी। कई महीनों के काम के बाद इस नए और चौड़े किए गए पुल का उद्घाटन आज सार्वजनिक मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश द्वारा किया गया। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
5: वाकवा और लामारी को जोड़ने वाले इस मार्ग से हर दिन बड़ी संख्या में वाहन गुजरती हैं, लेकिन अब तक ताकामाका पुल से होकर गुजरना लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ था। पुराना पुल मौजूदा यातायात के लिए काफी तंग हो गया था, विशेषकर बसों के आमने सामने आने पर आवाजाही मुश्किल हो जाती थी। साथ ही पुल की संरचना भी जर्जर होने लगी थी, इसलिए पुल का पूरी तरह पुनर्निर्माण किया गया और इसे चौड़ा किया गया। इस पुल की चौड़ाई 5.420 मीटर हुआ करता था, अब निर्माण के बाद इसको 6.750 मीटर तक बढ़ाया गया है। ये पुल पहले से ही नीचे से ढहने लगा था, लोहे दम तोड़ने लगे थे, पर मरम्मत के दौरान इसे पूरी तरह मजबूत बनाया गया है। नई व्यवस्था से खासकर व्यस्त समय में यातायात प्रबंधन और आसान हो जाएगा। ये पुल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी वाहन जोल से निकलते हुए सावोई की ओर बढ़ते हैं, इसी मार्ग से जाते हैं। ये एक रणनीतिक जगह है जहां बहुत बाशिंदे और कारोबार मौजूद हैं। प्रतिदिन कई हजार वाहन यहां से गुजरते हैं। जब निर्माण कार्य जारी था तो एक डायवर्शन लाया गया था जिसके कारण यातायात में रुकावट हो रही थी, अब सब सुगम हो गया है। वाहन चालकों ने भी इस बदलाव

0: बदलाव का स्वागत किया। इस नए पुल के साथ अधिकारियों को उम्मीद है कि वाकवा क्षेत्र की प्रमुख यातायात समस्याओं में से एक का स्थायी समाधान होगा और लोगों को अधिक सुगम, सुरक्षित तथा आज की यातायात आवश्यकताओं के अनुरूप सफर मिल सकेगा।
1: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा की जाने वाली जांच के दायरे में अब बैंक सीक्रेसी के अपवादों को और बढ़ाया जाएगा, यानी कि अब बैंक कुछ मामलों में जांच के लिए जानकारियां दे सकेंगे। सरकार ने बजट भाषण के दौरान बैंकिंग एक्ट में एक बदलाव करने का ऐलान किया है। इसके तहत बैंक अपने ग्राहकों की गोपनीयता के नियम का उल्लंघन किए बिना कुछ जरूरी जानकारियां एफसीसी को सौंप सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य कानून को एक समान बनाना है, ताकि पिछले अप्रैल में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एक्ट में किए गए बदलाव के बाद पैदा हुई कानूनी विसंगति या आपसी टकराव को सुधारा जा सके। घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ाई में एक नया कदम उठाया गया है। डोमेस्टिक अब्यूज बिल में कई ऐसे नए नियम लागू नियम लाए गए हैं जिनका मकसद पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है। इसके साथ ही इसमें हिंसा के उन रूपों को भी पहचान की गई है जिन्हें पकड़ना अक्सर मुश्किल होता है। नए नियमों में मानसिक और आर्थिक हिंसा को भी शामिल किया गया है। घरेलू हिंसा के खिलाफ काम करने वाले गैर सरकारी संगठन एम्पावर और रेज ब्रेव गर्ल्स इस नए कानून का स्वागत कर रही है। ये कानून घरेलू हिंसा पर भी ध्यान देगा जो सीधे तौर पर दिखाई नहीं देती है। अब बात करते हैं एक ऐसे कारीगर के बारे में जो अब एक टेक एंटरप्रेन्योर बन गया है। जी हाँ, आज वे एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी के मालिक हैं जिसे निवेशकों से बड़ी सफलता मिल रही है। क्राफ्टी कंपनी के संस्थापक ब्रेनो लुगाला को अपनी स्टार्टअप के लिए अब तक 7 मिलियन रुपए का निवेश मिल चुका है। उन्हें ये कामयाबी इसीलिए मिली क्योंकि उन्हें सही समय पर सही मार्गदर्शन और सहारा मिला। विदेशी स्तर पर जो आज सुर्खियों में है, वेनेजुएला में आए दोहरे भूकंप के एक हफ्ते बाद जान माल के नुकसान के आंकड़ों में नया बदलाव आया है। इसका मतलब ये है कि इस आपदा में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 2,295 हो गई है, जबकि 11,000 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने बड़ी त्रासदी के बाद कल 7 दिनों से राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। उधर रूस ने गुरुवार की सुबह यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमला किया। इसके कारण भीषण विस्फोट हुए और कीव कई घंटों तक हिलता रहा। कीव शहर के सैन्य प्रशासन प्रमुख ने बताया कि हमलों में आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई, जिनमें 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज रात और कल सुबह बादलों के घेराव के साथ हल्की सी बारिश होगी, खासकर सेंट्रल प्लेटो पर, जबकि कल दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। हवा दक्षिण की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार, खासकर दक्षिणी पश्चिमी समुद्र के उस पार, लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्यास्त 5:41 पर, जबकि कल

तो देश विदेश की नई खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम लुडोविक को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में शोक समाचार। आइए शोक समाचार सुनते हैं। रेड स्टार लेन त्यागोश में, रेड स्टार लेन त्यागोश में 70 साल के 70 years old के जनाब मोहम्मद इकबाल जबू जिन्हें सब लोग बाय इकबाल के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज रात के साढ़े आठ बजे उन्हीं के मकान रेड स्टार लेन त्यागोश से निकालकर दफनाने के लिए बामोशों का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। Funeral tonight at 8:30. Ese sa lane pont la chaire Notre-Dame. Ese sa lane pont la chaire Notre-Dame. 75 sal ki, 75 years old ki, Shrimati Krishnauti Tilu. Paidashi naam Jilal, aur jinhe sab log Rani ke naam se bhi jante the, unki mrityu ho gayi hai. Unki arthi kal din ke 10 baje. कल दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री नीलेश तिलू के घर एस एस ओलेन पोंट ला शेया नोत्रदाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। बुधन लेन पेलगाय सेवास्तोपोल में 62 साल की 62 years old की श्रीमती राजवंती सिमरिक्या जिन्हें सब लोग सुनीता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी बेटी श्रीमती मीनाक्षी रघु के घर बुधन रोड पेलग्रैं सेबास्तोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉन्डुमास का किश्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। कालीचैन लेन कारो लालियन वाक्वामे, कालीचैन लेन कारो लालियन वाक्वामे 82 साल के 82 years old के श्री हबी मग्नू शिवनाथ जिन्हें सब लोग पंडुमन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे उनके बेटे श्री किरण शिवनाथ के घर कालीचैन लेन कारो लालियन वाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलेब्रियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। रामलगन गली बिजिकाप में 54 साल की 54 years old की श्री धीरज इतु जिन्हें सब लोग अजय के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उन्हीं के घर रामलगन गली बिजिकाप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमोंटे बेलोम की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट 1 PM। रॉयल रोड बोबासे में 89 साल के 89 years old के श्री चंद्रदत्त रामबरन जिन्हें सब लोग पनन के नाम से भी जानते थे और जो नंबर 13 ए एवेन्यू कॉजिनल सुदना कैथोबोन के पूर्व निवासी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे ला शापेल ऑन एलियन सन्स रॉयल रोड बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सोल्फेरिनो वाक्वा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में 76 साल के 76 years old की श्री

0: सुलेश गुकुलक, श्री सुलेश गुकुलक, जिन्हें सब लोग सुलेश के नाम से भी जानते थे, और जो SSRN अस्पताल के पूर्व अटेंडेंट थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती माला गोकुलक के घर ऋषि दयानंद लेन मौलाशो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इजोदोरोज की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। टेंपल रोड अमोरी में 82 साल की 82 years old की श्री मौदे मुदेली वायापुरी, जिन्हें सब लोग राजू के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनकी पत्नी श्रीमती माया वायापुरी के घर टेंपल रोड अमोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट 1 PM। सिमिचिया रोड प्लेमायो में 36 साल के 36 years old के श्री विकेश बुधन, जिन्हें सब लोग इशले के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनकी माँ श्रीमती सांदिया गाबूजी के घर सिमिचिया रोड प्रेमायों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन सैटरडे, जी हाँ, एट 10 AM। शिवाला रोड बुआ रूज पॉम्पलेमुसेज में 60 साल के 60 years old के श्री विश्वजीत बिकम, जिन्हें सब लोग गौसों के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी शनिवार 4 जुलाई को दिन के डेढ़ बजे उनकी बहन कुमारी पिंकी बिकन के घर शिवाला रोड बुआरूज पॉम्पलेमुस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल ऑन सैटरडे 4th of July एट 1:30 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Allons chez Lolo. Chez Lolo, c'est bon. Liquide vaisselle, 5 litres, 194,50 €. Chanteclair, Easy Pack, Pilon 1 kg, plus foie de poulet 250 grammes à 305 roupies. Mérimo, shampoing 400 ml, 95 roupies.

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आप सभी लोग जो हमारा साथ दे रहे हैं, आई रियली होप बाय लिसनिंग टू दिस ब्यूटीफुल एंड लवली गाने आप स्माइल कर रहे हो. तो चलिए, मैं तो आप सब लोगों से इजाज़त मांगूंगी क्योंकि आने वाली है दिव्या फॉर योर इवनिंग लाउंज.

0: देखते ही देखते ये क्या हो गया। और कुछ लोग कहते हैं कि देखते ही देखते पलक झपकते एकदम से सिचुएशन बदल जाते हैं, और ये सिचुएशनशिप बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में ताकि आपका स्टेटस भी थोड़ा बहुत बदले हैं। चलिए हम रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बात कर रहे हैं, और हम तो यही चाहते हैं कि रिलेशनशिप एडवाइजेज आपकी तरफ से भी मिले ऑन 5499-1294। चलिए हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं, तो दिल का रिश्ता सबसे ऊपर होना चाहिए, और वैसे कहते हैं ना कि खून के रिश्ते से बढ़कर दिल का रिश्ता होता है। तो चलिए ऐसा ही रिश्ता हमारे और आपके बीच में है, और इस बॉन्ड को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है, एंड इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाता रहेगा हमारे गाने, और साथ में गाने में जो फीलिंग्स है ना उसको भी थोड़ा सा और बढ़ावा देंगे, यानी कि प्यार की बातें करेंगे और प्यार में ही खोते रहेंगे। 7:06 हो चुके हैं। विशिंग यू ऑल अ लवली लवली गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन। कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक ठाक है, और चलिए ऐसा लग रहा है कि बरसों बाद मुलाकात हो रही है। 2 दिन हम क्या नहीं आए, और ऐसा लग रहा है कि बस कितने दिनों से हमारी और आपकी मुलाकात नहीं हुई। आई गेस प्यार में ऐसा ही होता है कि जब आप किसी को नहीं देखते हैं और आपका मन थोड़ा बेचैन हो जाता है और आप बेकरार होने लग जाते हैं, इसी बेचैन दिल को थोड़ा सा चैन देने के लिए और इसी बेकरार दिल को थोड़ा सा करार देने के लिए हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए खूबसूरत गाने। यस, टाइम टू सिट बैक एंड रिलैक्स एंड कीप एंजॉयिंग आवर ब्यूटिफुल वंडरफुल गाने ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। सो साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। इट्स योर इवनिंग लाउंज जहाँ पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM कुछ खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे, और साथ में आपके मैसेजेस ऑन द मैजिकल नंबर दैट इज 5499-1294, एंड साथ में आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। यस, फ़ोन करने का नंबर है 402-8035-402-4535 पर आप हमें ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं। आपके फ़ोन कॉल्स का हम इंतज़ार कर रहे हैं बहुत ही प्यार से।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

चलिए फिलहाल के लिए आपके मैसेजेस हम तक जरूर पहुंच रहे हैं. डू नॉट हेजिटेट, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो प्यार भरी बातें जरूर रब से हम करेंगे. ऑन 4028235 पर आपके मैसेजेस का हम इंतजार कर रहे हैं. किसी ने हमें एक बहुत ही प्यार सा मैसेज भेजा है और आप कहती हैं कि प्लीज़ कैन यू प्लीज़ प्ले अ सॉन्ग ओ मामा डियर मामा फॉर योर मॉम जिनका बर्थडे है आज. उनको बहुत बहुत सारा प्यार. वेरी हैप्पी बर्थडे टू योर डियरेस्ट मॉम. हमारी पूरी RM2 रेडियो मस्ती टीम की तरफ से. मामा का आपने ना ही नाम लिखा है ना ही आपने अपना नाम लिखा है, तो चलिए उनको बहुत ही प्यार से हम याद कर रहे हैं. एंड अनलकीली फिलहाल के लिए ये गाना हम हमारे शो में फिट नहीं कर पाएंगे, बट फॉर श्योर अगला गाना खास तौर से आपकी प्यारी मामा के लिए. और साथ में वी ऑल्सो वुड लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर बेबी अरशद. और आप कहती हैं कि माय हैप्पीनेस इज विद यू, माय हार्ट बिलोंग्स ओनली टू यू, आई एम सेंडिंग यू ऑल माय किसेस, आई लव यू सो मच फ्रॉम वाइफ रेबेका. एंड आपने गाना मांगा है जब कोई बात बिगड़ जाए हम ट्राई करेंगे. एंड एज यूजुअल वी हैव ऋषि विदेशी, वुड लाइक टू विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू योर मूडी गर्लफ्रेंड जिनका बर्थडे है आज, और उनको बहुत बहुत सारा प्यार. एंड ट्राइंग टू रिड्यूस द मूडीनेस फॉर बीइंग 39 टुडे. और चलिए उनको हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार. एंड वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू हर. एंड आई नो यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस डी डे सिंस अ लॉन्ग टाइम. और मुझे पता है कि, और अभी तक मुझे याद है, एक महीने पहले आपने ऑलरेडी मैसेज भेज लिया था कि आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे होगा ऑन द 2nd जुलाई. तो चलिए उनको बहुत ही प्यार से हम विश कर रहे हैं वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे. एंड साथ में यहाँ पर किसी ने कहा है, हाय डियर कैन यू प्लीज़ प्ले द ट्रैक तुम बिन जाऊँ कहाँ, मिल वर्जन फ्रॉम द मूवी दिल विल प्यार व्यार फॉर स्पेशल फ्रेंड नीतू ऑफ पाल्मा काटुबोन. उनके परिवार के लिए विशिंग हर सेफ हेल्थ एंड लोड्स ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम राजीव ऑफ सैंपियर. थैंक यू सो मच राजीव आपके इस खूबसूरत मैसेज के लिए. और चलिए ऐसे ऐसे खूबसूरत मैसेजेस आते हैं तो ऐसे में प्यार में थोड़ा और विश्वास बढ़ जाता है. एंड चलिए उम्मीद करते हैं कि ये जो विश्वास अपनों तक आप ज़रूर बरकरार रखेंगे और ख़ुद के लिए भी. तो चलिए 7:19 ऑल दोज हैविंग देयर डिनर राइट नाउ आपको विश करेंगे बना पिछी शुभाहार. एंड इट्स अ वंडरफुल थर्सडे इवनिंग जहाँ पर दिव्या का साथ है. न्यू इवनिंग लाउंज 2nd जुलाई 2026 एंड हमारा और आपका साथ रहेगा टिल 9 PM. और चलिए ऐसे ही आप हमें याद

0: करते रहिएगा अपने मैसेजेस के जरिए ऑन 5499-1294 या फिर फोन कॉल्स के लिए ऑन 402-8035.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: RM2 Radio Musti.
1: शायद आप ये मानने को तैयार नहीं हैं, लेकिन आपका दिल चीख चीख के आपसे यही कह रहा है कि हाँ, आपको प्यार है। But I think it's fair कि आप पलट कर दिल को भी जवाब दें कि हाँ, मैंने भी प्यार किया है। Well, we have this beautiful track. It's a wonderful and a romantic one. उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाजों में। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, जी हमसे भी मिला करो। Keep looking forward कि आप लोग कब हमसे मुलाकात करेंगे, कब आपके मैसेजेस आए, इसी इंतजार में रहते हैं। And believe me, जब आपके मैसेजेस आते हैं ना, तो हमारा चेहरा खिल उठता है। भले ही आपको दिखाई ना दे, लेकिन महसूस तो जरूर कर सकते हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत प्यार छुपा है। 7:31 already, it's your evening lounge, जहां पर दिव्या का साथ है till 9 p.m.

0: भाई देखिए प्यार में इतना सोचा नहीं जाता है, अगर आपको लड़की का नाम पता है लड़के का नाम पता है तो इतना भी आप मत सोचिएगा और जो भी आपके दिल में है वो कह ही डालिए। जी हाँ दोस्तों, 7:45 हो चुके हैं और चलिए लाइन पर कोई है और उनसे जरूर हम बात करेंगे। हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो नमस्कार, मैं सत्यांती हूँ ओशबुआ से।
0: क्या बात है, पूछने से ही पहले ही आपने बोल दिया तो आपका वेलकम है और आई गेस आपसे पहली बार के लिए बात हो रही है, राइट?
1: चलिए, आज मेरी जन्मदिन है।
0: ओ माय गॉड, देखा देखा देखा कि आपको कितना अच्छा गिफ्ट मिल गया है, लाइन मिल गई है और आज आपका खास दिन भी है तो आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड
1: धन्यवाद।
0: और आपके लिए तो जिंगल जरूर जरूर हम चलाएंगे और चलिए ये आपके लिए और इसके बाद हम बात करते हैं।
1: डियर मामा ये गीत है ना,
0: एक मिनट, अच्छा आपके लिए ये चलाएंगे जरूर
1: अपने हमारे बच्चों के लिए। हेलो,
0: बिल्कुल, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू।
2: हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम रेडियो मस्ती।
0: चलिए ये हमारी सत्यांती के लिए, राइट? मैंने नाम प्रोनाउंस करने में अगर कोई गलती कर दी है तो माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए आपके लिए ये ख़ास तौर से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके लिए हम जिंगल चला ही रहे थे और आपसे हम बात करते लेकिन आपको लगा कि हमने फ़ोन काट दिया है, कोई बात नहीं, तो आप अगर पॉसिबल होगा तो आप एक बार फिर से हमें फ़ोन कर सकते हैं 4282 पर, आपका हम इंतज़ार कर रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे और शायद आपको लगा कि हमने फ़ोन रख दिया है लेकिन आपसे तो हम बात कर ही रहे थे, तो चलिए यहाँ पर लाइन पर कोई है और उनसे हम बात करेंगे। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो,
3: हाँ नमस्ते जी, हाँ हाँ
0: नमस्ते जी, आपका नाम क्या है?
3: हाँ नीलावती सिगुरा, मेरी माता जी का नाम है।
0: हाँ जी,
3: वो हाँ तो अभी हाल ही में नहीं अब तो होने वाली है, उसको 202 होने वाली है।
0: 202 या 102?
3: हाँ हाँ, गीत सुन रही है। मेरा नाम है लाला, मैं कॉल कर रहा हूँ।
0: ओके, तो चलिए आपके मामा के लिए ये अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे और एक बार फिर से आपका नाम बता दीजिए प्लीज। ओके दूबा जी, फोन खरीदने के लिए थैंक यू सो मच एंड ये अगला गाना खास तौर से आपके मामा के लिए, खास तौर से और आपके लिए, थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू आपके टीम के लिए, आपके भी
0: सो स्वीट, थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ पर शायद उनका फोन आ रहा है एक बार फिर से। हेलो जी, हेलो,
1: हेलो, मैं सत्यांती ही हूँ।
0: सत्यांती जी, आपको लगा हमने फोन रख दिया है, ऐसा कैसे सोच सकती है? बिल्कुल नहीं, आपके लिए तो हम जिंगल चला रहे थे। तो चलिए आप हमें बताइए कि अगला गाना किन किन के नाम?
1: मेरे बच्चों के लिए, मेरे बेटे हैं अशोक, कीर्ति बहू हैं, तीन नाती हैं।
0: ओहो, काफी बड़ा परिवार है।
1: अकील, अभय, अर्नव और मेरी बेटी है आशा, दामाद किरण, मेरी दो ननद हैं उमा, हेमा,
0: ओहो,
1: और देवर और सभी देवी दीन परिवार जो लाल थोंसपो से जाने जाते हैं।
0: सो स्वीट। तो सत्यांती जी हमें बताइए कि आप करती क्या है जिंदगी में?
1: मैं अभी हाउस वाइफ
0: हूँ। ये बहुत ही बड़ा काम आप कर रही हैं क्योंकि 2400 घंटे में घर का काम कभी खत्म नहीं होता है।
1: आज ही मेरी जन्मदिन है, दिन भर काम कर रही हूँ।
0: ओह माय गॉड, ये सुन के मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए और एक दिन
1: तो
0: के लिए ही सही।
1: कल हम घर में हवन रखे हैं इसलिए
0: वजह से बहुत सारा काम होता है। अभी हवन के चक्कर में आपने घर की साफ सफाई भी की होगी, खाना इंतजाम भी आपने किया होगा। माय गॉड, कितना

0: कुछ होता है तो चल गया आपको वो कुहाश कल के लिए, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको अच्छी सेहत दे और आप जियो हजारों साल और हमेशा ऐसे ही आप अपने परिवार को एक साथ मतलब बांध कर रखे और हमेशा उनके सुख दुख में आप साथी बने और हमेशा आप ऐसे ही हंसते रहे। थैंक यू सो मच संत्यांती जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
1: कैसे लाइन मिल गई एक ही बार में।
0: चलिए ये ऊपर वाले का कर्म ही है, तो थैंक यू सो मच एंड एक बार फिर से आपको वेरी हैप्पी बर्थडे।
1: थैंक यू
0: सो मच, बाय बाय। तो ये थी हमारी प्यारी सी सत्यांती जी। एंड चलिए एक और फोन आ रहा है और आई गेस ये नंबर तो जाना पहचाना ही है और चलिए उनसे हम बात करेंगे। हेलो नमस्कार जी।
2: हेलो नमस्ते।
0: नमस्ते सुनीता जी, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, बताइए काम हो गया या फिर अभी तक आप काम पर हैं?
2: नहीं अभी हम घर पर खाना बना रहे हैं।
0: ओहो,
2: सुन रहे हैं
0: आपको बों को हार्श। आज कौन सा मेन्यू आपने बनाया, आज कौन सी तरकारी बनाई है आपने?
2: आज यानी कि दाल है और आगे कुतान है और बैगन का चटनी है।
0: वाह वाह वाह, सुन के मजा ही आ गया।
2: और आम का कुच्चा है, साथ साथ में आम का कुच्चा भी है।
0: ओह माय गॉड, मेरे मुंह में पानी भर आया। चलिए कोई बात नहीं, एक दिन आप जरूर मिलिएगा।
2: थोड़ा भेजू तुम्हारे लिए।
0: काश काश इंटरनेट इतना फास्ट होता कि बस बात करते ही मुझे इसको चखने का टाइम मिल जाता, लेकिन कोई बात नहीं, एक ना एक दिन हम जरूर मिलेंगे, तो ये आप जरूर मेरे लिए बना के आप लेके आना।
2: जी हाँ, अवश्य अवश्य।
0: चलिए सुनीता जी आप बताइए अगला गाना किसके नाम?
2: नहीं, मैं मुकद्दर का सिकंदर का गाना मांगना चाहती हूँ।
0: कौन सा वाला?
2: जिंदगी तो रोते हुए आते हैं, सब हंसता हुआ जो जाएगा।
0: ओके, हम इसको चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड ये गाना किन किन के लिए?
2: आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके टीम के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए, मेरे सभी सुनने वालों के लिए।
0: थैंक यू सो मच सुनीता जी, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। एंड चलिए अभी के लिए आपका गाना चल पड़ा एंड एक बार फिर से आपने हमें फोन किया, थैंक यू सो मच।
2: जी हाँ, बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत धन्यवाद।
2: अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसी टाइम को मिलेंगे। थैंक यू सो मच सुनीता जी, टेक केयर, बाय। तो ये थी हमारी प्यारी सी सुनीता जी एंड चलिए यहाँ पर उनका हम ये गाना जरूर चलाएंगे और आप लोगों के नाम भी।
3: Evening Lounge, Evening Lounge, RM2, Radio Masti.

0: That was a beautiful, beautiful gana and it was taken from the movie Yara Dildara and ye gana humne khas taur se chalaya for Darren, Shweta, Ravish, Prisha, Lavsha and Apadu family of Roshnua. Thank you so much humein phone karne ke liye Shweta and बस आप ऑनियर जाने से थोड़ी सी हिचकिचा रही थी और उन्होंने कहा कि ऑनियर नहीं जाना है तो चलिए आपको हम बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं एंड ऑल्सो करुणा जी का फ़ोन आया वो भी थोड़ी सी हेजिटेट हो रही थी टू गो ऑनियर लेकिन आपने फ़ोन किया थैंक यू सो मच कि आपने हमें याद किया एंड आपके यहाँ तो बहुत बहुत खुशी वाला माहौल है क्योंकि आपके यहाँ एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आया है 7 दिन का छोटा सा बेबी बॉय और रिदुषा जमन आगबंधु को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस और साथ में उनके पति हैं अविनाश अविनाश आगबंधु जो इस वक्त मॉरिशस में नहीं है बल्कि अब्रॉड काम करने के लिए गए हुए हैं तो प्राउड पेरेंट्स को मिनी मिनी कॉन्ग्रेचुलेशंस और साथ में उनको बहुत बहुत सारा प्यार भेज रही हैं उनकी नानी माँ करुणा उनके नाना हैं सुनील और साथ में छोटा सा बेबी बॉय और उनकी दादी गायत्री भी उनको बहुत ही प्यार से याद कर रही है तो चलिए ये अगला गाना खास तौर से उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ एंड वंस अगेन करुणा जी आपको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड जब घर में छोटा सा मेहमान आता है ना तो घर का जो एटमोसफियर है जो एनवायरनमेंट है वो बदल जाता है और घर की रौनक में एकदम बदलाव सी आ जाती हैं तो एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड चलिए कुछ आपके मैसेजेस की ओर हम ज़रूर बढ़ेंगे नमस्ते जी आप है श्वेता हुकुम फ्रॉम बनाकर यू वांट टू डेडिकेट अ रोमांटिक सॉन्ग फॉर योर हस्बैंड रोशन फ्रॉम वाइफ रानी वांट टू टेल हिम आई लव यू सो मच हस्बैंड जी हेलो विशिंग माई हबी कमलेश अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम वाइफ किरण और उनकी बेटी ईशानी की तरफ से उनको बहुत बहुत सारा प्यार साथ में यहाँ पर किसी ने कहा है नमस्ते आस्किंग फॉर अ सॉन्ग फॉर माई बेटा उमेश हीरा गोविंद जिनका बर्थडे है आज 14 इयर्स ऑलरेडी फ्रॉम पापा अश्विन मामा है रेशमा बहन इशिता भाई मनीष ऑफ खेवक्यूर एंड जितने भी सारे लोग आज अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं वंस अगेन आपको मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.
3: तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
4: आपने मुझे पहचाना नहीं मैं इंद्रनील ठाकुर नील
3: जानती हूँ
4: आप बेस्ट लॉयर हैं आप मेरा केस लड़ो ना वरना वरना माया के पापा गुनगुन को ले जाएंगे
3: तो मैं क्या करूँ
4: आप अपने बेटे को प्यार नहीं करते
3: क्या
4: अगर आपके बेटे को कोई ले जाए तो आप बेस्ट लॉयर नहीं ढूंढेंगे
3: मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ सकती नाउ प्लीज गो फ्रॉम हियर

0: सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. कुछ ऐसे गाने होते हैं ना जो सीधा जाकर दिल पर लग जाता है, और कुछ ऐसे गाने ही हम चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आप भी प्यार में खोए रहें और प्यार के जज्बातों को थोड़ा सा बढ़ावा दें और यू फील इंस्पायर्ड ताकि आप अपनों तक आपका पैगाम पहुंचा पाए. 8:26 दिव्या का साथ इन योर इवनिंग लाउंज टिल 9 PM. थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. एंड चलिए प्यार भरे नगमे आपके लिए हम पेश करते रहेंगे 9 तक. एंड चलिए आपके मैसेजेस का एक बार फिर से इंतजार कर रही है ऑन 5499-1294.
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti. Well friends, 8:38 already and प्यार में क्या करीब क्या दूरी distance doesn't really matter. क्योंकि जो भी आप महसूस करते हैं वो दिल से करते हैं और दिल से दिल तक का जो रिश्ता होता है जो कनेक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti. वेल फ्रेंड्स, हमको भी मालूम है कि इश्क मासूम है, लेकिन फिर भी दिल से कुछ गलतियां हो जाती हैं और दिल तो बच्चा है जी, उसको क्या कहें। लेकिन जब एक दफ़ा आपको सच्चा प्यार होता है ना, तो वो भी दिल को पता चल ही जाता है। और ये सच्चा प्यार हर किसी की ज़िंदगी में आए, और बस यही दुआ करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपको बेमतहा बेशुमार प्यार मिलता रहे और आपका प्यार कभी ना रूठे, कभी ना छूटे। चलिए, यहाँ पर किसी ने हमें कहा है, नमस्ते दिव्या, थैंक यू फॉर दीज ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, यू वेलकम एंड थैंक यू टू यू कि आप इतने प्यार से हमारा साथ दे रही है। चलिए, इसी के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम, 7 से लेकर रात्रि के 9 बजे तक, एक अलग ही मूड के साथ, क्योंकि कल फ्राइडे है। तो चलिए, तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, शुभरात्रि, शब बख़ैर।
2: मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पे रहते हैं

हेलो डियर लिसनर्स, विशिंग यू ऑल अ लवली इवनिंग। नीतू का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करे। आजकल मौसम इतना यानी कि खराब तो नहीं बोलूंगी, लेकिन ठंड इतनी पड़ रही है, लेकिन मजा भी उतना ही आ रहा है। सो व्हेयरएवर यू माइट बी, स्टे वेल ट्यून्ड, इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स। 3 घंटों का एज यूजुअल सफर है म्यूजिकल, सो रात्रि के 12 बजे तक ऐसे ही साथ निभाते चलिएगा।

कभी-कभी रात सिर्फ अंधेरा लेकर नहीं आती है, है ना? बल्कि अपने साथ सुकून, खामोशी और दिल की हर अनसुनी बात भी लेकर आ जाती है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब रात अपनी बाहों में समेट लेती है, तब एक प्यारा सा गीत दिल के हर कोने को रोशन कर देता है। संगीत वो दोस्त है जो बिना कुछ कहे हर एहसास समझ लेता है। इस खूबसूरत रात को अपनी पसंद के गीतों के साथ बिताइए, क्योंकि हर सुर जिंदगी को एक नई उम्मीद और एक नई मुस्कान दे जाती है।

रात की खामोशी में जब हवा धीरे धीरे चलती है और सितारे आसमान को सजा देते हैं, तब संगीत का हर सुर और भी गहरा लगने लगता है। ऐसी रातों में एक मधुर गीत सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि रूह तक पहुंच जाता है, हर सपनों को जन्म देती है और हर दिल को सुकून का एहसास दिलाती है। That's why, आज की रात अपने दिल के करीब गीतों के नाम कीजिए और हर पल को यादगार बना दीजिए।

रात और संगीत, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। ये रिश्ता बहुत ही पुराना है। चांदनी जब धरती पर उतरती है और हवा हल्की सी सरगम छेड़ती है, तब हर गीत और भी खूबसूरत लगने लगता है। रात हमें खुद से मिलने का मौका देती है और संगीत उस मुलाकात को और भी हसीन बना देता है। हर गीत एक कहानी है और हर कहानी किसी न किसी दिल से जुड़ी होती है। आज की रात उन कहानियों को एक साथ महसूस करें।

में से अगर आप चाहें कि आज की रात यादगार बन जाए तो बस अपने दिल के करीब कुछ गीत ऐसे चुन लीजिएगा। मोबाइल को एक तरफ रखिए, वेरी डिफिकल्ट लेकिन कोशिश तो करें ना। चांद को देखिए और गीतों के साथ अपने दिल को खोलकर जीने दीजिए। संगीत सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि एक थेरापी भी है जो हर थके हुए दिल को नई ताजगी देता है। हर रात को संगीत के साथ जीना एक खूबसूरत आदत बन सकती है।

रोशन रात और मधुर संगीत, इससे खूबसूरत संगम शायद ही कोई और हो। जब दिल शांत हो और गीतों की मीठी धुन हवा में घुल जाए, तब हर फिक्र धीरे धीरे दूर होने लगती है। ऐसी रातों में वक्त भी जैसे रुक सा जाता है और हर लम्हा

Thank you so much हमारे हम सफर बनने के लिए already in the second hour. It's your late night grooves. नीतू अभी भी आपके साथ है, no worries. लेकिन गाने really hope सुनकर अच्छे लग रहे होंगे. हर रात अपने साथ एक नई कहानी लेकर आती है ना? किसी के लिए इंतजार की, तो किसी के लिए मोहब्बत की और किसी के लिए उम्मीद की. और जब इन कहानियों का साथ संगीत देता है तो हर एहसास और भी गहरा हो जाता है. इस रात को बस महसूस कीजिए और हर गीत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना दीजिए.

जिस तरह सितारे आसमान को सजाते हैं, उसी तरह गीत हमारे रात को भी सजाते हैं। हर सुर एक चमकता हुआ सितारा है जो अंधेरों में भी रोशनी भर देता है। आज अपनी रात को संगीत की रोशनी से जगमगाइए और हर लम्हे को दिल से जिए।

0: Late night grooves.
1: RM2 Radio Musti.
2: ये रात कितनी हसीन है ना? वैसे रात हमें सुकून देती है और गीत उस सुकून को और भी गहरा बना देते हैं। जब आंखें बंद करके किसी मधुर धुन को महसूस करते हैं, तब लगता है जैसे पूरी कायनात एक ही ताल में धड़क रही हो। इसी एहसास का नाम है संगीत, म्यूजिक का जादू।

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Musti.
2: कभी कभी तन्हाई भी बहुत खूबसूरत लगती है अगर उसके साथ एक प्यारा गीत दे रहा हो। गीत वो हम सफर है जो कभी शिकायत नहीं करता, बस हर एहसास को समझकर दिल को हल्का कर देता है। That's why रात को तन्हा मत समझिए, संगीत को अपना दोस्त बना दीजिए एंड रेडियो मस्ती एज वेल।

जिंदगी बहुत तेज भागती जा रही है, लेकिन रात हमें रुककर जीना भी सिखा देती है। हर गीत के साथ एक गहरी सांस लीजिए, चांद को देखिए और उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाया। यही पल कल की सबसे प्यारी यादें बनेंगी। वैसे हर गीत सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होता। कुछ गीत हमें हंसा देते हैं, कुछ रुला देते हैं और कुछ हमें फिर से जीना सिखा देते हैं। आज की रात उन गीतों को सुनिए जो आपके दिल के सबसे करीब हैं।

0: ऑलरेडी इन द थर्ड आवर, देखा वक्त कितना जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चला जा रहा है। जब सितारे आसमान में चमक रहे हो और चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा हो, तब एक मधुर गीत उस नजारे को और भी यादगार बना देता है। कुदरत और संगीत का ये संगम जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक होता है।
1: Late Night Grooves.
2: RM2 Radio Musti.

हर रात एक तोहफा है, इसे सिर्फ सोने में नहीं बल्कि जीने में भी बिताएं। यस, हमको लगता है बस रात आई अब सोने चले, लेकिन रात को कितने सारे हम काम कर सकते हैं, लाइक जिंदगी को खूबसूरत सवर सकते हैं। अपनी पसंद के गीत सुनिए, अपनों को याद कीजिए और हर लम्हे का शुक्रिया अदा करें। दिल खुश रहेगा तो जिंदगी भी हसीन लगेगी दोस्त।

बार कहे कम ही है कि संगीत एक ऐसी दुनिया है जहाँ ना कोई भेदभाव हो ना कोई सीमा। हर सुर हर दिल को अपना लेता है। रात के सुकून में जब गीत गूंजते हैं तब लगता है जैसे हर दर्द पिघलकर खुशी में बदल गया हो।

यस, जिस घड़ी का हम बेसब्री से इंतजार नहीं करते वो ही आ जाती है, यानी कि बिछड़ने की घड़ी। पर क्या करें, आए हैं तो जाएंगे जरूर। बस एक यादगार रात के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस हल्का सा मुस्कुराता चेहरा, दिल में शुक्र का एहसास, आसमान में चमकता चांद और साथ में कुछ हमेशा याद रहने वाले गीत। जब ये सब एक साथ मिल जाए तब रात सिर्फ गुजरती नहीं है बल्कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में बदल जाती है। टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।

0: भारत को छपनी भी ऐसी है मेरी जान, लेकिन कश्तियां सबके किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। उफ़ो, तुम्हारी आंखें, आज तुम्हारी आंखें प्यार के शरारे बरसा रही हैं, और इनकी ताब लाने के लिए मुझे सहारा चाहिए, चाम का। अगर आपकी इजाजत हो तो
1: आज तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, लेकिन जल्दी।

0: फिर वही फुर्सत के रात दिन।
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.
2: मैंने